सज्जन दे हथ बां असाडी कीकण आखा छड वेड़िया। जगीर सिंह दे गाए शाह हुसैन दे इस कलाम तो बाद जसबीर जस्सी दी आवाज विच सुल्तान बाहू पेश है।

हीअ आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़। तंहिं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते बि ॿुधी सघंदा आहियो। असांजो प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीत आहिनि। सभु खां अवल तव्हां भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा। तंहिं खां पोइ तबसिरो पेश कयो वेंदो 6:43 ते। असां फोक म्यूज़िक जंहिंमें प्रभु वफ़ा जी शेरो शायरी ॿुधंदासीं। प्रोग्राम जे आख़िर में ख़ासि ख़ासि ख़बरूं नशर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। हींअर अचो त ॿुधूं भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में कलाम।

तमा भगत कंवर राम जी जे मिठड़े आवाज में कलाम बुधी रहा हुआ। तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधी रहा आयो। हियर पेश आहे तपसिरो। मर्कजी ज़रात ए हारियुन जे भले ए गोठ जे विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हाणे ई साल 2025-26 जे मुख्य फसलन जे उत्पादन जो टियो अगवाटो अंदाज़ो जारी कयो ऐं चयो त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी अॻवाणीअ में सरकार लगातार हारियुनि जी खुशहाली ऐं खेती बाड़ी जे खेत्र जे विकास लाइ कम करे रही आहे, जंहिंजो सफ़ी याने पॉज़िटिव असर हाणे रिकॉर्ड खेतीअ जी पैदावार जे रूप में साम्हूं अची रहियो आहे। टे अॻवाटे अंदाज़े मूजिब देश जे कुल अनाज जी पैदावार 376.56 मिलियन टन हुअण जो अंदाज़ो आहे, जो गुज़िरियल साल जे 357.72 मिलियन टन जे उत्पादन खां लॻभॻ 18.8 मिलियन टन वधीक आहे। इहो देश जे इतिहास में सभ खां वधीक अनाज उत्पादन आहे। श्री चौहान हिन ऐतिहासिक कामयाबीअ लाइ देश जे हारियुनि खे वाधायूं डि॒नियूं। ज़रात ऐं हारियुनि जे कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी कयल टियों अॻुवाटो अंदाज़ो भारत जी ज़रात तरक़ीअ जो हिकु मज़बूत ऐं दिलासो ॾींदड़ तस्वीर पेश करे थो। फसलवार खुलासो कंदे मर्कज़ी ज़रात जे मंत्रीअ चयो त चांवरनि जी पैदावार रिकॉर्ड 54.04 मिलियन टन, कणक जो 120.657 मिलियन टन ऐं मकईअ जो रिकॉर्ड 55.09 मिलियन टन हुअण जो अंदाज़ो आहे। शिरियान मिलिट्स जी पैदावार 17.584 मिलियन टन, तुअर जी 3.592 मिलियन टन, चणनि जी 12.514 मिलियन टन ऐं दाल जी 1.762 मिलियन टन हुअण जो अंदाज़ो आहे। साॻी तरह कुल तिर जे बिजनि जी पैदावार 43.059 मिलियन टन अंदाज़ो वई आहे। बोही मूंग जी पैदावार रिकॉर्ड 13.074 मिलियन टन, सोयाबीन जी पैदावार 12.596 मिलियन टन ऐं तोरी ऐं सरह जी पैदावार रिकॉर्ड 13.768 मिलियन टन हुअण जो अंदाज़ो आहे। कमान जी पैदावार रिकॉर्ड 500.06 मिलियन टन अंदाज़े वई आहे, जॾहिं त कपह जी पैदावार 29.024 मिलियन गांठू ऐं पटसन जी पैदावार 9.176 मिलियन गांठू अंदाज़े वई आहे। श्री चौहान चयो त फसलवार तफ़सीली आंकड़ा ॾेखारीनि था त चांवरनि जो उत्पादन 154.04 मिलियन टन आहे, जॾहिं त साल 2024-25 में इहो 105.184 मिलियन टन हो, जंहिं में 3.84 मिलियन टन जी वाध दर्ज थी आहे। कणक जी पैदावार 120.657 मिलियन टन अंदाज़े वई आहे, जो गुज़िरियल साल जे 117.945 मिलियन टन खां 2.71 मिलियन टन वधीक आहे। श्री अन्न जी पैदावार 17.584 मिलियन टन अंदाज़े वई आहे। मकईअ जी पैदावार रिकॉर्ड 55.09 मिलियन टन ते पहुती आहे, जो गुज़िरियल साल जे 43.409 मिलियन टन

0: जे उत्पादन खां 11.684 मिलियन टन वधीक आहे। ताक़तवर ऐं मोटे अनाज जी पैदावार में बि मज़बूत वाध थी आहे, जंहिंजी कुल पैदावार 74.472 मिलियन टन अंदाज़े वई आहे। दालनि में तूर जी पैदावार 3.592 मिलियन टन अंदाज़े वई आहे, जो लॻभॻि गुज़िरियल साल जे 2.5624 मिलियन टन जे बराबरि आहे। चणनि जी पैदावार 12.514 मिलियन टन अंदाज़े वई आहे, जो गुज़िरियल साल जे 11.114 मिलियन टन खां 1.4 मिलियन टन वधीक आहे। दालनि जी पैदावार 1.7762 मिलियन टन अंदाज़े वई आहे। तिल जे बिज जी कुल पैदावार 43.095 मिलियन टन अंदाज़े वई आहे। बोही मूंग जी पैदावार 13.074 मिलियन टन अंदाज़े वई आहे, जो गुज़िरियल साल जे 11.942 मिलियन टन खां 1.112 मिलियन टन वधीक आहे। सोयाबीन जी पैदावार 12.596 मिलियन टन अंदाज़े वई आहे। तोरी ऐं सरन जी पैदावार 13.768 मिलियन टन अंदाज़े वई आहे, जो गुज़िरियल साल जे 12.667 मिलियन टन खां 1.101 मिलियन टन वधीक आहे। कृषि मंत्री अञा ॿुधायो त वापारिक फसलनि में कमांद जी पैदावार 5.0063 मिलियन टन अंदाज़े वई आहे, जो गुज़िरियल साल जे 454.611 मिलियन टन जे पैदावार खां 45.452 मिलियन टन वधीक आहे। कपह जी पैदावार 29.024 मिलियन गांठू अंदाज़े वई आहे, जॾहिं त पटसन जी पैदावार 9.176 मिलियन गांठू अंदाज़े वई आहे। श्री चौहान चयो त टियों अॻुवाटो अंदाज़ो साफ़ ॾेखारे थो त देश में अनाज मुख्य दाड़नि तिलारनि ऐं वापारिक फसलनि जी पैदावार जी स्थिति मज़बूत आहे ऐं कई फसलूं रिकॉर्ड उत्पादन स्तर हासिल करण जो अंदाज़ो रखनि थियूं। हुन अञा चयो त इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ऐं साइंस जी संस्थाऊं पारां कयल कृषि खोज मुख्य फसलनि जी पैदावार खे वधाइण में अहम किरदार निभायो आहे। इन्हनि कोशिशनि में मौसम अनुकूल क्लाइमेट रेज़िलियंट फसलनि जूं क़िस्मूं बारानी मेंह ते मदार रखण वारियूं पैदावार तकनीकूं ऐं खोज जे नतीजनि खे हारियुनि ताईं ज़मीनी सतह ते पहुचाइण शामिल आहे। गुज़िरियल साल कयल वियो विकसित कृषि संकल्प अभियान जे तहत वैज्ञानिकनि जी हारियुनि ताईं सिधो पहुच ज़रिए देश भर में ज़रात तरीक़नि खे अञा मज़बूत कयो वियो। हारियुनि खे मौसम मुफ़िक तकनीकूं, सुधरियल फसल उत्पादन तरीक़ा, बारानी खेती जूं रीतियूं ऐं समूचे ज़रात जी तरक़ी लाइ साइंसी सलाह जी मदद ॾिनी वई। 2025-26 में ICSR देश जे मुख़्तलिफ़ आबोहवा वारनि इलाइक़नि एग्रो क्लाइमेट रीजन्स लाइ फसलनि जूं 349 क़िस्मूं ज़ारी कयूं, जिन्हनि में अनाज, तिलार, दालूं, वापार जूं फसलूं ऐं गाह चारा शामिल आहिनि। मर्कज़ी ज़रात ऐं हारियुनि जे कल्याण मंत्री जानकारी ॾिनी त साल 2024-25 जे दौरान ब्रीडर बिजन ब्रीडर सीड जो उत्पादन 109,370.2 क्विंटल ते पहुतो, जॾहिं त उमदा क़िस्म जे बिजन जो उत्पादन 443,114.7 क्विंटल रहियो। मिटी ऐं पाणीअ जे वसीलनि जे सुधरियल इंतज़ाम, क्लाइमेट स्मार्ट ज़रात, डिजिटल मिटी जासूसी इंटेलिजेंस ऐं टिकाऊ ज़रात तकनीकूं मुख्य फसलनि जे उत्पादन खे वधाइण में वॾो सहयोग ॾिनो आहे।
1: तव्हां तबसिरो ॿुधी रहिया हुआ।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

0: हींअर अचो ॿुधूं प्रभु वफ़ा जो शेरो शायरी जंहिंमें सिंधियत जी सुञाणप आहे सिंधियत लोक म्यूज़िक।
1: उनवान आहे सिंधियत, आहे सिंधीअ जी सुञाणप सिंधियत, सिंधियत जो नाओ ॿियो इंसानियत, जीअ में जायूं ॾियण सिंधीअ जो गुण, थो घुरे सभिनी घरनि जी ख़ैरियत। सिंध जे संतनि खां वरसे में मिली प्यार शेवा भाव वारी ज़हनियत, बुग्ज़ जे जंहिंमें बुग्ज़ जी जंहिंमें ज़री बि बू न आ, सिंध जे रग रग में आ रूहानियत। हिन में नानक राम मुहम्मद ऐं मसीह, ही सो गुंचो जंहिंमें गूना गूनियत। आबदा जी आबदा थी शाह जा गाए कलाम, आबदा थी शाह जा गाए कलाम, थी वञे चढ़ंदी अखियुनि ते कैफ़ियत। हिन में नूरीअ वारी निवड़त ऐं नियाज़, माउरीअ वारी मंझि सां वतनियत, अमन ऐं महिमान नवाज़ी ऐं ख़ुलूस आहे अहिड़ी हिन में हर का ख़ासियत। ख़ुदि करे आसूदगीअ में थो गुज़र, पर न कंहिं ॿिए लाइ रखे थो बदनियत। ही परावन सां बि पंहिंजो थी वञे, थी छिके हर कंहिंखे हिन जी शख़्सियत। शकल ऐं ॿोलीअ जे लहजे मां बखे सिंध वारनि जी अलहदी असलियत। सूज मेहनत चाह सां वापार में हिन कई हासिल यगानी हैसियत। सिंध हेमूअ होश ऐं ॾाहर जी आहे नाज़, अॼु जिन ते करे थी क़ौमियत। पंहिंजे ॿोलीअ ऐं अदब एके बिना का बि आलम में न रहंदसि अहमियत। शाइरीअ में तो तपस्याऊं करे अवफ़ा हासिल कई मक़बूलियत, आहे सिंधीअ जी सुञाणप सिंधियत, सिंधियत जो नाओ ॿियो इंसानियत। ॿियो ग़ज़ल पेश आहे, ओ हूअ जा वणकार ॾिसे थो उहो थी वतन मुंहिंजो, ओ हूअ जा वणकार ॾिसे थो उहो थी वतन मुंहिंजो, उहो थी वतन मुंहिंजो, अरे उहो थी चमन मुंहिंजो, ऐं हूअ कुरलाईंदड़ कुंजन संदी कतार ॾिसे थो, ऐं हूअ कुरलाईंदड़ कुंजन संदी कतार ॾिसे थो उहो थी वतन मुंहिंजो। पोयाड़ीअ जो पट ते वेही ॻाइनि था ॾिस काफ़ियूं ॾेही, सिनियूं सुरंदा सारंगियूं मटका यकतार ॾिसे थो उहो थी वतन मुंहिंजो, उहो जा वणकार ॾिसे थो उहो थी वतन मुंहिंजो, उहो थी वतन मुंहिंजो, उहो थी चमन मुंहिंजो। ख़बर खजूं ऐं अक ॾिसे थो, टकरनि विच मां लक ॾिसे थो, भिटुनि मथां कराहा ऐं कजावा।

ऐं कोहार ॾिसें थो उहो थी वतन मुंहिंजो। ॾूर ॾिसीं थो छना छपर हू, ॾूर ॾिसीं थो छना छपर हू, परियां वछेरन संदा वगर हू, विच वाड़ीअ में वहंदा हू निसारा नार ॾिसें थो उहो थी वतन मुंहिंजो। धूणनि था सिर संग सुनहरा, पेहे ते बीही ॼन था पहिरा, धूणनि था सिर संग सुनहरा, पेहे ते बीही ॼन पहिरा, खेतनि में खिलड़ियुनि जी खिलखिल ऐं खीकार ॾिसें थो उहो थी वतन मुंहिंजो। जित मेंदीअ जी महक अचे थी, जित मेंदीअ जी महक अचे थी, जित ॾाढ़ुनि जी लाम नचे थी, कुणियूं कुम ऐं केसू फुल, हू लवा लियार ॾिसें थो उहो थी वतन मुंहिंजो। हू मोरनि जी राड़ ॿुधें थो, राणू हीअं फाड़ ॿुधें थो, थर जे पोठनि ते वारीअ जी उहो वसकार ॾिसें थो उहो थी वतन मुंहिंजो। जिन सांगियुनि सां जनम गुज़ारियुमि, तिन खे अॼु ताईं न विसारियुमि, अमर आबे जी खाक कथूरी ख़ुशबूदार ॾिसें थो उहो थी वतन मुंहिंजो। वेड़े चन सां मन वगियल थी, सा वफ़ा तिन साण सिबियल थी, सरल सबा जा सिक वारा मारू मनठार ॾिसें थो उहो थी वतन मुंहिंजो, उहो थी चमन मुंहिंजो। हींअर कुझु जन्म आस्थान लाड़काणे जे बारे में कुझु ॻाल्हाईंदुसि। लाड़काणे जी यादि आबशार जीअं लहे जबल तां आई अरसे बाद, लाड़काणे जी यादि, लाड़काणे जो शान सिंधड़ीअ जे महफ़िल में जीअं को मैज़ मथां गुलदान। छा त संदुसि हो शान, लाड़काणो हो साहसे बाणो, माशूकन मकान, ज्ञान बाग मां गुल जंहिं लाइ ईंदो होसि छिनी उन यादि कयो व्याकुल। रंग रंगीलो शहर मुशारा संगीत सभाऊं, हुयो सुरीलो शहर रंग रंगीलो शहर, सूंह हुई सुभान शहर शायरनि जो आखेरो, बेवस जो आस्थान। लाड़काणे जी सिक घिटियूं बाज़ारियूं ऐं ओताकूं, का त छिके थी छिक अबासी ओताक, गॾु खाइण गॾु घुमण जीअं के मोहबती मुश्ताक। भेण हुई अशरफ पली असां वटि, पढ़ी असां वटि मज़हब मुख़्तलिफ़। लाड़काणे जी सार यूसुफ़ शाह जे मेले ते सभु गॾबा हुआसूं यार। शार्क गोकल धाम ब्रज गलियुनि में राधा खोजण आयो हूंदो शाम, अबासन जो सॾु रान पकल बिरयानी ज़रदो वेही खाधो गॾु। शहर सॼो परिवार ओड़ो पाड़ो अबो अमर हो पंहिंजा, शहर सॼो परिवार ओड़ो पाड़ो अबो अमर हो पंहिंजा ऐप ऐं प्यार। दोस्त अबासीअ ते एॾो मून रुनो आहे जेॾो मयत ते हुन जे, प्यार जी मरहम लाइ ही जे नफ़रत कया दिलियुनि ते, गहरा घाव छुटाए सभ जो हिकु रब आहे, सिज चंड कला विज्ञान बि हिकु आहे, ॿियो ॿियो मज़हब आहे। सभई मुंहिंजा यार मूंखे नफ़रत आहे उन्हनि खां जे आहिनि गद्दार। धरती सभ जी माउ हिन जी थञ लॼाए जेको उहो खरियल आहे विया। सूम भारती आहे जापानी या अमेरिकन, सूंह सूंह ई आहे। पहिरियों सभु इंसान हिकु ई कुलम जा भाती आहियूं, पहिरियों सभु इंसान हिकु ई कुलम जा भाती, ही भॻवान ख़ुदा मतिलबु आहे ॿिन्ही जो साॻियो, ॿोली जुदा जुदा।

ॿी ॿोली ॿियो रंग हिक ई लाम ते लुडी रहियो आहे तोते सां गॾु कंग बूटा पिया बहकनि अलॻि अलॻि रूपनि रंगनि में गुल फुल पिया महकनि रोहल रिंज फ़क़ीर रोहल रिंज फ़क़ीर कॾहिं चवे मां कृष्ण आहियां कॾहिं त रूप कबीर संख बणियो हो सा हर सास मुल्क सॼो ई मंदर जंहिंजो गुंबुज़ा आकाश हिकु ई देस हिकु कुल ॿियनि ॿोलियुनि सां सिंधी बि आहे गुलदस्ते में गुल हिरदो ठरंदो आहे हिरदो ठरंदो आहे जॾहिं बि डूंगर डरंदो आहे या रावण मरंदो आहे रोअल जी दरगाह तुन तुन तुन तुन सुण यकतारे जे सादे सुर में एके ज्योति गुण।

हीअ आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहिनि ख़ासि ख़ासि ख़बरूं। भारत बणिजो दुनिया जो ॿियो सभ खां वॾो सोलर ग्रोथ मार्केट। सालाना सोलर कैपेसिटी वाधारे में यूएसए खां अॻिते निकितो। वेनेजुएला जी एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज 5 ॾींहनि जे दौरे ते इंडिया पहुती। यूनाइटेड किंगडम जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ अफेयर्स यवेट कूपर 2 ॾींहनि जे सरकारी दौरे ते इंडिया पहुती। इंडिया कम्बोडिया में एनपीसीआई एसीएलईडीए बैंक पार्टनरशिप जे ज़रिए यूपीआई पेमेंट शुरू कयो। ईरान कुवैत एयरपोर्ट ते हमलो कयो जंहिंमें हिकु इंडियन नेशनल मारिजी वियो। गल्फ क्राइसिस वधण करे तेल जा भाव मथे चढ़ी विया।

तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्तु मुताबिक़ 6:30 वॻे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त, सदाई गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। यह यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नवन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2री बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब वक्त हुआ है हमारा खूबसूरत कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का, जो आपको बेहद पसंद है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करते हैं आप सबका इस कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्यारा सा कार्यक्रम जो आपको

तो स्वागतम आप सभी का, क्योंकि हमारा कार्यक्रम ही ऐसा है। और अब बात करते हैं दोस्तों कुछ दिल की, यानी कि दर्द संभाल के दिल में रखे जाते नहीं, बन जाए हर नासूर तो उम जाते नहीं। वक्त मिलते ही दामन छुड़ाना है बेहतर, किसी से पूछ कर ऐसे फैसले किए जाते नहीं।

तो आप सुन रहे हैं गीता वेरी गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आपके साथ सिमरन कौर। कहते हैं जिंदगी एक सफर है, हर पल का मजा लो, खुशियां बांटो, गम भुला दो और हर दिन को खास बना लो। खास तौर पर जिंदगी को गाओ, हर पल जी लो, जो बीत गया उसे छोड़ो, आने वाली कल को जीत लो।

हकीकत की भीड़ में कुछ गुमशुदा सपने ढूंढ रहे हैं। आजकल हम अपनों में कुछ अपने ढूंढ रहे हैं।

दोस्तों, मुस्कुराहट का रंग हमेशा खूबसूरत होता है, इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दो?
1: ओहो, भूल ही गई थी, तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जोड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट रीजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त और ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक है। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में

0: गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
4: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। यह घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
5: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। कोर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। कोर तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
3: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली।

0: गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋतव्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। Union Home Minister Amit Shah to chair 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong. U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAFF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर गंगा में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में नवोदीप चक्रवर्ती का गाया गुजरी तोड़ी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। वीडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका। नमस्कार, उद्योग पत्रिका के अंक में आप सभी का स्वागत है।
2: मैं नव्या। आज का हमारा विषय है मैनेजमेंट स्किल्स और डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया के इस युग में मजबूत मैनेजमेंट स्किल्स किसी भी डिजिटल अभियान की सफलता की कुंजी है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के प्रभावी उपयोग के लिए कंटेंट स्ट्रेटजी, डेटा एनालिसिस और टीम लीडरशिप का सही तालमेल होना अत्यंत आवश्यक है। आज का हमारा विषय है मैनेजमेंट स्किल्स और डिजिटल मीडिया। आज के समय में डिजिटल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि यह शिक्षा, बिजनेस, मार्केटिंग और मैनेजमेंट का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो आइए जानते हैं कि कैसे अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स और डिजिटल मीडिया मिलकर सफलता की नई कहानी लिखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट स्किल्स आखिर होती क्या है। मैनेजमेंट स्किल्स का मतलब है काम को सही तरीके से प्लान करना, लोगों के साथ तालमेल बनाना, समय का सही उपयोग करना और समस्याओं का समाधान निकालना। एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो टीम को प्रेरित करे, सही निर्णय ले, समय पर काम पूरे करे और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सके। आज के युवाओं के लिए स्किल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि हर क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है। तो आइए जानते हैं कुछ आसान टिप्स जो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर बना

सकती हैं। टाइम मैनेजमेंट, हर काम का एक समय तय करें। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और उपयोगी तरीके से करें। कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पष्ट और सकारात्मक बातचीत टीम वर्क को मजबूत बनाती है। क्रिएटिविटी, डिजिटल मीडिया में नया और आकर्षण कंटेंट ही लोगों को पसंद आता है। टीम वर्क, अकेले से ज्यादा बेहतर काम एक टीम मिलकर कर सकती है। टेक्नोलॉजी की समझ, नए डिजिटल टूल्स और एप्स की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं डिजिटल मीडिया की। डिजिटल मीडिया में शामिल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट और ऑनलाइन मार्केटिंग। आज कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को, सेवाओं को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मीडिया का सबसे ज्यादा उपयोग कर रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी को अपने नए प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचानी है तो वह टीवी विज्ञापन के साथ साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का सहारा लेती है। यहाँ मैनेजमेंट स्किल्स बहुत जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि कंटेंट की योजना बनानी होती है, टीम को संभालना होता है, सही समय पर पोस्ट करना होता है और लोगों की प्रतिक्रिया को समझना होता है। अगर आप छात्र हैं या अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो डिजिटल मीडिया और मैनेजमेंट स्किल्स आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। आज कई युवा YouTube चैनल्स चला रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और फ्रीलांसिंग के जरिए कमाई कर रहे हैं। लेकिन सफलता तभी मिलती है जब समय का सही प्रबंध हो, काम में अनुशासन हो और लोगों से बेहतर संवाद हो। यानी सिर्फ तकनीक जानना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। डिजिटल मीडिया ने समाज को प्रभावित किया है। आज सामाजिक जागरूकता फैलाने में डिजिटल मीडिया की बड़ी भूमिका है। चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, शिक्षा का प्रचार, महिला सशक्तिकरण या स्वास्थ्य जागरूकता, हर विषय पर डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बहुत आती है। अगर डिजिटल मीडिया का गलत उपयोग हो तो फेक न्यूज और गलत जानकारी समाज में भ्रम फैला सकती है। इसलिए डिजिटल मीडिया को सही दिशा देने के लिए अच्छी मैनेजमेंट और जिम्मेदारी सोच की बहुत जरूरत होती है। आज लगभग हर क्षेत्र में डिजिटल मीडिया आ चुका है, हर क्षेत्र डिजिटल हो चुका है। चाहे शिक्षा हो, बैंकिंग हो, मीडिया हो, मार्केटिंग हो या स्वास्थ्य सेवाएं, हर जगह डिजिटल मीडिया का उपयोग बढ़ रहा है। और जहां डिजिटल काम होगा वहां उसे संभालने के लिए मैनेजमेंट स्किल्स भी जरूरी होंगी। उदाहरण के लिए, एक डिजिटल मार्केटिंग टीम में कोई कंटेंट बनाता है, कोई वीडियो एडिट करता है, कोई सोशल मीडिया संभालता है और कोई डेटा का विश्लेषण करता है। इन सबको एक साथ सही दिशा में काम कराने के लिए एक कुशल मैनेजर की आवश्यकता होती है। इसलिए आज डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट और ब्रांड मैनेजर जैसी नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं। जहां डिजिटल मीडिया के फायदे हैं, वहीं कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे समय की बर्बादी, फेक न्यूज, ऑनलाइन तनाव और प्राइवेसी की समस्या। इनसे बचने के लिए जरूरी है सही जानकारी पर भरोसा करना, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करना और डिजिटल संतुलन बनाए रखना। एक अच्छे मैनेजर की पहचान यही है, वह हर चुनौती की समझदारी से समाधान निकालता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन दोनों विषयों का आपस में क्या संबंध है? डिजिटल मीडिया को सफल बनाने के लिए मजबूत मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत होती है। मान लीजिए किसी कंपनी को अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके लिए सोशल मीडिया कैंपेन बनाना होगा, वीडियो और पोस्ट तैयार करनी होगी, सही समय पर कंटेंट डालना होगा और लोगों की प्रतिक्रिया को समझना होगा। इन सभी कामों के लिए जरूरी है प्लानिंग, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन। यानी डिजिटल मीडिया और मैनेजमेंट एक दूसरे के पूरक हैं। अगर डिजिटल मीडिया एक वाहन है तो मैनेजमेंट उसी दिशा तय करने वाला ड्राइवर है। आज हमने जाना मैनेजमेंट स्किल्स और डिजिटल मीडिया आज के दौर में कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर सही दिशा और सही सोच के साथ इनका प्रयोग किया जाए तो ये हमारे करियर और जीवन दोनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, तकनीक तभी सफल होती है जब उसे सही तरीके से मैनेज किया जाए।

0: में वार्ता विज्ञान और प्रौद्योगिकी से विकसित होता भारत। वार्ताकार हैं श्री हरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व संयुक्त निदेशक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार।
1: भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में हाल के वर्षों में लंबी छलांग लगाई है। इस मामले में बीता साल 2025 बेहद महत्वपूर्ण रहा। अब इस नए वर्ष यानी 2026 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत विकास की नई ऊंचाई को छू सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। विशेषकर अनुसंधान और नवाचार में भारतीय युवा वैज्ञानिक एवं उद्यमी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2026 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय अंतः विषय साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जलवायु ऊर्जा, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली, नैनो साइंस, पैलियो साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में नई सफलता मिलने के संकेत है। वास्तव में सन 2047 तक देश को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में नई तेजी लाने की आवश्यकता है। इसके लिए देश में वैज्ञानिक माहौल को पैदा करने और उसके दायरे को लगातार विस्तार देने की आवश्यकता है। इस दिशा में क्षमता निर्माण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की इंस्पायर योजना एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे देश में विज्ञान के प्रति नए सिरे से युवा आकर्षित हो रहे हैं। देश में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सतत वस्त्र विरासत एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये केंद्र विरासत वस्त्र प्रक्रियाओं के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन, उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों की पहचान और शमन के साथ साथ सतत रणनीतियों के विकास पर भी कार्य कर रही है। इससे देश में ग्रीन टेक्सटाइल्स के लिए नीतिगत ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस योजना से भारत की पारंपरिक वस्त्र कलाकारी जैसे बनारसी, तसर, रेशम, बालूचरी या स्वर्णाचरी, फुलकारी कढ़ाई, महेश्वरी, इलकल बुनाई, जैन पाटा संरक्षण, भवानी जामक्कलम, मलमल बुनाई, मैसूर मलबरी सिल्क, पुंजा दरी सिल्क, नामदा सिल्क आदि का पुनरोद्धार होगा। सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी ने उन्नत स्वदेशी कॉकलियर इम्प्लांट प्रणाली के डिजाइन, विकास, प्रमाणन और नैदानिक परीक्षण से संबंधित परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये परियोजना देश में किफायती और उन्नत चिकित्सा उपकरणों के स्वदेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसी तरह आयुष अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों को समर्थन देने वाले अनुसंधान को देश में नए तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नई पीढ़ी के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को लेकर नई उत्सुकता पैदा हो रही है।

रही है। इस मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने तापमान एवं पुनर्जीवनीय सूक्ष्म जीव संरक्षण प्रणाली विकसित की है, जो कोल्ड चेन मुक्त जैव प्रौद्योगिकी के लिए बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने में NCSTC यानी राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद की बड़ी भूमिका है। पिछले दिनों इसके साइंस ऑन व्हील्स पहल महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और दिल्ली के विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय हुई। इसके माध्यम से इंटरैक्टिव विज्ञान शिक्षण प्रदान किया गया। इससे हजारों विद्यार्थी और सैकड़ों शिक्षक लाभान्वित हुए। इसमें विद्यार्थियों को गणित, खगोल विज्ञान, कला एवं वास्तुकला, प्राचीन पुरातात्विक प्रणाली, खाद्य संस्कृति, शिल्प, बुनाई और हथकरघा, वस्त्र निर्माण, मिट्टी के बर्तन, धातु कार्य, स्वास्थ्य प्रणाली, मृदा संरक्षण और प्राचीन काल की ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की रोचक जानकारी दी गई। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 ने दुनिया की टॉप इनोवेटिव इकोनॉमी में भारत को 38वां रैंक दिया। WIPO के अनुसार भारत दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग के मामले में छठे स्थान पर है। रिसर्च पब्लिकेशन के क्षेत्र में भारत इस समय दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इस तरह भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार अपनी दशा और दिशा में सुधार कर रहा है। सोशल मीडिया के इस युग में भारतीय विद्यार्थी और युवा करोड़ों की संख्या में विकास की नई क्रांति लाने के लिए सजग और प्रयत्नशील है। इस दिशा में केंद्र सरकार और विभिन्न प्रदेशों की सरकार एकजुट होकर युवाओं को मार्गदर्शन और प्रभावी सहयोग दे रही है। पिछले साल भारत सरकार ने अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को मंजूरी देकर विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। 6 वर्षों में ये योजना भारतीय विज्ञान की तस्वीर बदल सकती है। इसके अंतर्गत उभरते क्षेत्रों, देश की आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक जरूरतों, आत्मनिर्भरता से जुड़े अन्य क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को अनुसंधान, विकास और नवाचार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर और उससे ऊपर के उच्च स्तर की परिवर्तनकारी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना, डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना को आसान बनाना आदि उद्देश्यों को शामिल किया गया है। देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को तय समय सीमा में हासिल कर सकता है। इस दिशा में रक्षा उत्पादन से लेकर MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र तक को वैज्ञानिक तरीके से और अधिक संगठित किया जा रहा है, ताकि भारत इन क्षेत्रों में जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर बन सके। इस कड़ी में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिलकर लागू कर रहे हैं। इसमें देश भर में फैले राष्ट्रीय शैक्षणिक और R&D संस्थान को अलग अलग कैपेसिटी वाले हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देकर मजबूत बनाया जा रहा है। इसके जरिए देश के बड़े वैज्ञानिक एवं टेक्नोलॉजी समुदाय तक पहुंचने का लक्ष्य है। देश में जलवायु ऊर्जा के क्षेत्र में कोयला, गैसीकरण, मेथनॉल, DME के लिए पायलट स्केल प्रोजेक्ट भी आरंभ किए गए। इधर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स को उन्नत कर टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क्स में परिवर्तित किया गया। इन सब प्रयासों ने भारत को विकास की रैंकिंग में एक

लेकर दिन में एक बजकर 15 मिनट तक सुनी जा सकेंगी। और इस दौरान जो प्रोग्राम पेश किए जाएंगे, आइए उन पर नजर डालते हैं। अब से चंद ही लम्हों के बाद सुबह का ही प्रोग्राम होगा। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे हम दबारी ताला और नाते रसूल करीम। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम सुनिएगा। खबरें नष्ट होंगी 9:50 पर और 10 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम शम्मे फरोजा। 10:05 पर हुस्ने गजल प्रोग्राम में गैर फिल्मी गजलें नशर की जाएंगी। 10:30 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम चर्चा का विषय है। 11 बजे मेरे पसंद प्रोग्राम में फिल्मी नगमे नशर होंगे। 11:30 पर सुनिएगा एक ड्रामा जिसका उन्वान है बेगुनाह। दिन में 12 बजे खबरें नष्ट की जाएंगी और 12:10 से आप सुन सकते हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम 12:40 पर तारीख साज प्रोग्राम होगा। आज का मौजू है ए ओ ह्योम। 12:00 दिन में 1 बजे आलमी खबरें नष्ट होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर आज की मजलिस में नष्ट होने वाले प्रोग्रामों पर। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम सुबह का ही। हम दबारी ताला और नाते रसूल पेश कर रही हैं जनाब अबरार की रतपुरी।

नजर से हो दरा है ये जिक्र विर्द सही।

ساختہ پڑتی ہے جس دم ساز گنبد پر.

小小草莓，还晒在街上家里面，大太阳的背后的人物。

0: होती है।
1: हम दोबारे तालाव नाते रसूल अभी आपने सुनी पेश कर रहे थे जनाब अबरार किरतपुरी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
2: और अब समय आ चुका है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि आज यानी 4 जून का जो दिन है वो इतिहास में क्यों दर्ज हो गया। और 1903 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में साप्ताहिक पत्र इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना था। 1917 में आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमरीका में पहली बार पुलित्ज़र प्राइजेस प्रदान किए गए। ये पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, नाटक और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिए जाते हैं। आज इन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिना जाता है। 1969 में आज ही के दिन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की घोषणा की। और आज ही के दिन 1994 में भारत ने पृथ्वी मिसाइल का सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया, जो उसके स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। और श्रोताओं, अब याद करेंगे उन महान हस्तियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से विदा हुए। आज पुण्यतिथि है सुलभा देशपांडे की। ये बॉलीवुड और रंगमंच अदाकारा थी। रंगमंच कलाकार सुलभा देशपांडे ने कई मराठी और हिंदी फिल्मों तथा टीवी सीरियल में काम किया। इन्होंने मराठी और हिंदी रंगमंच के अलावा मराठी और हिंदी की कई फिल्मों में भी अभिनय किया। इनमें तमन्ना, विरासत, याराना, खून भरी मांग और इंग्लिश फिल्म जैसी कई सफल फिल्मों के नाम शामिल हैं। सुलभा देशपांडे ने भूमिका अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, गमन जैसी फिल्मों में भी यादगार भूमिकाएं निभाई। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है शांतता कोर्ट चालुआ है। हम इसका ही एक अंश आपको सुनाने जा रहे हैं।

और आज ही पुण्यतिथि है अभिमन्यु अनंत की भी। मॉरिशस में हिंदी कथा साहित्य का सम्राट इन्हें माना जाता था। इन्होंने 18 वर्षों से हिंदी का अध्यापन किया और 3 वर्षों तक युवा मंत्रालय में नाट्य कला विभाग में नाट्य प्रशिक्षक रहे। अभिमन्यु अनंत को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि प्रमुख है। और अब हम याद कर रहे हैं श्रीपति पंडित राधेल बाला सुब्रमण्यम को, जिन्हें आप और हम जानते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम के नाम से भी। इनकी आज जयंती है। ये देश के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक हैं। इन्हें बालू के नाम से भी जाना जाता है। एसपी ने अपने 5 दशक लंबे फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक गीत गाए। पार्श्व गायक होने के साथ साथ ये एक अभिनेता, संगीत निर्देशक और फिल्म निर्माता भी थे। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 6 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 बार तेलुगु सिनेमा में नंदी पुरस्कार जीता। फिल्म मैंने प्यार किया, साजन और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों गीतों ने भी इनके सभी के दिलों को छू लिया।

आज ही जयंती है बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध अदाकारा नूतन की भी। नूतन ने बतौर बाल कलाकार फिल्म नल दमयंती से अपने सिने करियर की शुरुआत की। 1955 का साल इनके फिल्मी जीवन में अहम साबित हुआ जब नूतन ने फिल्म सीमा में विद्रोहिणी नायिका के सशक्त किरदार को रूपहले पर्दे पर साकार किया। वहीं उन्होंने देवानंद के साथ पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने में हल्के हल्के रोल कर अपनी बहुआयामी प्रतिभा का परिचय दिया।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल वसीले से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को 1-0 से हराकर भारत खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ बातचीत करेंगे। मोहतरमा रोड्रिग्ज भारत के 5 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। उनके हमराह मुख्तलिफ महकमों के वजीरों पर मुश्तमिल एक वफद भी भारत आया है। इसमें उम्र खारजा, मईशत, खजाने, साइंस और टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं। मोहतरमा रोड्रिग्ज इससे पहले 2015 में वजीर खारजा की हैसियत से और इसके बाद 2019, 2023, 2024 और 2025 में नायब सदर की हैसियत से भारत के दौरे पर आ चुकी हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मेघालय के शहर शिलोंग में

0: कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक आग लगने वाली इमारत के मालिक लोकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान दिल्ली के वजीर आला के दफ्तर ने कहा कि उन खामियों की पूरी संजीदगी से जांच की जाएगी जो इस अफसोसनाक आतिशजदगी के वाक की वजह बनी और जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कल रात ब्रह्मपुरा थाने के तहत आने वाले इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में जबरदस्त आग लगने से 3 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए। मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि कई मरीजों की हालत नाजुक है, हुकाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के सदर रविंद्र चौहान ने 18 जून को होने वाले महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के लिए 17 महायुति उम्मीदवार की फहरिस्त का ऐलान किया है। मुंबई में मुश्तरक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने यकीन जाहिर किया कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी इत्तेहाद के सभी 17 उम्मीदवार कामयाब रहेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मगरबी बंगाल के हिमालयी जैली खत्ते, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश होने का इम्कान है। फुटबॉल में मेजबान भारत गोवा के मार्गो में सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। मैच का वाहिद गोल समफीदा नोनग्रूम ने खेल के 98वें मिनट में किया। इस तरह आलमी नंबर 69 भारतीय टीम पिछले 6 साल में पहली बार खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। कुश्ती में भारतीय पहलवान आज मंगोलिया में शुरू होने वाले उलान बातर ओपन दर्जाबंदी सीरीज टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स के साथ बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल वसीले से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे और फुटबॉल में गोवा में भूटान को 1 गोल से हराकर भारत खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेशे खिदमत है अकवाल ज़रीन का प्रोग्राम शम्मे फरोज़ा।
2: जज्बे हमदर्दी इंसानियत का बुनियादी और असासी अंसर है। इंसान पूरी कायनात में तमाम मखलूकात से इसीलिए बरतर और बुलंदोबाला है कि उसके सीने में हमदर्दी का जज्बा मौजन होता है। यह नाकाबिल इनकार हकीकत है कि किसी भी ज़ीरू मखलूक में इस कदर जज्बे तरहुम मौजूद नहीं होता जितना अशरफुल मखलूकात यानी इंसान में पाया जाता है। यही सबब है कि हर इंसानी महज़ब मुआशरे में सिला रहमी और हमदर्दी के एहसासात और जज्बात काबिले सदहतराम तसव्वुर किए जाते हैं। जब हम मज़ाहिब आलम की तालीमात का तकाबली मुतालिया करते हैं और तमाम मज़ाहिब की मुश्तरका हिदायात का जायजा लेते हैं तो खुशाइंद हकीकत सामने आती है कि दुनिया के तमाम मजाहिब की मुत्तफिका और मुश्तरका तालीम हमदर्दी और सिला रहमी पर मबनी है। तालीमात के जितने भी माखज हो सकते हैं वो मजहबी हों या माशरती, हर एक की तालीम में मजलूम से हमदर्दी की हिदायत सर फहरिस्त मौजूद हैं। हर आफाकी मजहब इस आफाकी उसूल से वाकिफ है कि इंसानी मुआशरा जज्बे हमदर्दी के बगैर इर्तका पजीर नहीं हो सकता। इंसानी इर्तका और माशरे की बुलंदी का पैमाना हर दौर में हमदर्दी ही रहा है। जज्बे हमदर्दी ही से दुनिया के बहुत से शोबे और गोशे वाह होते हैं। मजलूम से हमदर्दी के पाकीजा जज्बे की बदौलत ही

0: अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्न गजल। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी है। पेश है प्रोग्राम चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मानसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मानसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मानसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मानसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है, उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
2: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मानसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकी से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के, वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मानसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको जो है फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना

0: अपनानी चाहिए? क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि उत्तरी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी, तो कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है और आईसीआर इंस्टीट्यूट है, जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से बाहर मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कम्पोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कम्पोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं, और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पे हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम उपयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसीआर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के दो दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हराश नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकौड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
0: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है, इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
2: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें 10-4% की त्रुटि भी हो सकती है। आगे जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये मानना देने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा है पूर्वानुमान का उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94-106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण दक्षिणी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है, और उत्तर दक्षिण भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी

0: वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूर समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए हम बात करें तो सप्ताह में दो बार जो है पांच दिनों का विवरण दिया जाता है, इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है। इसमें अगले चार हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बार और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो जिसको देखते हुए जो मौसम ये जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानीय के स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर दबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ तो उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है कितने आगे बारिश होने वाली है कितना भी छोड़ना है तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए फसल को नुकसान ना हो और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी किस्म क्रियाएं आगे जो पूरे चार मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में दो बार बताते हैं किसानों को और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही, अगर धान की क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। और अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना है खासकर नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में जहाँ पे तो बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है। तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट फीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकाली हैं जिसमें 35% पानी बचता है, इसी तरह से एसआरआई विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30-35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े पर बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे जो पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के पूंछ खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वास्तविक रूप से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्था पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भाग की बात या मध्य भाग की बात की जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग एक हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे साथ

0: में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं, और किसान को सही समय पे सीड भी मिले, साथ साथ में उसके बाद हमारे रूरल भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है, और कृषि वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है। तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें, मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल यह है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
2: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है या इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है, भारतवर्ष के कहे या अगर बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं, प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है, उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा के महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है, इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें एक तरह जनरली हम बात करें उसके बारे में तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है, जबकि एल नीनो कंडीशन यानी कि जब समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मानसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक है जो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मानसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एल नीनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मानसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मानसून का सीजन हमारा शुरू हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एल नीनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशंस से एल नीनो की वीक कंडीशंस की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मानसून के दौरान एल नीनो कंडीशंस जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है सारे मॉडल दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है, यानी कि मानसून के दौरान एल नीनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र के जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए यही कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यावहारिक उपायों

0: पर ध्यान देना चाहिए।
1: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उनको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक्के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवार का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमार भी फैलाते हैं, कीड़े भी प्रकोप भी लाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवार का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का उर्वरता रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30-35% पानी की बचत होती है, पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उसमें पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फाल साध निवारण आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जलधारण क्षमता भी बढ़ेगी और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराए नहीं। और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और साथ में जो हमारे मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का हमें इसकी सूचनाओं और जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
0: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कल दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
2: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है, वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो लेते ह्यूमिडिटी है उसको रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरमेंट की कंडीशंस होती है, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो ये खतरे की वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए जाते हैं।
0: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मानसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर एफ

0: निजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है?
1: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपना वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकी होनी चाहिए और आगे के मौसम को अच्छा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती है। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट बासमती धान में आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इसके और भी अच्छा करने की संभावना है, क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके, जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले में सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है। जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो ये किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री है उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करे। जब किसान के घर मेहनत करता है, उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
0: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है, जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
2: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में अगर आप पूरे वैश्विक पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ तक बात है मौसम विज्ञान बाकी, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ में रडार है, उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है और काफी हाई रिजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्ण दिया जा रहा है।
0: जी।
2: इसके साथ साथ में AI का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है और AI ML को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है ये, इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जाए।
0: जी हाँ बिल्कुल, मानसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मानसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक

0: महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मानसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है। आप सुन रहे थे प्रोग्राम चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से आज के प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं अदाकारा नूतन को। आज है उनका यौमे पैदाइश और उनका नगमा भी आपने सुना, बंदनी फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया। और नूतन के हवाले से तो बात अगर की जाए, हिंदुस्तानी फिल्म सनत की ये उन अजीम अदाकाराओं में शुमार होती हैं जिन्होंने अपनी फितरी अदाकारी, जज्बाती गहराई और बावकार शख्सियत से नाजरीन के दिलों में हमेशा के लिए जगह बनाई। उन्होंने चार दहाइयों से जायद अरसे पर मुहित अपने फिल्मी करियर में मुतअद्दिद यादगार किरदार अदा किए और भारतीय सिनेमा में खवातीन के किरदारों की नई पहचान कायम की।

नूतन की पैदाइश आज ही के दिन यानी 4 जून को सन 1936 में हुई थी मुंबई में। एक फनकार घराने से उनका ताल्लुक रहा। उनकी वालिदा भी अपने जमाने की मारूफ अदाकारा थीं, जबकि उनके वालिद कुमार सेन समर्थ फिल्मसाज थे। फनकाराना माहौल में परवरिश पाने की वजह से नूतन को बचपन से ही अदाकारी में काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने 1952 में एक कंपटीशन में भी हिस्सा लिया था, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट था। उसके बाद तो उनकी शोहरत में काफी इजाफा हो गया था। जहां तक उनके फिल्मी सफर की बात है सामीन, उन्होंने महज 14 साल की उम्र में फिल्म हमारी बेटी से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया था। यह फिल्म उनकी वालिदा ने बनाई थी। इब्तदाई फिल्मों में अगरचे उन्हें ज्यादा कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन उनकी जो गैर मामूली सलाहियतें थी वो जल्द ही सबके सामने आ गई। उनकी पहली बड़ी और कामयाब फिल्म थी सीमा, जिसमें उनकी शानदार अदाकारी को नाकदीन और अवाम दोनों ने बेहद सराहा था। 1950 और 60 की दहाई नूतन के करियर का सुनहरा दौर साबित हुई और इस जमाने में उनकी चंद मशहूर फिल्में मंजरे आम पर आई। एक फिल्म थी सुजाता, जो जात पात के इम्तियाज पर मबनी एक बहुत ही खूबसूरत समाजी सोशल फिल्म थी सामीन। इसके बाद एक आपको दिखाई देगी फिल्म उनकी अनाड़ी, ये एक रोमांटिक कहानी पर मबनी थी। और बंदनी फिल्म भी उनकी बेहतरीन अदाकारी से सजी हुई फिल्म में शुमार की जाती है। मिलन फिल्म भी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उनकी अदाकारी अपने उरूज पर नजर आती है। एक अदबी शाहकार फिल्म की अगर बात की जाए तो इस जुमरे में रखी जाएगी फिल्म सरस्वती चंद्र, जिसका नगमा भी ओपनिंग में हमने आपको सुनवाया, चंदन सबदन। और एक और फिल्म की बात करें, बहुत ही यादगार किरदार था यहां पर भी, मैं तुलसी तेरे आंगन की। नूतन की जहां तक बात है सामीन, उन्होंने हमेशा अपने लिए ऐसे किरदार मुंतखब किए जो ज्यादातर खवातीन की जिंदगी पर मबनी थे, यानी कि जहां पर एक खातून की जद्दोजहद को दिखाया गया था, मजबूत किस तरह से मुआशरती मसाइल हल करती हुई और अपने इंसानी जज्बात को कहीं छुपाती हुई, कहीं उनको बयान करती हुई नजर आती है कोई भी खातून। तो इस तरह की थी नूतन की जिंदगी और इस तरह के थे कुछ उनके किरदार। उनकी अदाकारी का सबसे नुमाया पहलू क्या है, इस

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरी पसंद और आज के प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं अदाकारा नूतन को। उनकी अदाकारी का सबसे नुमाया पहलू सामईन उनकी सादगी हकीकत पसंदी थी। वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चेहरे के तासुरात के साथ, आवाज के उतार चढ़ाव के साथ और बहुत ही हसास किस्म के जज्बाती अदाकारी किया करती थी, गोया किरदार को जिंदा कर दिया करती थी। आज भी उनकी फिल्में अदाकारी के तुलबा और फिल्मी नाकदीन के लिए एक मिसाल समझी जाती है। 1980 की दहाई तक आते आते नूतन ने किरदार निगारी पर मबनी जो फिल्में थी वो किरदार अदा करने शुरू कर दिए थे, यानी अब वो सोलो हीरोइन के तौर पर नहीं जलवागर होती थी बल्कि कैरेक्टर एक्टर के तौर पर। उनकी जो कुछ कामयाब फिल्में हमें नजर आती हैं उनमें है मेरी जंग, नाम, कर्मा वगैरह, और खासकर मेरी जंग में जो उनका किरदार था जब वो अपने होशो हवास से बेगाना हो जाती है तो बेहद ये अदाकारी लोगों को पसंद आई। और जहां तक उनके शानदार फिल्मी सफर की बात है तो इस दौरान उन्हें मुतअद्दिद एजाजात से नवाजा गया, 5 बेहतरीन फिल्म फेयर अदाकारा के तौर पर उनको अवार्ड्स मिले और फिल्म फेयर बेहतरीन माविन अदाकारा का अवार्ड भी मिला और 1974 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और आज तक भारतीय सिनेमा के अजीम तरीन अदाकाराओं में शुमार होने का एजाज हासिल है नूतन को। दिल ही तो है फिल्म राज कपूर साहब के साथ कई फिल्में नूतन ने की और सभी फिल्में बेहद कामयाब रही, उन्हीं में से ये फिल्म थी जिसका नगमा हम आपको अब सुनवा रहे हैं।

जमीन आकाशवाणी की उर्दू सर्विस याद कर रही है अदाकारा नूतन को। आज है उनका यौम पैदाइश। नूतन ने एक ऐसे वक्त में कामयाबी हासिल की जब फिल्मी दुनिया में खवातीन के लिए मौके महदूद हुआ करते थे। यह कहिए कि वो एक खूबसूरती के सिंबल के तौर पर ही इस्तेमाल की जाती थी फिल्मों में, सिर्फ उनकी खूबसूरती और उनके लिबास वगैरह को ही दिखाया जाता था। लेकिन नूतन ने साबित किया कि एक अदाकारा का सिर्फ खूबसूरत होना ही काफी नहीं, बल्कि अगर उसमें सलाहियत है और अगर वो मेहनत करती है तो भी वो मेहनत और सलाहियत के बल पर कामयाब हो सकती है। कामयाब होने के लिए सिर्फ खूबसूरत होना ही काफी नहीं है। और फिर ये जो ट्रेंड चला तो नूतन के बाद जो आने वाली कई मशहूर अदाकारा हैं उनकी अदाकारी से मुतासिर हुई और उन्होंने भी उसी तरह की अदाकारी कई फिल्मों में दी। और वो फिल्में भी वुमेन ओरिएंटेड कही जा सकती हैं, जैसे रेखा की बात कीजिए और शबाना आजमी की हम बात कर सकते हैं, यहां पर दीप्ति नवल की बात कर सकते हैं, जिन्होंने कुछ अच्छी फिल्में दी समाज को और लोगों ने माना कि सिर्फ खूबसूरत होना ही काफी नहीं बल्कि अदाकारी होना भी किसी फिल्म की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी होता है। नूतन को मौसीकी से काफी लगाव था। उन्होंने फिल्मों में चंद गीत भी अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवाए और उनकी आवाज में मिठास भी थी, सादगी भी थी और बिल्कुल उन्हीं की तरह, उनकी शख्सियत की तरह दिलकश महसूस होती है उनकी आवाज जब कभी हम सुनते हैं। हमने भी एक नगमा मुंतखब किया नूतन की आवाज में आपको सुनवाने के लिए। ये फिल्म है छबीली।

0: रमन
1: बेटर चाय लाओ भाई।
2: रमन क्या बात है, इस तरह क्यों मुंह लटकाए बैठे हो?
1: कुछ नहीं यार, बस यूं ही।
2: यूं ही कैसे? अरे कुछ ना कुछ तो है, क्या बात है बताओ ना।
1: यार मेरे घर वालों ने आजीज कर रखा है, समझ में नहीं आता कि क्या करूं।
2: क्या कहते?
1: मेरी कुछ सुनते ही नहीं, बस अपनी आगे जाते।
2: क्या
1: बस पीछे पड़े हुए हैं कि आईएएस करो।
2: अरे तो करते क्यों नहीं?
1: कैसे करूं, अपना दिमाग ही नहीं लगता इसमें, अपना झुकाव तो बिजनेस

0: की तरफ था। हाई स्कूल के बाद आर्ट्स लेना चाहा तो पिताजी ने साइंस दिलवा दी। किसी तरह एफएससी पास किया तो पिताजी ने भैया के साथ यहाँ दिल्ली भेज दिया कि अच्छा माहौल है, यहाँ से बीएससी करो और साथ साथ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने की कोशिश करो। इंजीनियरिंग के मुकाबले में नहीं आ सका तो ग्रेजुएशन के बाद अब भाई साहब कह रहे हैं कि सब आईएएस में धड़ाधड़ आ रहे हैं, तुम भी आईएएस करो। फिर पीछे पड़े हुए सब। मेरा अपना कोई फैसला ही नहीं, कोई राय ही नहीं। जैसे
1: मगर तुम आईएएस की तैयारी तो कर रहे हो ना?
0: हाँ, मजबूरी है, फॉर्म भर दिया है, मगर
1: आने की उम्मीद नहीं है।
0: क्या खाक आऊंगा, पढ़ाई नहीं होती मुझसे।
1: अच्छा, तुम्हारे यहाँ खेती बाड़ी तो होती है ना?
0: खेती बाड़ी है और बिजनेस भी है, मगर करने ही नहीं दिया पिताजी ने मुझे।
1: अजब लोग हैं, इसमें जबरदस्ती थोड़ी करनी चाहिए। लड़के का जिस चीज में दिल लगे, वालिदैन को उसे उसी लाइन में जाने देना चाहिए।
0: हमारे मोहल्ले में एक नामवर सिंह रहते हैं, उनके दो लड़के आईएएस में आ गए हैं, एक इंजीनियर हो गया है। बस यही देखकर मेरे पिताजी के दिमाग में ये बात घुस गई है कि वो लोग आईएएस हो सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, तो मेरा बेटा क्यों नहीं बन सकता। ये नहीं देखा कि मेरा रुझान किस तरफ है। अब तक बिजनेस में होता तो न जाने कहां से कहां पहुंच जाता।
1: तो अब क्या इरादा है?
0: अब कोशिश कर रहा हूं आईएएस में आने की, देखो क्या होता है।
1: पेपर कब से?
0: बस अगले महीने ही शुरू हो रहे हैं, अभी तो प्रिलिमिनरी इम्तिहान होंगे, मेन तो बाद में होगा, फिर इंटरव्यू फेस करना होगा।
1: कोशिश करो, शायद कामयाबी मिल जाए। और अब घर वालों का दबाव है तो कर ही क्या सकते हो। अच्छा रमन, अब चलते हैं, फिर मिलेंगे।
0: अच्छा ठीक है,
1: बाय बाय, सी यू।
0: ओके बाय बाय।
2: रमन।
0: ओह अनीता,
2: क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो।
0: नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस यूं ही।
2: तैयारी कैसी चल रही है?
0: आईएएस की तैयारी?
2: हाँ, अब तो इम्तिहान भी करीब है।
0: हाँ, वक्त तो बहुत कम रह गया अब।
2: तैयारी करो फिर जमकर, इधर उधर ज्यादा मत घूमो, इस बार तुम्हारा कामयाब होना जरूरी है।
0: क्यों, जरूरी क्यों?
2: बिल्कुल जरूरी है, अब आखिर कब तक हम लोग इस तरह घूमते फिरते रहेंगे।
0: अच्छा शादी
2: और क्या, अब जल्दी से आईएएस कंप्लीट करो और सर्विस करो, फिर शादी की जाए।
0: देखो अब यही तो मैं सोच रहा हूँ अनीता, भगवान से प्रार्थना करो कि आ जाऊं मैं आईएएस में इस बार।
2: अरे आना तो है ही, यूं तो सोचो ही मत कि नहीं आ सकते।
0: अच्छा।

0: मुबारक हो यार रमेश, आईएएस की कामयाबी मुबारक हो।
1: थैंक यू अकबर भाई, थैंक यू।
0: अच्छा यार ये बताओ रमन का क्या हुआ?
2: रमन, उसका नंबर तो नहीं है पेपर में।
0: नंबर देखा है तुमने?
2: हाँ देखा है, नहीं आया वो।
0: बड़े अफसोस की बात है,
2: मेहनत तो की थी बेचारे ने।
0: जब तक कोई काम अपने मिजाज के मुताबिक ना हो आदमी को कामयाबी नहीं मिलती। ये तो शायद उसका आखिरी साल था।
2: हाँ लास्ट ईयर।
0: बेचारे के पास अब कोई चांस भी नहीं रहा। अच्छा बताओ रमेश, तुम पार्टी कब दे रहे हो?
2: बस एक दो दिन में घर पर शानदार पार्टी दूंगा।
0: सच?
2: हाँ हाँ जरूर।
0: अच्छा रमेश अब मैं चलता हूँ।
2: कहाँ? रमन के यहाँ जा रहे हो?
0: नहीं घर जाऊंगा, अब इस वक्त उसके पास क्या जाऊं, बाद में मिल लूंगा।

0: तू इस साल भी फेल हो गया
1: भैया? वो
0: शर्म आती है मुझे तुम पर और अपने आप पर भी। नहीं, कैसा दिमाग लेकर पैदा हुआ है तू, मेरी समझ में नहीं आता।
1: भैया मैं क्या करूं आखिर, मेहनत तो की थी मैंने।
0: कैसी मेहनत की थी तूने? आखिर और लड़कों ने कम्पीट किया कि नहीं? अरे रमेश आ गया, गफूर आ गया, अनिल भी आ गया, बस एक तू ही था फेल होने को।
1: भैया जो लोग आईएएस में आए हैं उनकी बैकग्राउंड भी तो देखी।

0: ये भी तो देखिए कि वो रहे किस माहौल में है, पढ़ा कहाँ है उन्होंने। जिन तीनों लड़कों का नाम आपने लिया वो बचपन से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं। जब बुनियाद ही मजबूत नहीं तो क्या करूं मैं?
1: जो काम आदमी नहीं करना चाहता वो उसके लिए इसी तरह के बहाने बनाता है।
0: नहीं भैया, ये बहाना नहीं है, मेरी मजबूरी है। आप समझते क्यों नहीं है? अब अगर हम छोटे शहर में पैदा हुए हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है, बोलिए ना। ऐसी बात नहीं कि हमारा दिमाग काम नहीं करता, बस अच्छी इंग्लिश नहीं जानने की वजह से हम मारे जाते हैं। सारी अच्छी किताबें तो अंग्रेजी में ही हैं।
1: ठीक है, जो करना है करो तुम, मैं नहीं जानता कुछ
0: भैया।

0: अनीता
1: अनीता क्या बात है, पुकारो मैं सुनी नहीं रही तुम।
2: नहीं, दरअसल मेरी क्लास है इसलिए जल्दी जल्दी जा रही हूँ। कहो क्या बात है।
1: तुम्हें मालूम है ना कि मैं फेल हो गया हूँ।
2: हाँ मालूम है, यही खुशखबरी सुनाने आए हो क्या।
1: मैं क्या करता अनीता, मुझसे तो जो हो सका मैंने किया, जितनी मेहनत कर सकता था की। तुम देखती नहीं थी, रात के 2-2 बजे तक मैं बैठा पढ़ता रहता था। अब नहीं आ सका तो मैं क्या करूं।
2: ठीक है, अब मैं क्या करूं। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी क्लास है, देर हो रही है।
1: अनीता, ये अनीता इतनी बेरुखी से क्यों पेश आ रही है, लग ही नहीं रहा कि वही लड़की है। क्या वो मेरे आईएएस में नहीं आने की वजह से, तो क्या वो मुझसे नहीं मेरे अंदर के उस आदमी से मोहब्बत करती थी जो आईएएस अफसर बनने वाला था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनीता वो तो बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन फिर उसने ऐसा क्यों किया, मुझको छोड़कर क्लास में चली जाए, ऐसे तो कभी नहीं करती थी वो। अनीता अनीता सुनो सुनो, मेरी बात सुनो अनीता। क्या बात है, तुम यक बया के इस तरह क्यों करने लगी। तुम्हें बहुत फर्क देख रहा हूँ मैं।
2: फर्क क्या बात है, अब सिर्फ तुमसे ही बात करना तो जरूरी नहीं है, और भी तो काम है मुझे।
1: अच्छा, बहुत काम वाली हो गई हो तुम। पहले तो नहीं रहता था कोई काम तुम्हें, सब छोड़ छाड़ तुम मेरे साथ घूमती रहती थी।
2: ठीक है, उस वक्त घूमती थी, अब वक्त नहीं है, नहीं घूमती।
1: यूं नहीं, ये कहो कि तुम्हारा दिल बदल गया है, मुझसे प्यार नहीं रहा अब तुम्हें। अब पता चला कि तुम मुझसे नहीं मेरे अंदर के उस आईएएस से मोहब्बत करती थी जो उभर कर ना आ सका, मेरी उस मेहनत से मोहब्बत करती थी जो रंग न ला सकी।
2: हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मेहनत से मोहब्बत करती थी, तुम्हारे अंदर के आईएएस से मोहब्बत करती थी। ये सही है, हर लड़की अपना मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहती है, कोई अपने आप को जानबूझकर अंधे कुएं में नहीं ढकेलता।
1: आज मैं तुम्हारे लिए कुआं हो गया हूँ, कल तक मुझसे उम्मीद थी तो सब कुछ मैं ही था। जाओ, चली जाओ यहाँ से, जाओ मैं कहता हूँ।

0: अरे रमन,
1: आइए सादिक साहब। आदाब से।
2: क्या बात है भाई, बड़े उदास नजर आ रहे हो।
1: जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
2: देखो रमन, तुम कहो या ना कहो, मैं सच समझता हूँ। तुम्हारी परेशानी क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे यहाँ आई, इसमें नहीं आए तो क्या हुआ? दुनिया में सिर्फ यही एक लाइन तो नहीं है ना, पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। और फिर पॉलिटिक्स से अच्छा जरिया क्या होगा? बात मानो, हमारे साथ आ जाओ, जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा।
1: क्या करना होगा मुझे?
2: कुछ नहीं, मेरे साथ रहो। भाई रमन, हम मुसलमानों की तरक्की के लिए एक फोरम बना रहे हैं, उसमें कोई पोस्ट दे देंगे।
1: इससे क्या होगा?
2: अरे तुम देखना तुम्हारे

0: अच्छा कि क्या होता है, पैसे ही पैसे बरसेंगे, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी।
1: मगर सादिक साहब, पैसे आएंगे कहां से?
0: देखो रमन, मैं तुम्हें बताता हूँ, मजहब के नाम पर हम पूरे मुल्क में पैसे इकट्ठा करेंगे, और सिर्फ मुल्क में ही नहीं, बाहर के ममालिक से भी चंदा लेंगे, और उससे पहले इश्तेआल अंगेज तकरीरें करके और अपने मजहब के नौजवानों को मजहब के नाम पर उकसा कर मुल्क में फिर के वाराना फसाद करवा देंगे।
1: जी,
0: जब फसाद छिड़ जाएगा और हमारी कौम के लोग मारे जाएंगे तो हमारी अहमियत बढ़ेगी, और लोग आसानी से हमें अपने मजहब का ठेकेदार समझकर पैसे देंगे, और यही नहीं, वो सब हमारे फॉलोअर्स बन जाएंगे, जिससे मेरी ताकत बढ़ेगी और मैं हुकूमत से बड़े ओहदे का मुतालबा कर सकूंगा। जो पैसे लोगों से इकट्ठा होंगे उनमें से कुछ से हथियार मंगा लेंगे, एक आध मस्जिद की मरम्मत करवा देंगे, और बाकिया सब हम लोगों का होगा, समझे?
1: जी अच्छी तरह समझ गया। बस समझिए, हम आज से आपके साथ हैं।
0: शाबाश।

0: आदावचा साधु साहब।
1: आओ आओ आओ रमन बैठो, यहाँ बैठो।
0: जी
1: ये क्या है साधु साहब? विस्की है?
0: लो।
1: नहीं नहीं मैं नहीं पीता।
0: नहीं पीते
1: जी?
0: क्या तुम भी पुराने लोगों की तरह बात करते हो?
1: अरे भाई नए दौर के आदमी हो, जमाने के साथ नहीं चलोगे तो तरक्की कैसे करोगे?
0: फिर ये तो आम चीज हो गई है, आप सभी पीते हैं इसे।
1: पीने दीजिए सबको, पर मैं नहीं पीता, माफ कीजिएगा सादिक साहब।
0: अरे अजब आदमी हो। अच्छा ले लो एक घूंट ले लो। हमारी खातिर इनकार नहीं करो।
1: नहीं
0: एक घूंट बाबा। ये हो रही ना बात।
1: अब देखना कितना मजा आएगा, जिंदगी कितनी हसीन मालूम होगी। वाकई खूब मजा आ रहा है। सादिक साहब मैं सोचता हूँ आप मुझ पर इतने मेहरबान कैसे हो गए, मैं तो बदले में आपको कुछ दे भी नहीं सकता।
0: यार रमन कोई जरूरी नहीं कि किसी की मदद किसी मफाद के तहत की जाए, दुनिया में एक लफ्ज मोहब्बत भी है। तुम मुझे अच्छे लगते हो इसीलिए मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया।
1: आपका एहसान है। अरे हाँ इस बार आपको पार्लियामेंट की सीट के लिए टिकट भी तो लेना है ना?
0: हाँ भाई इस बार तो जैसे भी हो टिकट तो लेना है मुझे। भाई रमन
1: जी
0: तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, काफी दौड़ धूप करनी होगी तुम्हें।
1: हाँ हाँ जरूर करूंगा, आप बताइए तो क्या करना है मुझे?
0: वही वही शहर में मजहब के नाम पर इंतजार फैला दो, मुसलमानों या हिंदुओं के किसी मजहबी जुलूस पर पथराव करवा दो, अपने आप ही झगड़ा शुरू हो जाएगा और जब काफी लोग मारे जा चुके होंगे तो मैं अपने मजहब के लोगों के हक में तकरीरें करूंगा और उनसे पैसे इकट्ठा करूंगा और इलेक्शन में उनसे वोट हासिल करूंगा या किसी ओहदे के लिए हुकूमत पर जोर दूंगा। और रमन जब मैं तरक्की करूंगा तो तुम भी करोगे। भाई मैं कार से चलूंगा तो तुम मोटरसाइकिल से जरूर चलोगे, ये मेरा वादा।
1: ठीक है सादिक साहब, अब मेरा काम शुरू होता है।

0: रमन
1: रमन कहाँ जा रहे हो यार? साजिद साहब के यहाँ?
2: हाँ वहीं जा रहा हूँ।
1: वो तो एमपी हो गए हैं ना?
2: हाँ एमपी हो गए हैं वो।
1: तुमने उनके लिए बड़ी मेहनत की, लोग हैरत करते हैं।
2: भगवान का शुक्र है कि मेहनत काम आई।
1: हाँ ये तो है।
2: अच्छा अकबर सादिक साहब से मिलकर आता हूँ, आओ तुम भी चलो ना।
1: नहीं नहीं तुम मिलाओ, हम फिर कभी चलेंगे।
2: अच्छा।

0: कहाँ जा रहे हैं आप?
1: मुझे एमपी साहब से मिलना है।
0: एमपी साहब से मिलना है, ठीक है। कहाँ से आए हैं, काम क्या है?
1: तुम जानते नहीं, हम उनके दोस्त हैं, रमन नाम है हमारा।
0: सभी यहाँ अपने को उनका दोस्त और रिश्तेदार ही बताते हैं। बैठिए, पहले हम उनसे पूछते हैं, तब जाना।
1: बड़ा है पिए कहीं का, जानता नहीं मैं कौन।
0: अभी उनको फुर्सत नहीं है, मिनिस्टर साहब के भाई आए हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कहा है आप बाद में आइएगा।
1: अच्छा, मुझको कहा बाद में आइएगा, इतने बड़े हो गए।
0: अरे अरे अरे भाई, अंदर मत जाना।
1: अरे अरे अरे, अरे कौन? ओह रमन, क्या बात है भाई, आओ। आप कह रहे हैं आओ, पीए को भेजा तो कलवा दिया, फुर्सत नहीं है।
2: ओहो, मैंने ये कब कहा?
1: और क्या कहा, कल तक मैं ही आपके लिए सब कुछ था, आज थोड़ा ओहदे पर पहुंच गए तो वक्त नहीं हमसे बात करने के लिए।
2: अरे भाई, ये बैठे हुए हैं ना, समझते क्यों नहीं?
1: ये क्या है, क्या किया है इन्होंने आपके लिए? दो दिन की जान पहचान में ये सब कुछ हो गए, क्योंकि ये मिनिस्टर के भाई हैं। अब मेरी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि आपको अब मेरी जरूरत नहीं।
2: अरे भाई, ये बात नहीं है।
1: मैं सब समझता हूँ सादिक साहब, लोग सच ही कहते थे, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब पता चला कि आपकी असलियत क्या है।
2: तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है क्या? तुम्हें मालूम है किससे बातें कर रही हो और किसके सामने कह रही हो?
1: हाँ जानता हूँ सादिक साहब, एमपी से बात कर रहा हूँ मैं। दुनिया की नजरों में होगी आपकी इज्जत, लेकिन आपकी असलियत क्या है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ।
2: क्या असलियत जानता है? क्या जानता है? बदतमीजी करता है मुझसे। चल निकल मेरे ऑफिस से, दूर हो जा यहाँ से।
0: क्या
2: जी, बाहर निकलो इसे।
0: चलिए चलिए।
1: अरे
0: भाई,
1: अरे कमीने, मुझे ऑफिस से निकल आ रहा है।
2: अरे देख लूंगा, समझ लूंगा, सबको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे याद रखना।

0: सुनो, शायद तुम्हें बस नहीं मिली है।
1: मैं इंडिया गेट
0: की तरफ जा रहा हूँ। अगर तुम्हें उस तरफ जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
2: जी वो
0: आ जाओ, अरे आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं है।
2: थैंक यू।
0: चलो ड्राइवर,

0: बड़े स्मार्ट हो, क्या करते हो?
1: फिलहाल तो बेकार हूं।
0: पहले क्या करते थे?
1: पढ़ रहा था।
0: तो क्या अभी कोई काम नहीं करते?
1: जी नहीं।
0: अरे भाई कुछ तो करते होगे, आखिर गुजर बसर कैसे होती है?
1: अकेले आदमी का गुजर बसर क्या, किसी तरह हो ही जाती है।
0: क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं है?
1: थे,
0: अब क्या हुए?
1: सब मर गए।
0: दुखी लगते हो, किसी ने सताया है क्या?
1: मौका मिलने पर कौन छोड़ता है साहब।
0: किसी नेता के चक्कर में पड़े थे?
1: कहीं आप भी उसी जात के तो नहीं?
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, हमारी कमाई खून पसीने की होती है।
1: क्या काम करते हैं?
0: अरे कुछ नहीं, बस इधर का माल उधर और उधर।

0: का माल इधर और दौलत का अंबार।
1: आपका धर्म क्या है?
2: पैसा।
1: मुझे अपने धर्म में शामिल कर सकते हैं?
0: जरूर, मगर सच्चाई और ईमानदारी की जरूरत होगी।
1: मंजूर है।
0: तो सुनो
1: जी,
0: उत्तर प्रदेश में एक जगह गाजीपुर है, वहां अफ्यून की फैक्ट्री है। वहां पर अफ्यून 800 रुपए किलो मिलती है और दिल्ली में उसके दुगने दाम मिलते हैं। बस तुम्हारा इतना काम होगा कि तुम गाजीपुर जाकर मेरे आदमी से मिलोगे और उससे सामान लेकर मुझ तक पहुंचा दोगे।
1: और अगर पकड़ा गया तो?
0: अरे अरे, इसमें कोई पकड़ा वकड़ा नहीं जाता, कोई बॉर्डर थोड़ी क्रॉस करना है। और फिर वो तो इस तरह पैक होगा कि किसी को शक भी नहीं होगा, और अगर पकड़े भी गए तो हम जो हैं हम छुड़ाएंगे। हम पर भरोसा करो।
1: मुझे क्या मिलेगा?
0: क्या चाहते हो?
1: फायदे का आधा?
0: नहीं
1: तो
0: 10%। 1,000 में 100, 1,00,000 में 10,000।
1: सौदा महंगा है।
0: देख लो, मंजूर है तो बोलो। वैसे हिंदुस्तान में बेकार लोगों की कमी नहीं है।
1: मंजूर है।
0: तो ये लो टिकट, कल सुबह की गाड़ी से तुम्हें जाना है।
1: वापसी में मुलाकात कहाँ होगी?
0: ये रहा मेरा पता
1: जी,
0: और ये उस आदमी का पता जिससे तुम्हें गाजीपुर में मिलना है। और सुनो, धोखे की सजा मौत है।
1: समझ गया।

0: हे, ये किसका सामान है? ये किसका है ये? अरे बोलता क्यों नहीं? ये तुम्हारा है?
1: नहीं, मेरा नहीं है।
0: तुम्हारा नहीं तो फिर ये किसका है?
1: मैं नहीं जानता।
2: लग रहा है सिपाही जी, इसी का सामान है। झूठ बोल दिया है ये। रात को अपनी सराहने लेकर सोया था। इसका नहीं होता तो सर के पास रखकर क्यों सोता? लगता है कोई ऐसी वैसी चीज है।
0: देखें क्या है। ओ अच्छा, अफ्यून। क्यों बे, झूठ बोलता है? अफ्यून का धंधा करता है, स्मगलिंग करता है। ए, ए, पकड़े से, जाने ना पाए, पकड़े से।
1: नहीं नहीं, मुझे मत पकड़ो, मैं बेकसूर हूँ। मैं स्मगलर नहीं हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं स्मगलर नहीं हूँ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो भगवान के लिए।
0: देखो, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये सामान तुम्हारा है, ये साबित हो चुका है, पर अब तुम्हें जेल जाना ही होगा।
1: मैं आपसे सच कहता हूँ सिपाही जी, मेरी बात मानो, मैं स्मगलर नहीं हूँ, मैं गलत फंस गया हूँ। मैं बीएससी पास हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ।
0: पढ़ा लिखा है तो मैं क्या करूँ? क्यों पढ़ा था? अब तू रंगे हाथों पकड़ा गया है, बचने का कोई सवाल ही नहीं, जेल तो जाना ही होगा।
2: अरे 200-400 रुपए से किनारे ले जाकर दो, छोड़ देगा।
1: मगर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मुश्किल से 25 रुपए पड़े होंगे जेब में।
2: तब तो कुछ नहीं किया जा सकता, जेल तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा काम करते हो, पैसा भी पास नहीं रखते।
0: hey, क्या बात हो रही है? चल उधर गाड़ी से चलने वाली गाड़ी, चल।
1: सुनिए तो। चल रमन बाबू,

अब बचाव की कोई सूरत नहीं। वो जो अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों की मर्जी से करते हैं, उनकी राहें इसी तरह गुनाह के अंधेरों में खो जाती हैं। इस गुनाह की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी रमन बाबू। अब तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना सीखो। अगर इन अंधेरों से बाहर आना है तो सही राहों का इंतखाब बहुत जरूरी है।

0: अभी आप सुन रहे थे जनाब वारिस अहमद खान का तहरीर करदा ड्रामा उन्वान था बेगुनाह। पेशकश प्रेम वोहरा की थी। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ बातचीत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। अमरीकी ऐवान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक करारदाद मंजूर की है। बांग्लादेश में खसरा फैलने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 601 तक पहुंच गई है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को 1-0 से हराकर भारत खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ बातचीत करेंगे। मोहतरमा रोड्रिग्ज भारत के 5 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। उनके हमराह मुख्तलिफ महकमों के वजीरों पर मुश्तमिल एक वफद भी भारत आया है। इसमें उम्र खारजा, मईशत, खजाने, साइंस और टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं। मोहतरमा रोड्रिग्ज इससे पहले 2015 में वजीर खारजा की हैसियत से और इसके बाद 2019, 2023, 2024 और 2025 में नायब सदर की हैसियत से भारत के दौरे पर आ चुकी हैं। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के तमाम तर पहलू जेर गौर आएंगे और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने के तौर तरीके तलाश किए जाएंगे, जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी, तजारत, सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकल व हमल और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे शामिल हैं। वेनेजुएला का वफद भारत की तकनीकी और सनअती सलाहियत से वाकिफियत हासिल करने और इश्तराक के मौके तलाश करने के लिए तवानाई, दवासाजी और मोटर गाड़ियों के शोबे से वाबस्ता कई मुकामात का दौरा भी करेगा। तवानाई और सरमायाकारी के शोबे में भारत वेनेजुएला का एक अहम साझेदार रहा है। भारत के सरकारी मिल्कियत के इदारों ने तवानाई के शोबे में वेनेजुएला में काफी सरमायाकारी की है और वो अपनी मौजूदगी बढ़ाने की खातिर मुख्तलिफ मौके तलाश करने के ख्वाहिशमंद हैं। उम्मीद है कि वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर के दौरे से बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और मुख्तलिफ शोबों में राबतों को तकवीत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लियामानी हलका और दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक वाराणसी एक बार फिर तारीखी बैन-उल-अक़वामी तकरीब का गवाह बनने जा रहा है। G20 मीटिंगों की कामयाब मेजबानी के बाद वाराणसी अब आज और कल ब्रिक्स सकाफती ग्रुप की दूसरी मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस मीटिंग में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया समेत 11 मुल्कों के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे।

0: ब्रशरो का हिस्सा लेंगे। इसका एहतमाम वर्ल्ड योगासन के तहत किया गया है और योगासन भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। फुटबॉल में मेजबान भारत गोवा के मार्गो में सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर खवातीन के सेफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ बातचीत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। अमरीकी ऐवान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक करारदाद मंजूर की है। बांग्लादेश में खसरा फैलने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 601 तक पहुंच गई है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है और फुटबॉल में गोवा में भूटान को 1-0 से हराकर भारत खवातीन की सेफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

आशु भोसले और मुकेश की आवाजों में ये नगमा था तुम्हारे कसम फिल्म से। अब सुनिए जॉनी मेरा नाम फिल्म का नगमा, आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म है दिल तेरा दीवाना।

महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा भी आपने सुना, फिल्म थी प्यार किए जा। आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में है, फिल्म का नाम है उलझन।

0: यानी 5 जून को दिन में 11:30 पर आलमी यौमे माहौलियात पर आप सुनेंगे हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम। तो सुनना ना भूलिएगा कल 11:30 पर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के हवाले से उर्दू सर्विस की एक खुसूसी पेशकश। सिर्फ प्रोग्राम सुनना ही नहीं है, इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय भी आपको जाहिर करनी है। इस प्रोग्राम से मुतालिक आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम इंचार्ज के नाम ईमेल आईडी हमारा वही है जिस पर आप हमें तामील इरशाद के ईमेल्स भेजते हैं, उर्दू सर्विस ESE@gmail.com। फिलहाल वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है ए ओ ह्यूम, तहरीर है महमूद हाशमी की।
1: रंग नस्ल और कौम मजहब के इम्तियाज से बालातर होकर महज इंसानियत की बुनियादों पर जिन गैर मुल्की शख्सियात ने हिंदुस्तान की आजादी में बिलावास्ता या बिलवास्ता तौर पर नुमाया किरदार अदा किया है उनमें ए ओ ह्यूम का नाम भी शामिल है। ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी सियासी जमात की तश्कील की जिसने आगे चलकर जिद्दोजहद आजादी की उन तहरीकों में इत्तेहाद और तालमेल पैदा किया जो मुख्तलिफ मकामात और सतहों पर जारी थी लेकिन बाहमी रब्त न होने के सबब गैर मौसर साबित हो रही थी। मिस्टर ह्यूम के कायम करना जमात ने न सिर्फ बरतानवी साम्राज्य से टक्कर ली और मुल्क को आजादी दिलाई बल्कि आजादी के बाद भी हिंद की सियासी और इकतसादी जिंदगी में नुमाया काम किया। एलन ह्यूम की पैदाइश 1829 में हुई थी। उनके वालिद जोसेफ ह्यूम ईस्ट इंडिया कंपनी में मुतरजिम की खिदमात से सुबकदोशी के बाद बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन बन गए थे। पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की वकालत के सबब उनको नुमाया शोहरत हासिल रही। इस तरह ये भी कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के साथ दिलचस्पी और हमदर्दी उन्हें विरसे में मिली थी। तकमील तालीम के बाद एलन ह्यूम ने बरतानवी बहरिया में खिदमात अंजाम दी और बाद में टिब की तालीम भी हासिल की लेकिन कुदरत तो उनको किसी दूसरे बड़े काम के लिए मुंतखब कर चुकी थी इसलिए आखिर में उन्होंने हिंद में सिविल सर्विस को तरजीह दी। बंगाल सिविल सर्विस में शमूलियत के बाद 1849 में उनकी पहली पोस्टिंग इटावा में हुई। 1857 की पहली जंग आजादी के वक्त वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से इटावा में मुकिम थे। बाद में तरक्की पाकर कलेक्टर हो गए और 1867 तक इसी ओहदे पर काम करते रहे। एलन ह्यूम तबन उस दौर के दीगर अंग्रेज ओहदेदारों की तरह महज सख्त गिर हाकिम नहीं थे बल्कि अपने इलाके के अवाम की फलाह बहबूद में उन्होंने गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया, मुफ्त तालीम का सिलसिला शुरू कराया और इखराजात के लिए अपने इलाके के जमींदारों को रजाकाराना तौर पर टैक्स की अदायगी के लिए रजामंद किया। तहसील की सतह के 7 और देहात की सतह के 250 मदारिस कायम किए। इटावा कस्बे में एक हाई स्कूल भी बनवाया। ह्यूम का ये तालीमी प्रोग्राम उनके आला अफसरान को पसंद नहीं आया ताहम उनकी नाराजगी के बावजूद इस तरह के अहकाम की चंदा परवाह किए बगैर उन्होंने तालीम के फरोख के प्रोग्रामों पर अमल दरामद जारी रखा। सन 1867 में ह्यूम को तरक्की देकर आगरा और अवध का कस्टम कमिश्नर बना दिया गया। उसके बाद 1871 में मरकजी हुकूमत में तिजारत और ज़राअत के सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए लेकिन जल्द ही अलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर नामजद किए गए। ये तैनाती उनकी तरजुली के मुतरादिफ थी और गालिबन इस वजह से हुई थी कि मिस्टर ह्यूम हुकूमत के गलत और नामनासिब फैसलों पर नुकतचीनी से नहीं चूकते थे। अफसरान ने बाला के इस तरह के रवैये से आजिज आकर मिस्टर ह्यूम ने मुलाजमत को खैरबाद कह दिया और अपनी तमाम तर कुव्वतों और हौसलों को हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी आवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। मुलाजमत से सुबकदोशी के कुछ अरसे बाद एलन ह्यूम ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील तलबा को खत लिखकर ह्यूम की अखलाकी और सियासी पसमानदगी को दूर करने के लिए एक तंजीम कायम करने का मशवरा दिया। मिस्टर एलन ह्यूम की इस तजवीज का पढ़े लिखे हिंदुस्तानी तबके ने पुरजोश खैर मकदम किया जिसके नतीजे में इंडियन नेशनल यूनियन कायम हुई। इस तंजीम का अव्वलीन इजलास 27 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में WC बनर्जी की जेर सदारत हुआ जहां इस तंजीम का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया।

बाला सुब्रमण्यम और लता अजय की आवाजों में नगमा था हम आपके हैं कौन फिल्म से। अब सुनिए आयशा भोसले के साथ एसपी बाला सुब्रमण्यम को, फिल्म है अंधा कानून।

0: इस महोबे के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। अब से चंद ही लम्हों में आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असदुल्ला से आलमी खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेंजुवेला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। अमरीकी ऐवान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक करारदाद मंजूर की है। बांग्लादेश में खसरा फैलने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 601 तक पहुंच गई है। पहली आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। और फुटबॉल में गोवा ने भूटान को एक गोल से हराकर भारत खवातीन की SAFF चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेंजुवेला के कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ बातचीत कर रहे हैं। मोहतरमा रोड्रिगेज भारत के 5 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। उनके हमराह मुख्तलिफ महकमों के वजीरों पर मुश्तमिल एक वफद भी भारत आया है। इसमें उमूर खारजा, मईशत, खजाने, साइंस और टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं। मोहतरमा रोड्रिगेज इससे पहले 2015 में वजीर खारजा की हैसियत से और इसके बाद 2019, 2023, 2024 और 2025 में नायब सदर की हैसियत से भारत के दौरे पर आ चुकी हैं। इस बातचीत में भारत वेंजुवेला ताल्लुकात के तमाम तर पहलू जेर गौर आएंगे और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने के तौर तरीके तलाश किए जाएंगे, जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी, तिजारत, सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकलो हमल और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे शामिल हैं। वेंजुवेला का वक्त भारत की तकनीकी और सनअती सलाहियत से वाकफियत हासिल करने और इश्तराक के मौके तलाश करने के लिए तवानाई, दवासाजी और मोटर गाड़ियों के शोबे से वाबस्ता कई मकाम का दौरा भी करेगा। तवानाई और सरमायाकारी के शोबे में भारत वेंजुवेला के एक अहम साझेदार रहा है। भारत के सरकारी मिल्कियत के इदारों ने तवानाई के शोबे में वेंजुवेला में काफी सरमायाकारी की है और वो अपनी मौजूदगी बढ़ाने की खातिर मुख्तलिफ मौके तलाश करने के ख्वाहिशमंद हैं। उम्मीद है कि वेंजुवेला के कायम मकाम सदर के दौरे से बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और मुख्तलिफ शोबों में रावतों को तकवीत मिलेगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कानून साजों से कहा है कि अमरीका और भारत अपने उस तजारती समझौते को हतमी शक्ल देने से महज कुछ हफ्ते दूर हैं जिसका तवील अरसे से इंतजार था। खारजा उमूर से मुतालिक हाउस कमेटी के सवालों के जवाब देते हुए कल रात जनाब रूबियो ने बताया कि वाशिंगटन और नई दिल्ली समझौते को मुकम्मल करने के करीब हैं। जनाब रूबियो ने इस बात को कई बार उजागर किया कि भारत बहरुल काहिल खिते में भारत अहम स्ट्रेटेजिक शराकत दार है। उनका ये बयान दुनिया की दो सबसे बड़ी और सबसे कदीम जमहूरियत के दरमियान माशी ताल्लुकात की बढ़ती रफ्तार की जानिब इशारा करता है। जनाब रूबियो ने मजीद कहा कि उनके भारत दौरे के दौरान क्वाड के उनके हम मनसबों से भी तबादले ख्याल हुआ। क्वाड ग्रुप में भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अमरीकी ऐवान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक करारदाद मंजूर की है। सदर ट्रंप के जंग से मुतालिक इख्तियारात को रोकने की ऐवान की यह चौथी कोशिश है, जिसके बारे में नाकिदीन का कहना है कि इसे कांग्रेस की मंजूरी हासिल नहीं है। ऐवान के करारदाद को अब भी रिपब्लिकन अरकान के कंट्रोल वाली अमरीकी सीनेट से मंजूरी की जरूरत है। अमरीकी सीनेट में कामयाबी मिल भी जाती है तो भी मजकूरा कदम से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पूरी तरह रोके जाने का इम्कान नहीं है। सदर ट्रंप मजकूरा इकदाम को वीटो कर सकते हैं, जिसे रद्द करने के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत की जरूरत होगी। बांग्लादेश में खतरा फैलने से पैदा सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटे में खतरा से मज़ीद 7 बच्चों की मौत होने की इत्तला मिली है। इसी तरह खतरा के मुसद्दका और मुश्तबा केसों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 601 हो गई है। बांग्लादेश के सेहत खिदमात के डायरेक्टरेट जनरल ने यह जानकारी दी है। खतरा के मुश्तबा केसों में अमवात की मजमूई तादाद 511 हो गई है, जबकि मुसद्दका केसों में ये तादाद 90 है। सेहत खिदमात के डायरेक्टरेट जनरल के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान खतरा के 1210 नए केसों का पता चला है, जबकि लेबोरेटरी जांच से 55 नए इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज शाम गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रही है, जो खेलों के आलमी मंजरनामे पर एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल वसीले से इस बड़े प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर से योग के मद्दाह और एथलीट्स अहमदाबाद में जमा हुए हैं। इस 5 रोजा चैंपियनशिप में अमेरिका समेत 60 मुल्कों के 400 से ज्यादा शुरका हिस्सा लेंगे। इसका एहतमाम वर्ल्ड योग आसन के तहत किया गया है और योग आसन भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। संगमील की हैसियत रखने वाले इस प्रोग्राम का मकसद आलमी सतह पर योग और तंदुरुस्ती के बारे में बेदारी फैलाने के साथ साथ आलमी सतह पर खेल मुकाबलों में योग को शामिल करने की राह हमवार करना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने लाऊ पीडीआर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंगसावन के साथ कल नई दिल्ली में 10वीं भारत लाऊ पीडीआर मुश्तरका कमीशन मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। मीटिंग के दौरान फरीकैन ने तिजारत और सरमायाकारी, सेहत तवानाई, डिजिटल कनेक्टिविटी, तरक्याती शराकतदारी, सलाहियत साजी और सकाफत समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादले ख्याल किया। इसके अलावा दोनों फरीकों ने खित्ते में भारत आसियान तआवुन और पेशरफ्त को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की। अपनी इफ्तिताही तकरीर में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और लाऊ पीडीआर के दरमियान करीबी सकाफती ताल्लुकात हैं, जो बुद्धिज्म और रामायण के मुश्तरका विरसे में नजर आते हैं। जनाब जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं, जो गहरे सकाफती और आवाम से आवाम राबतों पर मबनी है। दूसरी जानिब लाऊ पीडीआर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने कहा कि ये मसरूफियत दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुक की अक्कासी करती है और मौजूदा इलाकाई और आलमी माशी गैर यकीनी और चैलेंजों के बावजूद दोनों मुल्कों के मुश्तरका अजाइम की यकीन दहानी कराती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पार्लियामानी हल्का और दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक वाराणसी एक बार फिर तारीखी बैन अक्वामी तकरीब का गवाह बनने जा रहा है। G20 मीटिंगों की कामयाब मेजबानी के बाद वाराणसी अब आज और कल ब्रिक्स सकाफती ग्रुप की दूसरी मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस मीटिंग में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथोपिया और इंडोनेशिया समेत 11 मुल्कों के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग सीनियर सिफारतकारों, पॉलिसी साजों और सकाफती माहिरीन को यकजा करेगी। G20 मीटिंग के दौरान काशी के आलमी शोहरत याफ्ता GI टैग वाली मसनूआत की खसूसी नुमाइश मुनाकिद की जाएगी। नुमाइश के दौरान 6 कारीगर 6 मुनफरिद मसनूआत पेश करेंगे, जो वाराणसी की गुनागुन दस्तकारी रिवायात की अक्कासी करती है। ये मसनूआत काशी के सदियों पुराने फन, कारीगरी और सकाफती विरासत का जीता जागता सबूत है। नुमाइश के जरिए गैर मुल्की मंदूबीन ने न सिर्फ इन मसनूआत की इंफरादियत से वाकिफ होंगे, बल्कि मकामी फनकारों और कारीगरों को अपनी मसनूआत आलमी बाजार तक पहुंचाने का भी मौका मिलेगा। श्रीलंका के अबुलवा बाथाटोड़ा में बाथागोड़ा के मकाम पर बुजुर्ग अफराद की देखभाल के एक मरकज में आग

0: मिनट में किया। इस तरह आलमी नंबर 69 भारतीय टीम पिछले 6 साल में पहली बार खवातीन की SAFF चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पाया जाएगा। अमरीकी ऐवान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ऐवान में मजीद फौजी ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक करारदाद मंजूर की है। और बांग्लादेश में खतरा फैलने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 601 तक पहुंच गई है। इसी के साथ आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: रेडियो वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज से मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने को है। हमारी पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात में दिन में 3 बजे दीगर प्रोग्रामों के साथ साथ हम पेश करेंगे अंदाजे नजर प्रोग्राम के तहत एक मुबाहिसा जिसका मौजू है उर्दू शायरी का मुस्तकबिल, अंदेशे और उम्मीदें, तो सुनना ना भूलिएगा। फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत।

जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1970 में बनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम पुजारी, जिसका निर्माण, निर्देशन और लेखन नब केतन फिल्म्स के लिए देवानंद साहब ने किया था। बतौर निर्देशक ये देव साहब की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में देवानंद के साथ नजर आई थी वहीदा रहमान, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, जाहिदा मदनपुरी और अमरीश पुरी। फिल्म के गीत जो आप सुन रहे हैं, ये गीत लिखे थे कवि गोपाल दास नीरज ने और संगीत से सजाया था इन गीतों को एसडी बर्मन साहब ने। इस फिल्म के संगीत के शास्त्रीय हिंदी फिल्म संगीत के बीच एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। गीतों को आवाज दी थी किशोर कुमार साहब ने, लता दी ने और फिल्म में देवानंद ने लेफ्टिनेंट रामदेव बख्शी का किरदार निभाया था। वहीं सुमन मेहरा के किरदार में नजर आई थी वहीदा रहमान, शत्रुघ्न सिन्हा बने थे पाकिस्तानी सेनाधिकारी और जाहिदा रानी चांग के किरदार में दिखी थी। प्रेम चोपड़ा बिल्किस मोहम्मद उर्फ बिली बने थे और चांग के किरदार में थे मदनपुरी। अमरीश पुरी स्पेन के चर्च में गुर्गे के रूप में नजर आए थे। ये इनकी एक छोटी सी भूमिका थी लेकिन बड़ी दमदार भूमिका थी। तो ये थी आज की फिल्म 1970 की प्रेम पुजारी। आपके भी ढेर सारे संदेश पहुंच रहे हैं, बिल्कुल सही सही। सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत गीत।

एसके बर्मन साहब की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं। यूं तो फिल्म के सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए। गीत फूलों के रंग से जो कुछ देर में हम आपको सुनवाएंगे, किशोर दा ने इस गीत को गाया और संगीत दिया था एसडी बर्मन साहब ने। पहले इसे इस गीत को बंगाली गीत गोंडे चौंगे गीतों से इन्होंने इसमें यूज किया था। वही अगला गीत एक और जो अभी हम सुनवाने जा रहे हैं आपको, रंगीला रे तेरे रंग में, ये गाना लोकगीत और आधुनिक दोनों का मिश्रण था जिसे लता दी ने गाया था। वैसे आपको बता दें कि गाना रंगीला रे जो ये गाना है ये दिलीप साहब को भी बहुत पसंद था। प्रेम पुजारी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन एसडी बर्मन के संगीत ने लोगों के दिलों में अपनी जगह जरूर बनाई थी। या हम यूं कह सकते हैं कि उनके संगीत ने शानदार स्कोर बनाया था। तो अगला गीत तो जो हम आपको सुना रहे हैं लता दी की आवाज में रंगीला रे, इस गीत के लिए लता दी को सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड मिला था, इस गीत को अवार्ड मिला था और वहीदा रहमान पर ये गीत पिक्चराइज किया गया था।

सुपरहिट सॉन्ग रंगीला रे। फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी और कुछ शूटिंग महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी के पास एक गांव है अस्त गांव, वहां पे की गई थी। इस फिल्म का जो प्रीमियर था वो मुंबई के शालीमार सिनेमा में किया गया था, जहां फिल्म जगत के कई सितारे मौजूद थे। फिल्म प्रेम पुजारी, जिसकी कहानी 60 के दशक की है जब भारत चीन युद्ध की कगार पर था, देवानंद ने रामदेव की भूमिका निभाई थी, जो एक शांतिवादी सैनिक होता है जिसे कोर्ट मार्शल के बाद भागने पर मजबूर होना पड़ता है और भागते समय उसकी मुलाकात होती है रानी यानी कि जाहिदा से, जो चीन की जासूस है। रामदेव अनजाने में उसकी मदद करता है क्योंकि तब उसे रानी की असलियत पता नहीं होती और अनजाने में ही वो जासूसी के खतरनाक खेल में फंस जाता है। कहानी कई मोड़ों से गुजरती है और अंत भी हर फिल्म की तरह सुखद होता है। युद्ध के बाद रामदेव सुमन यानी कि वाहिदा से शादी कर लेता है और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। देखा जाए तो इस तरह से ये फिल्म आपको कोई युद्ध विरोधी से युद्ध समर्थक की ओर ले जाती है, जहां आपको न केवल नायक से सहानुभूति होती है बल्कि दूसरा जो पक्ष है खलनायक वो भी।

आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं। वक्त है कि उन संदेशों को हम शामिल कर लेते हैं। गीरन गांव गुजरात से अजीत भापसा, प्रमिला, परवीन सुल्ताना और तवस्सुम जी हमारे साथ हैं और उन्होंने हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी इस फिल्म से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला संदेश हमारे पास पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पुनाराम कृष्णा जी का आया हुआ है। कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है। ये संदेश पहुंचा है हमारे पास ये प्रतीक्षा प्रतीक सुजाता जी हमें भेज रहे, लेकिन जगह का नाम इन्होंने नहीं लिखा है। सोन सिंह गिल, दलजीत, राजदीप गुरनूल, गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से हमारे साथ जुड़े हैं। दीप शंकर तामोरी, अजय देव, तुषार, डॉली बेबी, पूजा कवि, रेडियो श्रोता संगठन जी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से है। सुधाकर राजे, प्रशांत, संचित, प्रथमेश प्रणाली जी ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से हमारे साथ हैं। फालसिका पंजाब से भूषण खेरा, विष्णु विशाल और गीता जी हमारे साथ हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमल अनेजा जी हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन मुखी, नीता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहारनपुर से सैयद मसरून, शाइना हसन, नाजिया जी हमारे साथ हैं। डीवी राणा, नेहरू विहार, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल जी हमारे साथ हैं। और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रतनमाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे संदेश हैं। बटनखेड़ा से पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती जी हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी जी जुड़े हुए हैं। अनारकली बाजार जगराओ से सुनील पाठक, कमल गायवा, मनोत्ता जी हमारे साथ है। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा जी हैं। और भी संदेश हैं, उनको हम जरूर शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और खूबसूरत संगीत सुनवाते हैं।

0: हसी हर हसी का नाम चंद्रोदी यारो नीलम करो तुझे।
1: से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, संदीप नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे और दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताज मोहम्मद, गुलाब सागर, महराज जी, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से हमें सुन रहे हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, छिंदा, जसवी, जस्सी, सीता और गीता जी हमारे साथ हैं। संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर जी के साथ हमारे साथ ये जुड़े हैं पिंगावाला चौक जालंधर से। ये संदेश मलियाना सरदना मेरठ से अनिल जैन, संयम और मुस्कान का आया है। दुर्ग से संजय साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुकेश भट्टी जी हमारे साथ कहां से हैं ये जगह हमें दिखाई नहीं दे रही है। और ये संदेश पहुंचा है राजू मिगलानी जी का, बबीता सुभाष, योगी डब्बू जी के साथ दुर्गा कॉलोनी हांसी से ये जुड़े हुए हैं। सोनसिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरमूल जी, लोहगढ़, ठाकुरवाला से हमारे साथ है। दलवेश्वर नगर, नरवेल से पी एस नवानकर, निर्मला विशाल जी, मलकापुर से सोयाम, सोपान नारायण इंगले जी है, भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र जी, कपिल पूजा परिहार जी है, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया जी है और दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र जी जुड़े हुए हैं। पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप जी के साथ, जगमोहन प्रजापति के साथ में और ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगर, परवीन श्रीनिवास, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी और विवेक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में और ये संदेश हमारे पास संदीप मक्कर जी का एक बार फिर से पहुंच चुका है। और कुछ संदेश हैं जो रिपीट हो रहे हैं और रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित जी हैं, जॉन डिकेस्टो, रोजी पर्ल, जगनपुरी, सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी साथियों का हम बहुत दिल से आभार करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। दो तीन संदेश और हैं, चिरमिरी कुलारसी, कालडी से निर्वाण सिंह, अनुभव, ऋषभ राम सहोदर जी, भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र जी, शीता जी, पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से निर्मोहन, उषा मोहन, चलू नायक, मधु नायक जी।

की फिल्म 1970 की खूबसूरत फिल्म प्रेम पुजारी। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा और हमेशा की तरह हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा तो वक्त निकालिए और देख डालिए इस फिल्म को। बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म है, गाने सुपरहिट जो अभी आप सुन ही रहे हैं, लेकिन वक्त कह रहा है कि मुझे आपसे अनुमति लेनी है। कोई बात नहीं, कल यानी कि शुक्रवार को एक नई फिल्म के

सुन रहे थे प्रोग्राम एक FM से आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।

पर्यटन राजनाथ खट्टा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यकर राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज के मिलन आज नई दिल्ली च गलबात जारी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग च उत्तर पूर्वी काउंसल के 73वें फोरम सैशन की प्रधानगी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस के महायोगी गठजोड़ ने 18 जून में होने वाली विधान परिषद चुनाव के 17 उम्मीदवार नामों का किया ऐलान। पहली विश्व योगासन के चैंपियनशिप अफगानी जिता के अहमदाबाद से शुरू होगी। भारत औरतों की सैफ फुटबाल चैंपियनशिप के प्रधान ने एक सफर बना के फाइनल पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज आज नई दिल्ली च गलबात कर रहे हैं। इस गलबात में भारत वेनेजुएला संबंधों के सारे पहलुओं पर चर्चा होगी। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल, सेहत संभाल, आवाजाही और नवीनयोग ऊर्जा वर्गे क्षेत्र में सहयोग के नए रस्ते लगे जाएंगे। श्रीमती रॉड्रिगेज कल भारत के पांचवें दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने विदेश मामला, आर्थिकता, वित्त विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आवाजाही मंत्रियों का एक वफद भी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का वफद ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल और ऑटो सेक्टर से संबंधित कई थानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और उद्योगिक समर्थाओं का मूल्यांकन करना और सहयोग के मौकों की पड़ताल करना है। भारत ऊर्जा के निवेश क्षेत्र वेनेजुएला एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के जनता क्षेत्र के उद्यमों ने ऊर्जा क्षेत्र वेनेजुएला च महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। इस दौरे में दोनों संबंधों को होर मजबूत करने दोनों मुल्कों दरमियान वख-वख क्षेत्रों च सहयोग में मजबूत करने की भी उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने आज सवेरे नई दिल्ली वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से मुलाकात की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत वेनेजुएला संबंधों प्रति उन्होंने लंबे समय से चली आ रही वचनबद्धता का सम्मान करता है। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनकी मुलाकात दोनों मुल्कों दरमियान सहयोग में होर मजबूत करेगी। राष्ट्रपति कैप्टन मिलू ने कहा कि भारत और लाओस दरमियान डूंगे सभ्यता भरे संबंध ने जो बुद्ध धर्म और रामायण की सांझी विरासत झलकते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल दोवें मुल्क कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जो दोवे संबंधों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कल राष्ट्रपति भवन विखे लाओस के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री थॉन सावन फोमिहाने का स्वागत करदा राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्तूबर 2024 आसियान सम्मेलन च शामिल होने वास्ते लाओस का दौरा किया। इस दौरान कई समझौतों के दस्तखत किए गए जिस नाल दोनों मुल्कों दरमियान सहयोग में नवा उत्साह मिला। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत लाओस दरमियान दुवल्ले व्यापार च वाधा हुआ पर व्यापार के निवेश की होर तरक्की की काफी संभावनाएं। उन्होंने कहा कि भारत सूचना और संचार टेक्नोलॉजी, सेहत दवा, खेतीबाड़ी, सिंचाई, निर्माण, नवीनयोगी ऊर्जा और बिजली समेत प्राप्त क्षेत्र लाओस में सहयोग बढ़ाने की उम्मीद करता है। राष्ट्रपति ने इस गल से संतुष्टि जाहिर की थी कि दोनों देशों दरमियान विकास भागीदारी होर भी मजबूत हो गई है। दोनों नेता इस गल से सहमत हुए कि दोनों मुल्कों दरमियान निजला सहयोग बहुत फायदेमंद रहेगा। उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी का 73वां पूर्ण सैशन मेघालय के शिलांग चालू है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस सैशन की प्रधानगी कर रहे हैं। मीटिंग में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास बारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर, राष्ट्रीय मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास बारे केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के उत्तर पूर्व विकास मंत्रालय के सचिव संजय माथुर थे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड सिक्किम के राज्यपाल के मुख्यमंत्री होर कई प्रतिनिधियों के नाल इस मीटिंग हिस्सा ले रहे हैं। मीटिंग में उत्तर पूर्वी क्षेत्र च वख-वख विकास मुद्दों

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हेठ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के सबका प्रयास के सबका आधारित रोहित होते भारत ने पिछले 12 साल से बेमिसाल तब्दीली देखी है। आकाशवाणी खबरों पिछले 12 साल व्यापार क्षेत्रों की सरकार के सालों तो उसके विशेष प्रदेश पेश कर रहे हैं। आज जब भी कारोबार करने में आसानी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र के सरकार के उपलब्धों बारे चर्चा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।

0: Tudara na Hindistan da Prusa hobiye, hati parit dünya vich ik mukabli bazı parit kundur vadun mazbut huye. 2016 vich şuru kiti gayi Startup India Scheme, kada, udamta, ati nidish agwai vale vikas nu utsahit kar rahi hai. Sarkar de pralaya sadka desh vich startup ki ginti 2016 vich kareeb 500 to vadh ke is saal march tak 2,23,000 to vadh ho gayi hai. Iste naal hi June 2021 ch aamdan kar vibhag ne nava e-filing portal shuru kita tan jo टैक्स दातावां नूं वधेरे सहूलत अते बेहतर ऑनलाइन सेवावां मिल सकन। इस तों इलावा 2017 विच जीएसटी लागू कीता गया, जिस नाल वख-वख टैक्स प्रणालियां दी थां इक साधारण टैक्स प्रणाली लागू कीती गई, जिस नाल कारोबार करना आसान हो गया। इस तों इलावा सरकारी खरीद प्रक्रिया नूं डिजिटल, सरल अते सारिआं लई पहुंचयोग बनाउण लई 2016 विच सरकारी ई मार्केट प्लेस जन दी शुरुआत कीती गई, जन ते हुण कुल कारोबार 18 लाख करोड़ रुपए तों वध हो गया। सूखम, छोटे अते दरमियानी उद्यमा एमएसएमईस की रजिस्ट्रेशन में सरल बनाने लिए केंद्र सरकार ने उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत की थी। इस पोर्टल के अक्टूबर 2020 में रजिस्ट्रेशन की गिनती 10,000 थी, जो हुण वध के 8,31,000 तो वध हो गई है। भारत में कारोबार लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन नाल व्यापार और निवेश को उत्साह मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जलंधर तो आकाशवाणी खबरें लिए मैं काजल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के दमण का दौरा करेंगे। एक उपराध सूरत सड़क बिजली रेडियो क्षेत्र 18,800 करोड़ से अधिक लागत वाले कई विकास प्रोजेक्टों का नींव पत्थर भी रखेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात से कार्य कई प्रमुख पहलकदमों का उद्घाटन भी करेंगे। कल शाम में प्रधानमंत्री मोदी दमण का दौरा करेंगे, तो करीब 2,970 करोड़ रूपये के विकास प्रोजेक्टों का नींव पत्थर रखेंगे। ये प्रोजेक्ट सेहत संभाल, सिविल हवाबाजी, स्वास्थ्य खाता, बुनियादी ढांचा, संपर्क की जनतक भलाई सहित वक्त क्षेत्रों में दर्शाने। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस के महायुति गठजोड़ ने 18 जून में होने वाली विधान परिषद चुनाव वास्ते सारा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सूबा प्रधान रविंदर चौहान ने कल मुंबई पत्रकारों से गलबात करते हुए नामों का ऐलान किया। श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री उत्तम सिंह और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुनेत्रा पवार दरमियान विचार वटांदरे के बाद सीट वंड के बंधन अंतिम रूप दिता है। बिहार में मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अग लगन कारण 3 लोगों की मौत हो गई, कई होर जख्मी हुए। यह घटना बीती रात बंपुरा थाना इलाके वापरी। कई मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है, तो उन्होंने इलाज के दूजे अस्पतालों में दाखिल करवाया गया। अग लगन का कारण शॉर्ट सर्किट दसा जा रहा है, घटना की जांच की जा रही है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री विजय गुप्ता ने आज मालवीय नगर अग लगन की घटना के जख्मियों को मिलने के लिए साफेद के नक्स अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने जख्मियों के उन्होंने परिवार के मामलों गलबात की, तो डॉक्टरों चल रहे इलाज का जायजा भी लिया। मृतकों के परिवारों ने 10-10 लाख रूपये की सरकारी मदद का ऐलान किया गया। गंभीर जख्मियों को 5-5 लाख रूपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री दफ्तर ने कहा कि जख्मियों के डॉक्टरी खर्चे अस्पताल अधिकारियों तालमेल करके किए जाएंगे। पहली विश्व योगासन के चैंपियनशिप आख्यान गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के राही इसके काम के शामिल होंगे। अमेरिका, जापान, नीदरलैंड, ओमान, मॉरिशस, युगांडा, जाम्बिया, श्रीलंका, नेपाल और कीनिया समेत 70 तो वह देशों के 500 तो वह एथलीट इस पंचना प्रोग्राम हिस्सा लेंगे। भारतीय औरतों ने सह फुटबॉल चैंपियनशिप में भूटान ने 1-0 हरा के फाइनल अपनी थान पक्की कर ली है। तो आखिर खत्म एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति डेल्सी बापू के सम्मान आज नई दिल्ली में गलबात जारी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी कौंसल के 73वें फोरम सेशन की प्रधानगी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस के महायुति गठजोड़ ने 18 जून में होने वाली विधान परिषद चुनाव

down in Ananda Elan Setup. 10 विश्व योगासन ट्रेड चैंपियनशिप अब हमें किताब के अहमदाबाद शुरू होगी। अधिकारित औरतान भी सह फुटबॉल चैंपियनशिप विश्व प्रधान ने एक सफर में हॉकी फाइनल विच पहुंचे। इसके नाल ही राष्ट्रीय खबरों का एक बुलेटिन खत्म होंगे। प्रदेश खबरों का अगला बुलेटिन तुम सुनोगे शाम 6 बजे।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं असदुल्ला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वेंजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज के दरमियान बातचीत में तवानाई की यकीनी फराहमी, तिजारत और सरमायाकारी एजेंडे में सरे फहरिस्त हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जेर सदारत शिलांग में शुमाल मशरकी कौंसिल का 73वां मुकम्मल इजलास जारी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मिजोरम म्यामा में सुपारी स्मगलिंग नेटवर्क के सिलसिले में 9 मकामात पर छापों की कार्रवाई अंजाम दी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स सर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में फौजी कार्रवाई को खत्म करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने करारदाद मंजूर की है। जुनूब मगरबी मानसून केरलम पहुंच गया है और आज शाम अहमदाबाद में पहली आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में वेंजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में तवानाई की यकीनी फराहमी, तिजारत और सरमायाकारी, अद्वियात, सेहत की देखभाल, नकल व हरकत और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों में भारत और वेंजुएला के दरमियान इश्तराक के मजीद इम्कान तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा डॉ ए जयशंकर ने मोहतरमा रोड्रिगेज से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और वेंजुएला के दरमियान ताल्लुकात के सिलसिले में उनके देरीना अज़्म को एहतराम की निगाह से देखता है। उनके हमराह खारजी उमूर, इक्तिसादी मालियात, साइंस और टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन के वज़रा का एक वफ़द भी है। इम्कान है कि उनके इस दौरे से मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान राबते और बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। वो सूरत में सड़क, बिजली और सनअती शोबे से मुतालिक 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें वक्फ करेंगे। जहां मोदी सेहत की देखभाल की जदीद सहूलियात फराहम करने की खातिर सूरत में 200 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल का इफ्तिताह भी करेंगे, वज़ीर आज़म हुकूमत गुजरात के मुख्तलिफ अहम इकदाम का भी आगाज करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और अवामी जमहूरिया लाओ के दरमियान करीबी तहजीबी रवाबित हैं जिनकी अक्कासी बौद्ध मत और रामायण की मुश्तरका विरासत से होती है। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल दोनों ममालिक सफारती ताल्लुकात के कयाम के 70 साल मुकम्मल होने की तकरीब मना रहे हैं जो दो तरफा ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। कल राष्ट्रपति भवन में अवामी जमहूरिया लाओ के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावन फार्माभियाने का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि अक्टूबर 2024 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसियान से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए अवामी जमहूरिया लाओ का दौरा किया था। दौरे के दौरान कई समझौते हुए थे जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक में मजीद तेजी आई है। सदर जमहूरिया ने कहा कि अगरचे भारत और अवामी जमहूरिया लाओ के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में इजाफा हुआ है लेकिन तिजारत और सरमायाकारी में मजीद इजाफे की गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत इत्तिलाती और मुवासलाती टेक्नोलॉजी, सेहत दवाओं, ज़राअत, आपाशी मैन्युफैक्चरिंग, काबिल तजदीद तवानाई और बिजली समेत दीगर शोबों में अवामी जमहूरिया लाओ के साथ इश्तराक को वसअत देने की खुशी होगी। वज़ीर ख़ारजा डॉ ए जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में वेंजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत वेंजुएला के साथ

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजुमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए।

0: इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजनाएं शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
1: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस जीबीआरसी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित जीबीआरसी का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: आईसीयू 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है। शॉर्ट सर्किट पर कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी उसी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जायेगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे

0: रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून तीन दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मित एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम बिहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज मेहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूं। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत दिन है आज, और इस आज के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसका आज की तारीख से काफी गहरा नाता है। जी हाँ दोस्तों, आज तारीख है 4 जून। कैलेंडर का ये पन्ना जब भी आता है तो फिजाओं में एक अजीब सी शालीनता, एक अनोखी सादगी और अभिनय की वो खुशबू महकने लगती है जिसे दुनिया नूतन के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हिंदी सिनेमा की सबसे ग्रेसफुल, सबसे ज्यादा संवेदनशील और एक बेमिसाल अदाकारा नूतन जी का है जन्मदिन। तो आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम। नूतन जी एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखों में सन्नाटा भी बोलता था, सन्नाटे के भी शब्द होते थे, जिनकी मुस्कान एक मुकम्मल सुकून देती थी। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में, उनके गाए गुनगुनाए गीत आज भी हमारे दिल को छू जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस पूरे सफर को करते हैं हम नूतन जी के नाम और उनके इस जन्मदिन पर, बेहद खास मौके पर सफर की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जी दोस्तों, सचमुच वक्त बदल गया, सिनेमा भी बदल गया, लेकिन जो लकीर नूतन जी ने पर्दे पर खींची वो आज भी उतनी ही अटूट है। जी हाँ दोस्तों, कुछ कलाकार सिर्फ एक दौर के लिए नहीं बल्कि हर दौर के लिए आते हैं, और नूतन जी हिंदी सिनेमा का वो नूतन यानी कि नया है जो कि हमेशा ताजा रहता है। उनका नाम ही बिल्कुल इस चीज को सच करता है कि नूतन यानी कि नया, हमेशा ताजा रहने वाला। और नूतन जी भी हमेशा ऐसे ही हैं। उनको जितनी बार पढ़ा जाए अभिनय में वो हर बार कुछ नया दे जाती हैं। जी दोस्तों, कर रहे हैं आज हम नूतन जी के बारे में बातें, उनके जन्मदिन पर उनके बारे में। तो करते हैं एक और खूबसूरत सा गीत उन्हीं की फिल्म से आप सभी के नजर।

जी दोस्तों, 4 जून 1936 को जन्मी नूतन जी, जिन्हें अभिनय विरासत में मिला, उनकी माँ शोभना समर्थ अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री थी। लेकिन नूतन ने कभी भी अपनी पहचान के लिए शॉर्टकट को नहीं चुना, यानी कि उन्होंने कभी भी अपनी माँ के नाम का सहारा नहीं लिया और मात्र 14 साल की उम्र में फिल्म हमारी बेटी से उन्होंने शुरुआत की अपने फिल्मी सफर की। पतली सी सांवली सी लड़की, जिसे देखकर कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ये लड़की आगे चलकर क्या ही कमाल करेगी। लेकिन सिर्फ वो फिल्म उन्होंने की हमारी बेटी, और उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए चले गई स्विट्जरलैंड, क्योंकि उनकी माँ का कहना था कि ठीक है, आपको फिल्मों में काम करना है, करो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन अपनी जो शिक्षा है वो पूरी करनी है। इसीलिए वो गई स्विट्जरलैंड। जब वहां से लौटी तो जो उनकी पर्सनैलिटी थी

बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गई थी। उनकी पर्सनालिटी में एक गजब का आत्मविश्वास आ गया था, एक गजब का ठहराव था। और तब साल 1955 में आई निर्देशक अमी चक्रवर्ती की फिल्म सीमा, और इस फिल्म ने नूतन को रातों रात हिंदी सिनेमा के शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वही फिल्म जिससे वो उन ऊंचाइयों पे पहुंची जहां हर किसी ने उनको पहचाना। रातों रात वो पॉपुलर हो गई, और उन्होंने इस फिल्म में एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जो समाज और अपने अपने अपनों के सताए हुई थी, गुस्से और विद्रोह से भरी हुई थी, लेकिन अंदर से बेहद कोमल। और यही वो फिल्म थी जिस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मिला उनके करियर का सबसे पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। और यही वो फिल्म जिस फिल्म से दुनिया ने माना कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फिल्म में चीख करके चिल्ला करके ही अपनी प्रेजेंट को दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी है तो आप आराम से अपनी आंखों से अपने गुस्से को, अपनी आंखों से अपनी लाचारी को दिखा सकते हैं। और वो सब दिखाया नूतन ने फिल्म सीमा में। तो लीजिए सुनते हैं उसी फिल्म से यह खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, सीमा फिल्म की सफलता के बाद नूतन के करियर में एक ऐसा दौर आया जिसने साबित किया कि वो सिर्फ सीरियस रोल ही नहीं निभाती है बल्कि बेहद चुलबुले और रोमांटिक किरदार भी बहुत ही आसानी के साथ निभा सकती है। और वो उन्होंने प्रूव किया देवानंद साहब के साथ जब उनकी जोड़ी बनी, और वो जोड़ी ऐसी कमाल की

की पेइंग गेस्ट तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में उन दोनों की कॉमिक टाइमिंग मॉडर्न लुक ने जो भी दर्शक थे उन सबको अपना दीवाना बना लिया। जी हाँ दोस्तों, और वही कॉमिक टाइमिंग और वही हंसी मजाक से भरा हुआ ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, लीजिए सुनते हैं फिल्म पेइंग गेस्ट से।

क्या कहेगा ये मालूम नहीं, लेकिन हाँ हमारे श्रोता जरूर बहुत कुछ कह रहे हैं। और ये संदेश हमारे पास भेजा है गांव टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगन थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी ने। ये हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम के साथ गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा हमारे साथ जुड़े हैं पूजा परिहर के साथ। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से जुड़े हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, राहुल, गुरशबद सिंह, राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद मशरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम जी हमारे साथ जुड़े हैं काम कुमार हेड़ा सहारनपुर से, चिरमरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ और राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदरी लहरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अगला संदेश वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता जुड़े हैं। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित और केशु खुराना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राम नागर खोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू के साथ। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल, यशस्वी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, पा ढींगिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों और भी संदेश हमारे साथ आए हुए हैं, वो सब भी हम चलेंगे, लेकिन किस्सा बातें हमारी चल रही हैं नूतन जी के लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो नूतन है वो जहां उन्होंने पहली फिल्म में एकदम इतना शांत ठहराव वाला जो एक किरदार निभाया था, वहीं उसके बाद उन्होंने पेइंग गेस्ट जैसी बहुत से फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी भी की, लेकिन उनका जो ये सफर था ये तो सिर्फ शुरुआत थी, उनका जो गोल्डन पीरियड था वो आना अभी बाकी था। और वो लिखा महान निर्देशक विमल रॉय ने जब उन्होंने उनके साथ बनाई

59 में सुजाता और 1963 में फिल्म बंदिनी। बंदिनी फिल्म जिसे हम कहेंगे कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का वो एक ऐसा मास्टरपीस है जो कि आज तक दूसरा और नहीं बना है। और उसमें उन्होंने निभाया एक ऐसी लड़की का किरदार जिसका नाम था कल्याणी, जो एक हत्यारिन है, जेल में बंद है, प्यार धोखा मजबूरी और अपराध बोध से ताने बाने से जुड़कर बना नूतन का वो कैरेक्टर। उसकी मिसाल आज तक भी नहीं मिलती है, उसके बराबर का कोई और किरदार आज तक नहीं देखा गया। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उसी खूबसूरत फिल्म बंदनी से ये प्यारा सा गीत लता जी की आवाज में।

जी दोस्तों, नूतन जी के बारे में हम बात कर रहे हैं और जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे नूतन जी का अभिनय और भी ज्यादा निखरता गया। 1970 का दशक आते आते उन्होंने अनुराग और सौदागर जैसी फिल्मों में अपनी वो मैच्योरिटी दिखाई जो उनके अभिनय में साफ साफ दिखाई देती है। सौदागर में जहां अमिताभ बच्चन जैसे उभरते सितारे के साथ उन्होंने मंजू का किरदार निभाया और वो आज भी एक्टर्स के लिए एक मिसाल है। फिर वक्त आया सन 1980 के दशक का, जहां बहुत सी जो अभिनेत्रियां थी वो बढ़ती उम्र के साथ फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर गई। वहीं नूतन जी ने माँ और भाभी के किरदारों को एक ऐसी ऊंचाई और ऐसी गरिमा दी कि एक अलग ही पहचान दी उस किरदार को। मतलब पहले, उससे पहले माँ या भाभी का किरदार उतना अहम किरदार नहीं हुआ करता था, लेकिन नूतन जी के ये किरदार निभाने के बाद उन किरदारों में एक अलग जान आई। सन 1985 में फिल्म मेरी जंग में उन्होंने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो कि अपने पति को खोने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो देती है और जब अदालत में अपने बेटे को देखती है तो उसकी याददाश्त वापस आती है। वाकई में उस सीन को देखने के बाद में बहुत लोगों की आंखें नम हुई, बहुत लोग जो हैं वो उस चीज को अपने दिल से टच किया उन लोगों ने। इसके बाद नाम जैसी फिल्म की जिसमें एक मजबूर माँ का किरदार निभाया, वहीं सुभाष घई की फिल्म कर्मा में दिलीप साहब के साथ उन्होंने उनकी पत्नी राधा के रूप में स्क्रीन प्रेजेंस दी और वो इतनी दमदार थी कि दिलीप साहब के सामने भी वो कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आई। दोस्तों, ये नूतन जी के बारे में हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ संदेश और आए हैं जिन्हें हम शामिल कर लेते हैं। फारूक अली खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप मक्कर जुड़े हैं हमारे साथ, ज्योति मक्कर मन्नत के साथ कमल सहनी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से, नलेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल नवानकर जी के साथ। अगला संदेश हम तक पहुंचाई रमणी वर्मा दत्रेंगी भटापारा से। अपरकोट मोहल्ला चौकटी बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं मोहम्मद सईद अब्बासी जी और इनके साथ हैं निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता, सिमरन मुखी जी जुड़े हुए हैं शांतिनगर सोनीपत से। राहुल कुमार, रवि राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने काफी सारी जानकारी जो है हमें दी है और ये संदेश उन्होंने हम तक पहुंचाया कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से। इनके साथ हैं जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत जी। सेंडल नवापारा से मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता जी के साथ में। और ये जो अगला संदेश है उसको भेजने वाले हैं हम तक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक जी के साथ। पीटीआई संसद मांग से अनिल मोहन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदेशों के जरिए। दोस्तों, ये थे वो संदेश जिनके जरिए सब हमारे साथ तक जुड़े। किशोर कुमार की आवाज में लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

0: है
1: मेरी जूती से।
0: जूता पॉलिश करेगा।
2: जी दोस्तों, कलाकार आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उनकी कला वक्त के सीने पर वो ऐसे निशान छोड़ देती है जिसे सदियों का समंदर भी नहीं मिटा सकता। और नूतन जी भी ऐसा ही एक मुकम्मल और खूबसूरत अफसाना थी जो हमेशा जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस सफर में बस इतना ही, ये महफिल यहीं तक। अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, छोड़े जाती हूँ आप सभी को बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ लता जी और शब्बीर कुमार की आवाज में। बस इतना ही कहूंगी कि हमेशा यूं ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यादों के इस सफर में शामिल होने के लिए।

अभी आपने सुना कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 3 बजने को है। लीजिए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम अवंग।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1171 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। 3:05 हुए हैं, खबरें नशर होंगी।
1: खबरें सुनिए। नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स के दरमियान बातचीत में तवानाई की यकीनी फराहमी, तजारत और सरमायाकारी एजेंडे में सर फहरिस्त हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जेर सदारत शिलांग में शुमाल मशरकी कौंसिल का 73वां मुकम्मल इजलास जारी है। सरकर्दा फिल्म साज प्रहलाज मेवलानी का आज मुंबई में इंतकाल हो गया। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ईरान में सदर डोनाल्ड ट्रंप की फौजी कार्रवाई को खत्म करने की मुश्तरका कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने इस बारे में करारदाद मंजूर की है। दूर मगरबी मानसून केलम पहुंच गया है और पहली आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज शाम अहमदाबाद में शुरू हो रही है। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स के दरमियान बातचीत में तवानाई की यकीनी फराहमी, तजारत और सरमायाकारी, अदलियात, सेहत की देखभाल, नकल व हरकत और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों में भारत और वेनेजुएला के दरमियान इश्तराक के मजीद इम्कानात तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इससे पहले वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने मुहतरमा रोड्रिग्स से मुलाकात की। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और वेनेजुएला के दरमियान ताल्लुकात के सिलसिले में उनके दरीना अज़्म को एहतराम की निगाह से देखता है। उनके हमराह खारजी उमूर, सादी मालियात, साइंस टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन के वज़रा का एक वफ़द भी है। इम्कान है कि उनके इस दौरे से मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते और बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और अवामी जमहूरिया लाओ के दरमियान करीबी तहजीबी रवाबित हैं, जिनकी अक्कासी बौद्ध मत और रामायण के मुश्तरका विरासत से होती है। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल दोनों ममालिक सफारती ताल्लुकात के क्याम के 70 साल मुकम्मल होने की तकरीब मना रहे हैं, जो दो तरफा ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। कल राष्ट्रपति भवन में अवामी जमहूरी लाओ के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि अक्टूबर 2024 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसियान से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए अवामी जमहूरी लाओ का दौरा किया था। दौरे के दौरान कई समझौते हुए थे, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक में मजीद तेजी आई है। सदर जमहूरिया ने कहा कि अगरचे भारत और अवामी जमहूरिया लाओ के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात में इजाफा हुआ है, लेकिन तजारत और सरमायाकारी में मजीद इजाफे की काफी गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत को इतलाती और मवासलाती टेक्नोलॉजी, सेहत, दवाओं, ज़राअत, आबपाशी, मैन्युफैक्चरिंग, काबिल तजदीद तवानाई और बिजली समेत दीगर शोबों में अवामी जमहूरी लाओ के साथ इश्तराक को वसत देने में खुशी होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। वो सूरत में सड़क, बिजली और सनअती शोबे से मुतालिक 18,800 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें वक्फ करेंगे। जनाब मोदी सेहत की देखभाल की जदीद सहूलतें फराहम करने की खातिर सूरत में 200 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल का इफ्ताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म हुकूमत गुजरात के मुख्तलिफ अहम इकदाम का भी आगाज करेंगे। मेघालय के शिलांग में शुमाल मशरकी कौंसिल का 73वां मुकम्मल इजलास जारी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इसकी सदारत कर रहे हैं। शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की के मरकजी वजीर जितरद सिंधिया, मेघालय के गवर्नर सीएच विजयशंकर, रियासत के वजीर आला, डीओएनआर के वजीर ममलकत, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और डीओएनआर की वजारत में सेक्रेटरी संजय जाजू, मीटिंग में मौजूद हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के गवर्नर और वज़ीर-ए-आला भी दिगर सरकारदार शख्सियात

मंथन की अदाकारी से जी फिल्मों में एक फिल्म और थी खानदान, वो फिल्म भी उनकी लाजवाब अदाकारी की मिसाल थी। उसी का नगमा आप तमाम सामईन के लिए।

सामान्य सर में के साथ ही आज का नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत प्रोग्राम अंदाज़े नजर।

0: बहुत से नए लिखने वाले हैं, जैसे सफीर सिद्दीकी है, खालिद इबादी है, धमाल ओवैसी है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे ये उम्मीद होती है कि ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छी शायरी की है, बहुत अच्छे फन का मुजाहरा किया है, लेकिन नए लोगों में भी टैलेंट की कमी नहीं है। वो मौजू को नए तरीके से देख रहे हैं। अतुल नफीस का बड़ा चार मिश्र है, इश्क को देख रहे हैं, आशिक को देख रहे हैं, माशूक को देख रहे हैं, नए तरीके से देख रहे हैं, रवायती अंदाज से बिल्कुल हट करके देख रहे हैं। अतुल नफीस का शेर मुझे याद आ रहा, अतर तुमने इश्क किया कुछ तुम भी कहो क्या हाल हुआ, कोई नया एहसास मिला या सब जैसा अहवाल हुआ। बिल्कुल अलग सा है। या फिर गुलाम मोहम्मद कासिर का एक शेर है, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाका, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। या फिर खालिद इबादी बिल्कुल नौजवान शायर है और उनका शेर है, तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, खुदा मसरूफ रहता है, हमारे शहर में आखिर कयामत कौन करता है। तो इस तरह के बहुत से अशआर है जिससे अंदाजा होता है कि नहीं, नई नस्ल नए तरीके से सोच रही है, जदीद सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हाँ ये तो है कि वो हयात के एतबार से बहुत ज्यादा तजर्बे नहीं कर रही है, जो बिल्कुल नई नस्ल है, जैसे फिजा इब्न फैजी वगैरह थे या अमीर कजलबाश वगैरह थे, लंबी बहर छोटी बहर मुश्किल रदीफे। लेकिन ये है कि मौजूआती तनव, ख्याल को नए तरीके से पेश करने का तरीका और नई सोच, नए अल्फाज और नई दुनिया शेर में पेश कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत उम्मीद हूँ।
1: अमाल साहब ने जो कहा कि नए अल्फाज नई दुनिया, उम्मीद तो है, लेकिन जो खुशी साहब का सवाल था कि ये दौर नस्र का दौर है, जाहिर है हम खुद भी सोचते हैं कि हमारी तरबियत गजल से हुई, नज़्म से हुई, लेकिन महीनों गुजर जाते हैं, कोई शेरी मजमुआ देखिए, कोई शेर पढ़िए और पूरा फोकस अफसाने पे रहता है, नॉवल पे रहता है, बल्कि ये दौर अफसाने के बजाय नॉवल का दौर है। छोटे लिखे जा रहे हैं लेकिन नॉवल तवातुर के साथ आ रहे हैं, मगर उसके साथ ही हम देखते हैं कि नई बहुत अच्छे मौजूद जज्बात भी हैं, बयान भी है, और वो बयान जिसे हम जब हम ये कहते हैं कि समाजी सरोकार शायद गजल में उस तरह बयान नहीं होते, कि गजल तो इशारे की जबान है या इशारे की जबान है, दो मिसरों में समेटना है तो बयान नहीं होता उसमें, तो बयान की उस कमी को नज्म पूरा करती है। और नज्म में भी नसरी नज्म जिस तरह एक गुफ्तगु या खुद कलामी के अंदाज में कही जाती है, वो मुशायरों में आज भी नहीं पढ़ी जाती, लेकिन मशहूर है, आज भी अपीलिंग है। तेजी के साथ नए शायर ऐसे आ रहे हैं जो नसरी नज्म की जानिब मुतवज्जे हो रहे हैं। फिर गजल की शायरी में भी आप देखें कि रवायत से किसी कहीं कहा था, शायद खुशी साहब ने कहा था या नुमान साहब ने कहा था कि रवायत का बोझ नहीं है उन पे, हमने जिस फिक्री तसलसल की और रवायत की बात की थी, उस रवायत से कटी हुई एक नस्ल है जो गजल की शायरी कर रही है, जिसके तहजीबी बुनियादें कुछ और हैं, वो तहजीबी बुनियादें उर्दू की तहजीबी बुनियादें नहीं है, उसके बावजूद अच्छे शेर आ रहे हैं। फिर बहुत नए गजल के शायर जिसमें सालिम सलीम है, मोहिदुर रहमान है, सफी सिद्दीकी का नाम आपने लिया, एक मजमुआ पिछले दिनों देखा साबिर औरंगाबाद के शायर है, उनका मजमुआ पिछला, उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज है, वो कितनी अच्छी है ये मुझे नहीं मालूम, और बहरहाल अंग्रेजी लफ्जों का इस्तेमाल सबसे पहले हमारे यहाँ बशीर बदर ने शुरू किया था गजल की शायरी में, इसी किस्म का कुछ एक तजर्बा साबिर ने भी किया और इस फर्क के साथ किया कि बशीर बदर ने अंग्रेजी लफ्ज को उर्दू में लिखा और बहर में ले आए, बहर को जहन में रखते हुए लिखा। साबिर साहब ने अपने मजमुए में अंग्रेजी लफ्ज को अंग्रेजी में लिखा है, शेर में अगर क्यूट लिखा है
2: जी।
1: तो क्यूट सी यू टी
2: अगली में लिखा है जी,
1: अगली जो लिखा है यू जी एल वाई लिखा है,
2: और वो बहर में भी है,
1: और वो बहर वहां रवानी तो उस तरह से है जो बहर में,
0: तो का फर्क हुआ ना इसमें, कोई बहुत अच्छी
1: हाँ।
2: नहीं ये अंग्रेजी का नाम भी
0: इस्तेमाल किया, बशीर बदर ने भी इस्तेमाल किया, लेकिन अंग्रेजी में लिख लेना
1: रसल में गजल का मामला है,
2: ये बात
1: गजल नज़्म में तो हमारे यहाँ अकबर ने तो बहुत इस्तेमाल किया, तर्जुमा ने इस्तेमाल किया, लेकिन गजल में अंग्रेजी का लफ्ज अंग्रेजी के इमला के साथ शायद पहला तजर्बा है, कितना कामयाब हो गया तजर्बा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये उस समाज की तर्जुमानी जरूर कर रहा है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। डिस्कशन लफ्ज अपने आप में अंग्रेजी, हमने कितने अंग्रेजी के, तो इसी जबान की तब्दीली है, ये शायरी में रिफ्लेक्ट हो रही है, शायरी में उसकी अक्कासी हो रही है, खासतौर से नज्म में और कहीं कहीं गजल में। आने वाले दिनों में मुमकिन है कि रुझान बढ़े
2: जी जी,
1: ये मुस्तकबिल के लिए कितना खुशकुन होगा ये कहना अभी शायद कबल वक्त होगा, लेकिन इस रुझान के बढ़ने के इम्कान हैं एक ऐसे दौर में जहां हम मुस्कुराहट को भी एक स्माइल के आइकन से दिखाते हैं, जहां हम अपने गुस्से का इजहार भी एक लाल रंग का एक एमोजी

0: विषय और उम्मीदें। अभी आप इस मौजू के तहत एक मुबाहिसा सुन रहे थे, निजामत कर रहे थे नौमान शौक। तो सामने ये था हमारा आज का प्रोग्राम अंदाजे नजर। तरतीब पेशकश थी इंतजार अली सैफी की। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम खत्म करने की अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमे। फिल्मी नगमों के आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम की गाय फिल्मी नगमे। आज उनका यौम पैदाइश है। एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिनको आमतौर पर लोग बाबू के नाम से जानते हैं, एक तेलुगु फैमिली में, तेलुगु खानदान में पैदा हुए, लेकिन आपने तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और तमिल नगमे गाए। एक अंदाजे के मुताबिक आपने तकरीबन तमाम जबानों के मिलाकर 50,000 के करीब नगमे गाए और इसके लिए आपको बहुत से अवार्ड मिले। 4 फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के मिले हैं, 6 नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर के मिले हैं। इसके अलावा दूसरी रियासतों ने भी आपको मुख्तलिफ एजाजत से नवाजा है। ये आवाज जो एक मुनफरिद अंदाज रखती थी, मुनफरिद किस्म की आवाज थी, ये आवाज 25 सितंबर सन 2020 को 74 साल की उम्र में चेन्नई में इंतकाल कर गई। हमारे पास उनकी आवाज के बहुत से नगमात मौजूद हैं, तो उन्हीं नगमों में से कुछ नगमे हम आपकी नजर कर रहे हैं।

शॉर्ट फिल्म का दुकान आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम के साथ दे रही थी चित्रा, मौसीकार थी आनंद मिलिंद। और समझ लीजिए प्रोग्राम की अगली पेशकश साजन फिल्म का नगमा सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया है नदीम शरवन ने।

वो फिल्म का नाम आप सुन रहे थे एसपी बालासुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में। और सामने जब सुनी प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में आनंद बख्शी का लिखाई गई, जिसे मौसीकी सजाए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है एक दूजे के लिए।

हिंदुस्तान के फोर्ट फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में मौसीकार थे राम लक्ष्मण। और समय सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश द जेंटलमैन फिल्म का नगमा एसपी बाला सुब्रमण्यम के साथ। इस नगमे में आवाज दी है चित्रा ने। नगमा निगार इंदिवर, मौसीकार अनु मलिक।

और आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश से पहले एक इत्तला तमाम सामईन के लिए, कल यानी 5 जून को दिन में 11:30 पर आलमी यौम माहौलियात यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के मौके पर हम आपको सुनवाएंगे एक खसूसी प्रोग्राम। सुनना ना भूलिएगा और इस प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय भी हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है उर्दू सर्विस ESD@gmail.com। और अब आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अंधा कानून फिल्म का दुगाना आशा भोसले और SP बालासुब्रमण्यम की आवाजों में, मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। श्रीलंका ने अगरवाता में मतगोडा के मकाम पर बुजुर्ग अफराद की देखभाल के एक मरकज में आग लगने के वाकये में मरने वालों की तादाद 11 हो गई है, जबकि 3 अफराद लापता हैं। 7 जख्मी अफराद को इलाज के लिए मकामी जिला अस्पताल होराना में दाखिल कराया गया है। पुलिस अफसरान, फायर फाइटर्स और इमरजेंसी कारकुनों ने इस मरकज से 44 अफराद को बचाकर बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजूहात का पता लगाने के लिए तफ्तीश जारी है। खुश्क मौसम पूरे एशिया में फसल की बुआई में रुकावट पैदा कर रहा है, जिससे दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले खित्ते के लिए खुराक की सप्लाई के सिलसिले में तशवीश में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा शदीद एलनीनो मौसमी तब्दीली के इस पर मजीद मनफी असर डालने का इम्कान है। किसानों, तजियाकारों और ताजिरों का कहना है कि भारत के अनाज की पैदावार करने वाले शुमाल मगरबी मैदानी इलाकों से ऑस्ट्रेलिया के मशरकी गेहूं के खित्ते तक और थाईलैंड के चावल के खेतों से लेकर इंडोनेशिया के पाम ऑयल के वसी बागात तक गर्म मौसम और मामूल से कम बारिशों फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। एलनीनो से चलने वाली खुश्की इन किसानों के लिए एक दोहरा धचका है, जो पहले ही ईरान जंग की वजह से खाद और डीजल की किल्लत से दोचार हैं। पहली आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज शाम गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रही है, जो खेलों के आलमी मंजरनामे पर एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल वसीले से इस बड़े प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर से योग के मद्दाह और एथलीट्स अहमदाबाद में जमा हुए हैं। इस 5 रोजा चैंपियनशिप में अमरीका समेत 60 मुल्कों के 400 से ज्यादा शुरका हिस्सा लेंगे। इसका एहतमाम वर्ल्ड योग आसन के तहत किया गया है और योग आसन भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। संगमील की हैसियत रखने वाले इस प्रोग्राम का मकसद आलमी सतह पर योग और तंदुरुस्ती के बारे में बेदारी फैलाने के साथ साथ आलमी सतह पर खेल मुकाबलों में योग को शामिल करने की राह हमवार करना है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज के दरमियान बातचीत में तवानाई की यकीनी फराहमी, तिजारत और सरमायाकारी एजेंडे में सरफहरिस्त हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ईरान में सदर डोनाल्ड ट्रंप की फौजी कार्रवाई को खत्म करने की मुश्तरका कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी एवान नुमाइंदगान ने इस बारे में एक करारदाद मंजूर की है। सरकर्दा फिल्म साज पहलाज नहलानी का आज मुंबई में इंतकाल हो गया है। जुड़ा मगरबी मानसून केरलम में पहुंच गया है और पहली आलमी योग आसन स्पोर्ट चैंपियनशिप आज शाम अहमदाबाद में शुरू हो रही है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: जम्मे में 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यह हमारी आज की दूसरी मजलिस की निशायात इख्तिताम पजीर होती है। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की निशायात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

ऑल इंडिया रेडियो दास राय की प्रोग्राम है। तो हाडे किते अज दास राय की प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत घिन के मैं हाजिर हां हरजीत कौर। मेरा ख्याल है तुसा सारा ठीक ठाक हो सो। तो वाला शुरू करेंदे हां गीतां दा सिलसिला। आजकल तुसा देदे हो धिया हर पासे कितना अगू वधदियां पईयां हन, पढ़ लिख के वड्डे वड्डे ओहदा

0: छुए
1: हुए तसाए गीत सुना है आशा सिंह मस्ताना दी आवाज विच बहुमिया बाद एक गीत सुन के मिलना ना हूं मैं तो आपको सुनवेंदी पई हाँ एक बहु मजेदार गीत सारा गीत वंगा दे उत्ते है तो आपको याद हो सी पहला गलिया विच वंगा चढ़ावन आले फेरी लाया करेंदे हन के वंगा चढ़वा गिनो खास तौर ते ग्रामा विच ता हाले भी वंगा वेचन आले आवेंदे हिन बहु चंगा माहौल बन वेंदा है जडन छुहेरा रंग बिरंगिया वंगा पैंदिया हन हुण इस वेले दा एक गीत मैं तुहाकू सुनवेंदी हां आशा भोसले दी आवाज विच गीत है जरा हौली हौली चूड़िया चढ़ा वे चूड़िया चढ़ान वाले अगू की आधी है मेरा रुक रुक जांदा ही सा वे चूड़िया चढ़ान वाले बहु मजेदार है गीत असी गिद्दा है फिल्म गोरख तंदा तू गायिका हिन आशा भोसले

फूल हरी नरेंद्र बीबा दा गाया गीत पसंद आया ना? सुनन आलियो, मिलन है ता विछोड़ा भी है। तुसी समझ गए हो सो कि हुन जेड़ा गीत मैं तुहाकू सुनवेंदी पई हां उस विच विछोड़े दी गल है, प्रेम मोहब्बत दी गल है, छेड़ियां दे मोहब्बत दी गल, जाली मर्द दी मोहब्बत दी गल, जाली मर्द दी मोहब्बत विच विछोड़े दी गल, अपने माही नाल दिल दिया डूंगाइया तो वध के प्यार करने आली छुहेर के आधी है छड़ जान वाले आ, तू किथे दिल ला लिया, विछोड़ा तदन ही पौंदा है जडन दिल किथाई बिया वांज लगदा है, माही दे विछोड़े विच छुहेर दे दिल दा हाल दसेंदा, ए गीत सुनेंदे हां सुखविंदर बिट्टी दी आवाज़ विच।

I'm gonna go to the hospital.

I'm gonna go get some more.

ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈ ਗਿਆ।

प्रोग्राम चल रहा मज दी महक शब रबी शेर गिल दी वास्ते विच तुहने तुसी ए गीत सुनिया गल कर रहे हां प्रोग्राम मज दी महक दे विच माझे दी बोली अपने आप दे विच ही वखरी है माझे दा जेकर कोई बुजुर्ग अपने अंदाज दे विच गल करदा है ता शब्दां दे विच ही कहिंदे अपनापन ते सच्चाई महसूस हुंदी है शायद यही कारण है कि पंजाबी भाषा दे कई महान लेखकां ते कवियां दीआं रचनावां विच माझे दी झलक साफ नजर आउंदी है माझे दे मेले तीआं कबड्डी दे टूरनामेंट लोक गीत ढोल दी थां पंजाबी सभ्याचार नूं अज वी जिउंदा रखदे ने इत्थे दा हर पिंड इक कहानी है ते हर बुजुर्ग इक तुरदा फिरदा इतिहास है प्रोग्राम दे अखीर दे विच आओ सुनदे आं नसीबो लाल दी आवाज दे विच एक गीत

सुषमा चक्रवर्ती दी वास्ते विच हुणे तुसी एह गीत सुनिया। प्रोग्राम चल रहा सी सुगम संगीत। सामण वधदे अपने अगले सिलसिले वल। साडा अगला सिलसिला तमन्ना। तमन्ना तहत सानू जिला फाजिलका तो सोहन लाल ओम प्रकाश होना ने खत लिखे, कहंदे ने कि अमरिंदर गिल दी वास्ते विच कोई भी गीत सुना दिओ। लो जी पूरी करदे आं तमन्ना।

0: 한가위.
1: 아주 아주 아주 성수하부 아주 멋지하여 아주
0: 아게지 아게 자현지 우리 아람지 자현드
1: 자현지 자현지 성수하부 멋지하여 그 할짤 때다
0: हालचाल बढ़िया जी अपना सुनाओ
1: हालचाल तकना देखो जिदा आप कहने गुरेज और परहेज कहने तो बड़ा हर बंदा कहना यार पर गुरेज परहेज का की महत्व है पर यह जिंदगी दे विच हर पक्ष से इहदा इन्ना महत्व है कि तुसी बड़े बड़े संकटां तो बड़िया बड़िया मुश्किलों तो बच जाने जे तुसी थोड़ा जा गुरेज और परहेज शुरू कर दो आ दिन है संधु साहब आप सारे जानने कि एक दिन गर्मी दे है और गर्मी दे दिनां दे विच आम तौर ते उमूमन लोगों नूं आदत हुंदी है सवेरे सैर भी करनी है शामां नूं भी सैर करनी है क्योंकि ऑक्सीजन जिहड़ी है उहदा जिहड़ा कहिंदे ना इक शरीर नूं जिन्नी लोड़ींदी ऑक्सीजन है उस लिहाज नाल ऑक्सीजन दी उपलब्धता नहीं हुंदी
0: वातावरण दा असर पैंदा है
1: सो इसे करके हुण अज बहुत सारियां आपां खबरां सुणदे आ कि जी बंदा चंगा भला सैर करन गया रस्ते च रह गया या बंदा कहिंदे हुंदे खेड खेडदा सी खिडारी सी उहनूं कोई किसे तरह दा दबाव आ गया उहदा दिल दा दौरा पै गया ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

अवतार सिंह बिलिंग नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: डिस्कशंस ऑल्सो आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सके।
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज ने कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्तीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। साथ ही वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार को दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरूआत केवल एक नए वाहन की शुरूआत नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगासन का खेलों में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता योग को खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी चैंपियन हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। शाम के 7:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी राम राम। तो पायल बहन, हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के।
1: बिल्कुल, और आज के जो कृषि जगत कार्यक्रम है उसमें एक खास रेडियो रिपोर्ट रहेगी अतुल भाई, जो कि है राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार वितरण समारोह के ऊपर 2025, और इसमें जो सर रहेगा वो रहेगा तुषार पराशर का।
0: बिल्कुल, और इसमें तकनीकी सहयोग दिया है दिनेश विशाल कुमार ने। तो पहल बहन लेते हैं पहले ये थोड़ी सी जानकारी।
2: पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 3 जून 2026 को स्कोप कन्वेंशन सेंटर ऑडिटोरियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। ये पुरस्कार देश भर की 42 पंचायतों को माननीय केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और माननीय केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल द्वारा प्रदान किए गए। इस समारोह में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण और विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 42 पंचायतों को 2 पुरस्कार श्रेणियों के तहत सम्मानित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत 34 ग्राम पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों में उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। समग्र प्रदर्शन के आधार

0: पर जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के रूप में चुनी गई 8 पंचायतों को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री सुशील कुमार लोहानी, अतिरिक्त सचिव पंचायती राज मंत्रालय, ने अपने स्वागत अभिभाषण में कहा,
1: राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार समारोह के अवसर पर मंचा सिंह, माननीय केंद्र मंत्री पंचायती राज श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, माननीय केंद्र मंत्री पंचायती राज, केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल महोदय जी, सचिव पंचायती राज श्री विवेक भारद्वाज जी, देश भर से आए हुए पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधिगण, मैं आप सभी का पंचायती राज मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी सम्मानित पंचायत प्रतिनिधियों और उनके सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई। आज का यह अवसर सिर्फ पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह भारत के जमीनी लोकतंत्र, ग्राम स्वराज और सतत ग्रामीण विकास की उस ऐतिहासिक यात्रा का उत्सव है जिसने देश के गांवों को विकास के केंद्र के रूप में स्थापित किया है। इस वर्ष पुरस्कारों का मूल्यांकन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पाई 2.0 के लगभग 150 इंडिकेटर के आधार पर किया गया, जिससे चयन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और परिणाम आधारित बनी। इसका मूल्यांकन 14 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से अत्यंत कठोर एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कारों के लिए स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के 9 विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 34 ग्राम पंचायतों को चुना गया है, जबकि नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार जो जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को प्रदान किया जाता है के लिए 8 पंचायतों को विजेता के रूप में चुना गया है, जिसमें से 3 को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत, 2 को सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत और 3 को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में शामिल किया गया। कुल मिलाकर इस बार 17 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायतों को अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि एक रिकॉर्ड है। यह पुरस्कार केवल उपलब्धियों की पक्का पहचान नहीं है, बल्कि देश भर की पंचायतों के लिए प्रेरणा स्रोत है। यह सम्मान उन नवाचारों, सामुदायिक सहभागिता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसने ग्रामीण भारत आत्मनिर्भरता और सतत विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। सभी पुरस्कार विजेता पंचायतों, संस्थानों, राज्य सरकारों, मूल्यांकन प्रक्रिया में सहयोग देने वाले मंत्रालयों और सभी संबंधित हिताधिकारियों को पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस अवसर पर सचिव पंचायती राज मंत्रालय श्री विवेक भारद्वाज ने अपने संबोधन में कहा,
2: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह के अवसर पर आज हम उन पंचायतों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को जनसेवा और विकास का प्रभावी माध्यम बनाया है। पंचायती राज मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण कर उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर मूल स्वरूप प्रदान करने की दिशा में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को भी 2023 से ही LSDG के 9 विषयों में उत्कृष्ट कार्य के आधार पर पंचायती राज संस्थानों को देना प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता की संरचना एक बहुस्तरीय पिरामिड के स्वरूप में की गई है। इसमें ग्राम पंचायतें, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिता का सामना करके उसके पश्चात ही राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचती हैं और फिर उनमें से राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयन किया जाता है। ये पुरस्कार अन्य पंचायतों को स्थानीय शासन को और सुदृढ़ करने, सेवा प्रदायगी में सुधार लाने तथा समुदाय आधारित विकास के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को गति देने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के आंकलन में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनको पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के आधार पर ही इनका चयन किया गया है। आपको जानकर हर्ष होगा कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए देशभर में कई 100 पंचायतों ने आवेदन किया। इस बार भी पुरस्कार पाने वालों में पंचायतों का विस्तार अद्वितीय है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल और पूर्व में आसाम से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र तक की पंचायतों ने पुरस्कार जीते हैं। माननीय मंत्री जी को ये भी कि आज यहाँ राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों से सम्मानित होने वाली 42 पंचायतों में से 22 पंचायतों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं।

0: यानी आधे से भी ज्यादा। इन महिला नेतृत्व वाली पंचायतों ने अपने असाधारण कार्य से महिला सशक्तिकरण की अद्भुत मिसाल कायम की है। अंत में मैं एक बार फिर सभी विजयी पंचायत राज संस्थाओं को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि देश की दूसरी पंचायतें भी इनका अनुकरण कर उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रेरित होंगी।
1: माननीय केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा,
2: सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि लोकतंत्र का सबसे कठिन चुनाव जीत करके आ पाए हैं।

0: चयन की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी थी। ये पुरस्कार मिला है इसके पीछे उनकी बहुत बड़ी मेहनत है, ईमानदारी है, पारदर्शिता है, लोकप्रियता है। इसलिए ये ऐतिहासिक दिन है, 42 पंचायतों को पुरस्कार मिला है। जब न्यूज में आएगा, अखबार में आएगा, तो अन्य पंचायतों को भी प्रेरणा मिलेगी। काश हमने भी कुछ और अच्छे तरीके से काम किया होता, काश हमने भी थोड़ी मेहनत की होती, काश हमने कुछ विकास और किया होता, तो इस पुरस्कार से हम भी सम्मानित होते। विकसित भारत जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, और 2030 तक जो सतत विकास लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है, उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये एक विकास का अंत्योदय है। देश की खुशहाली का रास्ता यदि खेत कल्याण से जाता है, तो देश की खुशहाली का रास्ता पंचायतों से भी होकर के जाता है। पंचायत सशक्त तो देश सशक्त, पंचायत विकसित तो देश विकसित, पंचायत आत्मनिर्भर तो देश भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसलिए पंचायत राज के मार्गदर्शन में राज्यों के सहयोग से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण LSGD कर उन्हें पंचायत स्तर पर प्राप्त करने की दिशा में विगत वर्षों में वास्तव में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। और ये थीम भी जो है भारत सरकार ने आपको दी है कि आपको ये इन विषयों पर काम करना है। इसलिए 2023 से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का आधार LSGD को बनाया गया है, लेकिन उसमें और भी ज्यादा पारदर्शिता के लिए, निष्पक्षता के लिए 2025 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की रूपरेखा में पंचायत एडवांस इंडेक्स PI को भी जोड़ा गया है, जिससे और भी ज्यादा पारदर्शिता आई है। 2.5 लाख पंचायतों में से 42 पंचायतें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। भावनाओं से विकास नहीं होता है, भावनाओं से प्रेरणा जरूर मिलती है। विकास के लिए हमेशा वित्त की जरूरत होती है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 16वें वित्त आयोग के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों और पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। 2026 से 2031 के लिए 4,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि आवंटित की है, और यह धनराशि 15वें वित्त माने पिछले वित्त आयोग की तुलना में 84% है। मैं विभाग का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने प्रोत्साहन के लिए 20% यानी 87,000 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए दिया गया। मैं एक बात पंचायतों से कहना चाहूंगा, जो अभी गुवाहाटी में हम लोग CSC पर एक बड़ा 8 राज्यों का सम्मेलन किए हैं, वहां मैं एक ही विषय पर बोला था, पंचायत का काम केवल जो टाइड और अनटाइड जो फंड्स हैं उनके दिए हुए काम ही करता नहीं है, बल्कि CSC में 300 से ऊपर सेवाएं हैं। अगर हमारे सरपंच, प्रधान, मुखिया अपने पंचायत घर, पंचायत सचिवालय और उसके कंप्यूटर का उपयोग प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का फार्म भराने में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के फार्म को भराने में, विधवा पेंशन के फॉर्म भराने में, दिव्यांग पेंशन के फॉर्म भराने में, वृद्धजन पेंशन के फॉर्म भराने में, आधार कार्ड की त्रुटि को ठीक करने में, किसान सम्मान निधि का आवेदन करने में, पासपोर्ट बनवाने में, आयुष्मान कार्ड बनाने में, पंचायत का विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी है, जल जीवन मिशन भी है, तमाम कृषि विभाग की योजनाएं हैं, रूरल डेवलपमेंट की तमाम योजनाएं हैं, लेकिन ये जो 42 पंचायतें हैं इनमें केंद्र सरकार की योजनाओं का पात्र लाभार्थी और आपके राज्यों का कोई पात्र लाभार्थी वंचित ना रहे, तब मैं समझूंगा ये पुरस्कार को आपने चरितार्थ किया।
1: माननीय केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा,
2: सबसे पहले तो मैं जिन पंचायतों ने आज का पुरस्कार जीता है मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता और उनको बधाई देता। आप सबने समर्पण के भाव से, नवाचार और जन सेवा की भावना के साथ कहा। पंचायत लोकतंत्र की सबसे निचली सीढ़ी है, और सबसे निचली सीढ़ी अगर मजबूत होगी तभी ऊपर की सीढ़ी मजबूत हो सकती है, और इसलिए आपने जो पूरे समर्पण के साथ पंचायत को सुदृढ़ किया है उसके लिए आज आप ये पुरस्कार के हकदार हुए। अब ये पुरस्कार जो है ये सिर्फ आपका सिर्फ इस उन पंचायतों के लिए ये सम्मान नहीं है, आपके माध्यम से इस देश के सभी पंचायती राज व्यवस्था के आप एक प्रेरणा के स्रोत हो सकते कि अच्छा काम किया है।

0: उस पंचायत में, तो उनको यह पुरस्कार मिला है। आप उसका माध्यम बन सकते हैं, आप अन्य पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित करके उनको बता सकते हैं कि हमने देखो ऐसा काम किया अपने पंचायत में और आज हम पुरस्कार के हकदार हुए, आपको भी यह काम करना चाहिए। तो आप एक माध्यम हो सकते हैं, आप सिर्फ पुरस्कार के हकदार नहीं है। आप अगर पुरस्कार पाके आज वापस चले जाइए और जाके निश्चिंत होकर सो जाइए तो इसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ है कि आप जाके अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनिए और उनको मोटिवेट करिए इस बात के लिए कि आप भी पंचायतों को उतना ही सुदृढ़ कीजिए और उसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए, सशक्त करने का काम कीजिए। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है और एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, आज हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। कई मामलों में हमारा देश आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन आत्मनिर्भर होने से हमारा संतोष नहीं होगा। हम विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते। 14वें वित्त आयोग में मात्र 2,292 करोड़ रुपया का आवंटन पंचायतों के लिए मात्र, और आज 16वें वित्त आयोग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4.35 लाख करोड़ उसका दोगुना पंचायतों को विकसित करने के लिए वित्त आयोग से अनुशंसा आया। लेकिन उसके साथ साथ हम पंचायतों से भी आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके। और आज 42 में 22 महिला प्रतिनिधियों को मिला है, तो इसलिए आज महिलाओं में नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ी, उनमें कौशल विकास हुआ है, उनमें शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने की शक्ति मिली है। लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं का हमारा भी कर्तव्य है कि हम महिलाओं के नेतृत्व को, उनकी कार्य क्षमता को और सहयोग करके उसको सुदृढ़ करने का प्रयास करें। हम पंचायत प्रतिनिधियों से यह भी आग्रह करें कि पंचायती राज मंत्रालय ई ग्राम स्वराज पोर्टल चला रहे और ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से हम ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं। खुदरा लेन देन मुहजवानी खाता बही वाला काम नहीं है, अब ऑनलाइन भुगतान हो रहा है और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान इस पोर्टल के माध्यम से किया गया है। यह अपने आप में एक पारदर्शी तरीका है, जिस पारदर्शी तरीके को पंचायतों ने अपनाने का काम किया है, मैं इसके लिए भी पंचायतों को बधाई देने का काम करता हूं।
1: पुरस्कार विजेता पंचायतों द्वारा किया गया उत्कृष्ट कार्य प्रभावी स्थानीय शासन और समुदाय के नेतृत्व वाले विकास के मूल्यवान उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनकी पहलों और सर्वोत्तम प्रथाओं के व्यापक प्रसार से देश भर की पंचायतों के बीच ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहन मिल सकता है और उन्हें इसी तरह के दृष्टिकोण अपनाने व प्रदर्शन के उच्च मानकों के लिए प्रयास करने की प्रेरणा मिल सकती है। और इसी के साथ राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के पुरस्कार वितरण समारोह पर आधारित यह रेडियो रिपोर्ट अब सम्पन्न होती है। प्रस्तुति सहयोग विशाल कुमार, दिनेश कुमार, संयोजक शिवनंदन लाल और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।
2: तो पायल बहन, अभी हमारे सभी बहन भाइयों ने सुनी ये रेडियो रिपोर्ट राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार वितरण समारोह 2025। और देखिए, अब सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हुई हैं, जैसे कि उनमें से एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। और जैसे कि बात आई है मृदा के स्वास्थ्य के बारे में, तो जब अगर मृदा हमारी अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तभी हमारे किसान बहन भाइयों का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा और भाई उनकी जो लागत है वो कम होगी। ऐसी ही एक वो चली हुई है अभियान चला हुआ है, खेत बचाओ अभियान। यह अभियान मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा करने, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने और पहले वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
3: ये अभियान जो है अतुल भाई

0: देश भर में 1 जून से 30 जून 2026 तक चलाया जाएगा। और इस अभियान की जो प्रमुख गतिविधियां हैं वो हैं कि मिट्टी की जांच, मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉयल हेल्थ कार्ड, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, उन्नत बीज, बीज उपचार, हरी खाद, आधुनिक बुआई तकनीकों और पानी की बचत करने वाली खेती के तरीकों को बढ़ावा देता है। योजनाओं से जुड़ाव ये है, अभियान नकली उर्वरकों और बीजों और कीटनाशकों के खिलाफ जागरूकता पैदा करेगा। साथ ही किसानों को सरकारी योजनाओं जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि यांत्रिक यानी मशीनरी कार्यक्रमों का लाभ उठाने में मदद करेगा।
1: बिल्कुल देखिए, और मुख्य उद्देश्य यही है, यह अभियान मिट्टी बचाओ, खेती बचाओ और किसान बचाओ के विचार पर आधारित है। यह इस बात पर जोर देता है कि उत्पादक कृषि, सशक्त किसानों और दीर्घकालिक राष्ट्रीय समृद्धि के लिए स्वास्थ्य मिट्टी बेहद आवश्यक है। पायल बहन,
0: बिल्कुल।
1: और देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसा कि बात आपने बताई है, अभियान मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देता है ताकि उर्वरकों का उपयोग जो मिट्टी की वास्तविक पोषक तत्वों की जो आवश्यकता के आधार पर किया जा सके। इसमें लागत को कम करने, उत्पादकता में सुधार करने और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में जो है मदद मिल सकती है।
0: ग्रामीण आउटरीच यानी कि गांवों तक पहुंच, कृषि वैज्ञानिक आईसीएआर संस्थान, कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि किसानों को शिक्षित करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए गांवों का दौरा करेंगे। वैज्ञानिक खेती इस अभियान में सोयाबीन, धान और दलहन जैसी फसलों के लिए खेतों में लाइव प्रदर्शन शामिल होगा। किसानों को लेजर लेवलर, स्थानीय कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसल चयन और जल कुशल कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
1: बिल्कुल, तो देखिए यही बहुत अच्छी जानकारी है
0: और इस अभियान में भाई आप जो है अवश्य
1: जुड़े। बिल्कुल, हमारे किसान भाई, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी जितने भी हमारे सब किसान बहन भाई हैं कि भाई अधिक से अधिक अपनी भागीदारी इसमें अभियान में दें और जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं भाई उनकी सलाह के अनुसार भी आप जो है अपनी कृषि में कार्य अवश्य करें। और देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं भाई, मौसम भी बदल रहा है पायल बहन, धीरे धीरे कभी गर्मी हो जाती है, कभी बरसात का सा मौसम हो जाता है। तो भाई बदलते मौसम में आप अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें और अपने पशुओं का भी
0: खास तौर से ध्यान रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए एक बात और कहना चाहते हैं पायल बहन कि कल हमारे किसान बहन भाई ग्राम संसार कार्यक्रम में भाई कपड़े के थैले और दोने पत्तल उद्योग से ग्रामीण स्वरोजगार विश्व पर्यावरण दिवस पर ये विशेष जो है जानकारी
0: जानकारी रहेगी हमारी।
1: हाँ, और देखिए कृषि जगत में हमारे जो सभी किसान बहन भाई फल सब्जी और मिलेट्स लोक संगीत के साथ सुन सकेंगे। और एक जानकारी और देना चाहते हैं हम कि जब हमारे किसान बहन भाई, देखिए हमारा पहले और तीसरे मंगलवार को हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम जाता है इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम संसार एवं कृषि जगत में, जो कि हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल पर ही जाता है, गन्ने की पाठशाला। इसमें जो कि हमारे सीधे विशेषज्ञ से आप जुड़ सकते हैं और अपनी गन्ने की फसल से कोई भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनसे सीधे जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 2342-1082 और 2342-1083। और दिल्ली से बाहर के जो हमारे भाई किसान बहन भाई हैं वो 011 लगाना ना भूलें।
0: तो भाई ये तो थी काम की बात, जानकारी की बात अतुल भाई, और अब चलते चलते अपने सभी बहन भाइयों का थोड़ा सा करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं राकेश त्यागी की आवाज में ये उपदेश।

0: तो हमारे इसी उपदेश के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी राम राम, राम, राम।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गजल कव्वाली। कार्यक्रम का पहला जो प्रस्तुति हम देने जा रहे हैं वो है फिल्म अमर अकबर एंथोनी से, और गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

शमा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना करूं।

0: आंध्रप्रदेश चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल कव्वाली और मैं हूं आपके साथ चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं किशोर कुमार साहब के स्वर में एक बहुत ही खूबसूरत कव्वाली फिल्म अनोखी अदा से। गीत रचना है मजरू सुल्तानपुरी साहब की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।
1: दिलों का न पूछो सनम आपका।

और किशोर कुमार साहब को अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनोखी अदा में। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में फिल्म उमराब जान में बेला सोलाखी को।

0: फिल्म उमराव जान में अभी आपने सुना बेला सुलाखे को, और इसी के साथ ये आज का गजल कव्वाली का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर कांवड़ समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री राजधानी में अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगी। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस ने अवैध पार्किंग के खिलाफ और तय मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम शुरू की, और आईआईटी दिल्ली जेई एडवांस 2026 में पात्र होने वाले छात्रों के लिए कल से भारत के 3 शहरों में एक ओपन हाउस का आयोजन करेगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर आयोजित कांवड़ समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने निर्देश दिए कि कांवड़ समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया समय से शुरू की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि पंजीकरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू करने की दिशा में सभी तैयारियां पूरी कर ली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी समितियों को आवश्यक दस्तावेजों और वार्षिक ऑडिट संबंधी औपचारिकताओं की जानकारी समय रहते उपलब्ध कराई जाए, जिससे आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई न आए। साथ ही श्रद्धालुओं को 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और व्यवस्थाओं पर बल देने, बैंक खातों में ट्रांसफर करने तथा सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज साकेत के मैक्स हॉस्पिटल का दौरा किया और मालवीय नगर में आग लगने की दुखद घटना में कल घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने घायलों और उनके परिवार वालों से बातचीत की और इलाज कर रहे

0: डॉक्टरों से इलाज की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को सभी जरूरी मदद देने का निर्देश दिया। वहीं दिल्ली सरकार में पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह एक दुखद घटना है और इसमें कई बेकसूर लोगों की जान गई है।
1: बहुत ही दुखद घटना है और इतने सारे इनोसेंट लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ऑर्डर की है। निश्चित तौर पर वहां पर एक इलीगल होटल चल रहा था, रेस्टोरेंट भी इलीगली ही चल रहा था, कोई उसके लाइसेंस के डिटेल है नहीं। और एक 6 कमरों का बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना जो कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे लाई गई थी, उसका भी एक यूनिट वहां पे चल रहा था जिसको 2024 में लाइसेंस मिला था।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के मालवीय नगर अग्निकांड जैसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और अनधिकृत निर्माणों तथा अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता वो करेंगी। दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि मालवीय नगर अग्निकांड के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी भवन मालिक, अधिकारी और अन्य दोषी व्यक्ति को शान नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मानकों का अनुपालन, प्रभावी निगरानी व्यवस्था और जवाबदेह तंत्र सहित सभी पहलुओं पर समग्र रूप से काम करना आवश्यक है, जिससे भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। दिल्ली सचिवालय में कल आयोजित होने वाली इस बैठक में दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, DDA, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली जल बोर्ड तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मालवीय नगर के एक गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग की घटना के पीछे रही कमियों की गंभीरता से जांच की जाएगी और जिसकी भी जवाबदेही बनती है उसे तय किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राजधानी में अवैध संपत्तियों, बिना अनुमति संचालित हो रहे होटलों और गेस्ट हाउसों तथा उन सभी संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अग्नि सुरक्षा नियमों और भवन उपविधियों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
2: दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पिछले एक महीने के दौरान राजधानी में सघन निगरानी, निरीक्षण और प्रवर्तन गतिविधियां चलाई हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा की नियमित निगरानी प्रक्रिया के तहत विभाग ने विभिन्न खाद्य व्यवसाय प्रतिष्ठानों से एक महीने कुल 217 खाद्य नमूने एकत्र किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: इस अवधि के दौरान विभाग को 145 खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 133 नमूने निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाए गए, 12 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिनके संबंध में संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा एक कार्रवाई में विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से खारी बावली बाजार में चल रही एक कम गुणवत्ता वाली मसाले बनाने की इकाई का भंडाफोड़ किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नियमों का पालन आसान बनाने और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन संबंधी बड़ी संख्या में आवेदनों का निस्तारण किया है। श्री सिंह ने बताया कि मई माह के दौरान कुल 503 लाइसेंस जारी किए गए, जबकि लाइसेंस नवीनीकरण के 753 आवेदनों पर भी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से नियामक निगरानी और ज्यादा मजबूत हुई है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को आज वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
4: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि यह विस्तार आने वाले दिनों में प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और इवेंट प्रबंधकों के लिए विविध अवसर पैदा करेगा। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप

0: 2026 का ऐतिहासिक पहला संस्करण आज अहमदाबाद के एका एरेना में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है। एक रिपोर्ट। अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने सब जूनियर से लेकर सीनियर मास्टर्स तक 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। इस खेल को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर पहली बार एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिससे हर एक आसन संतुलन और गति का एक सटीक मूल्यांकन किया जा सके। यह आयोजन योगासन को आध्यात्मिक कल्याण के साथ साथ ओलंपिक में एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित करने का एक बड़ा प्रयास है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस ने अवैध पार्किंग के खिलाफ और तय मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के अंतर्गत यातायात की आवाजाही को आसान बनाने, सड़क किनारे होने वाली भीड़ को कम करने और पार्किंग के मामले में अनुशासन को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम इस सप्ताह से राजधानी में तय मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाओं के आसपास एक तालमेल वाली कार्रवाई और जागरूकता मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का उद्देश्य वाहन चालकों को सड़कों, सिविस लेन, फुटपाथ, कैरिजवे, नो पार्किंग वाली जगहों और ऐसी पार्किंग सुविधाओं के आसपास की दूसरी सार्वजनिक जगहों पर गलत तरीके से गाड़ियां खड़े करने के बजाय तय पार्किंग जगहों का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि लोगों के लिए पहले से मौजूद पार्किंग सुविधाओं का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा व्यस्त बाजारों, रिहायशी व्यापारी इलाकों और सार्वजनिक जगहों के आसपास यातायात की आवाजाही आसान और बिना रुकावट की दिशा में बल देना है। इस तालमेल वाली मुहिम में 6 मल्टी लेवल पार्किंग जगहों को चुना गया है। इनमें कमला नगर के स्पार्क मॉल, ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक मार्केट, हौज खास, कुतुब रोड, निजामुद्दीन बस्ती और परेड ग्राउंड शामिल है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे तय पार्किंग सुविधाओं का इस्तेमाल करें और अपनी गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी करने से बचें। उन्होंने यह भी सूचित किया कि इन पार्किंग सुविधाओं के आसपास गलत तरीके से खड़ी पाई गई गाड़ियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली सरकार में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज नरेला की इंडस्ट्री एसोसिएशन और मायापुरी के कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सोसाइटीज के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सचिवालय में बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान उन्होंने नरेला में जलभराव की समस्याओं पर चर्चा भी की, साथ ही जल निकासी प्रणाली को बेहतर करने और पूरे इलाके के विकास संबंधी कार्यों को लेकर अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आईआईटी दिल्ली जेई एडवांस 2026 में पात्र होने वाले छात्रों के लिए कल से भारत के 3 शहरों में एक ओपन हाउस का आयोजन करेगी। इस 3 दिवसीय सत्र का आयोजन दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में किया जाएगा। इस ओपन हाउस में छात्रों को आईआईटी दिल्ली के छात्रों, फैकल्टी और पूर्व छात्रों से बातचीत करने का अवसर मिलेगा। साथ ही आईआईटी दिल्ली द्वारा छात्रों के पूछे गए सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसके अलावा पढ़ाई, रिसर्च, कैंपस लाइफ और आजीविकाओं के मौकों के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। इससे छात्रों को अपने शैक्षणिक सफर के बारे में सोच समझकर फैसला लेने में मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने शालीमार बाग क्षेत्र से अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह विदेशी नागरिक बिना किसी वैध यात्रा और पहचान दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में रह रहा था। पुलिस ने जांच के दौरान विदेशी नागरिक से एक फोन बरामद किया है, जिसमें बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान दस्तावेज पाए गए हैं और फोन में प्रतिबंधित आईएमओ एप्लीकेशन भी इंस्टॉल है। पुलिस ने बताया कि अवैध अप्रवासी को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसे वापस भेजने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की मादक पदार्थ निरोधी दस्ता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के

आज से 22 किलोग्राम से अधिक का मादक पदार्थ बरामद किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। राजधानी में आज करीबन सभी जगह तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज बारिश के कारण लोगों को जल जमाव का सामना भी करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाये रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने परीक्षा केंद्र तक रियायती दरों पर बस यात्रा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर कांवड़ समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री राजधानी में अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस ने अवैध पार्किंग के खिलाफ और तय मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम शुरू की। और आईआईटी दिल्ली जेई एडवांस 2000

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अदृश्य तरंगे दृश्य प्रभाव आपदा में आकाशवाणी का महत्व, जो केंद्रित है आपदाओं के समय आकाशवाणी द्वारा दी गई जानकारी चेतावनी और मार्गदर्शन पर। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश, फाउंडर चेयरपर्सन कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट सोसाइटी आर के टिक्कू, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं नीलम मलकानिया। आप सभी को नीलम मलकानिया का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि इन दिनों आकाशवाणी के 90 वर्षों का उत्सव चल रहा है और इसी उपलक्ष्य में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ विशेष कार्यक्रम। ऐसा ही एक विशेष कार्यक्रम ये, जिसका शीर्षक अदृश्य तरंगे दृश्य प्रभाव आपदा में आकाशवाणी का महत्व। तो आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन की और जब कभी कोई आपदा होती है उसमें आकाशवाणी की क्या भूमिका रहती है, आपदा से पहले कैसे लोगों को तैयार किया जाता है, आपदा के समय हमारी क्या प्रतिक्रिया रहती है और उसके बाद भी जो काम रहता है उसमें जो जनमानस है उससे कैसे जुड़ाव रहता है आकाशवाणी के प्रसारण कर्मियों का अपने कार्यक्रम के माध्यम से। इस कार्यक्रम में मैं स्वागत कर रही हूँ आकाशवाणी के ही वरिष्ठ प्रसारण कर्मी जो यहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं आर के टिक्कू जी का। आप पॉलिसी और प्रोग्राम प्लानिंग में रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रमों से आपका जुड़ाव रहा है, आपदा प्रबंधन के विशेष कार्यक्रम भी आपने देखे हैं, तैयार किए हैं। राजेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। अब मैं कार्यक्रम में स्वागत कर रही हूँ डॉक्टर सूर्य प्रकाश का। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का अतिरिक्त प्रभार आपने संभाला है, साइबर सिक्योरिटी से आप जुड़े हुए हैं और फाउंडर चेयरपर्सन हैं कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट सोसाइटी के। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
1: धन्यवाद, आप सबको मेरा नमस्कार।
0: जैसे हमने अभी बात की कि आपदा प्रबंधन में आकाशवाणी जो है वो तीन भूमिका निभाता है, आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद भी। तो डॉक्टर सूर्य प्रकाश, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जब कभी हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अपने आप में ये शब्द हमें क्या बताता है, कौन कौन से क्रियाकलाप डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आते हैं?
1: नीलम जी, देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। ये जानना जरूरी है कि आपदा क्या होती है
0: जी,
1: और किन परिस्थितियों में होती है और क्या क्या उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। पहला तो हमारे यहाँ एक आपदा प्रबंधन कानून 23 दिसंबर 2005 में लागू किया गया
0: जी।
1: इसका नोटिफिकेशन 26 दिसंबर 2005 में हुआ था
0: जी।
1: और एक अमेंडमेंट हमारा आया है 29 मार्च 2025 में इसी कानून का, जिसके तहत ये बताया गया कि आपदाएं क्या होती हैं। ये ऐसी जो प्राकृतिक या मानव जनित या दोनों से मिलकर कोई भी ऐसी घटना या दुर्घटना विपदा आ जाए जिससे हमारे जीवन को, हमारे संसाधनों को, हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान हो, इतना कि जो हमारी क्षमता से बाहर हो
0: जी,
1: उसको हम आपदा के रूप में देखते हैं। और इस तरह की कई आपदाएं हो सकती हैं, उसका विभाजन भी किया गया अलग अलग कैटेगरीज में। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूँ, जैसे चक्रवात आते हैं हमारे बे ऑफ बंगाल में या अरब सागर में, तो जब ये लैंडफॉल होता है तो हमारे काफी नुकसान कर जाते हैं, जनहानि भी हो जाती है और आर्थिक नुकसान और पर्यावरण हानियां भी होती ही हैं। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, ग्लेशियर के पिघलने से जो आउटबर्स्ट लेक्स होती हैं, जैसे सिक्किम में 3-4 अक्टूबर 2023 में हुआ लोनाक लेक का, ऐसे ही भूस्खलन हो जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, ये भी आपदाओं में सम्मिलित होते हैं
0: जी।
1: इसके अलावा जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, गैस रिसाव होने से जो मृत्यु हो जाती है आकस्मिक, और कोविड-19 की जो हमारे यहाँ बड़ी आपदा आई 2019 नवंबर दिसंबर में और उसके बाद 2022 तक रही, ये भी एक आपदा के संक्रामक स्वरूप में देखी जाती है। तो इस तरह से कई तरह की आपदाएं होती है। अब इन आपदाओं के लिए हम क्या करते हैं, उसमें तीन फेजेस में देखते हैं कि आपदा पूर्व, आपदा दौरान और आपदा पश्चात
0: जी।
1: इसके लिए हम ये कहते हैं कि आपदा के आने का इंतजार करने से अच्छा है कि हम आपदा पूर्व तैयारियां करें
0: जी।
1: जो हमारा मीडिया है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि लोगों को एजुकेट करे, जैसे हमारा एक लक्ष्य है ना, एजुकेशन एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, तो इसके साथ में इमरजेंसीज और एम्पावरमेंट का भी हम पब्लिक के लिए काम करें और क्राइसिस मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं लोगों को जानकारियां देकर कि किस तरह की आपदाएं किस समय में किस क्षेत्र में आ सकती हैं और उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए या उन आपदाओं को कैसे रोकथाम की जा सकती है, बचाव किया जा सकता है या उनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है न्यूनीकरण के लिए। तो ये सब तैयारियां हमें क्या क्या करनी है अपने जन समुदाय के स्तर पर इंडिविजुअल के तौर पर या लाइन डिपार्टमेंट्स और सिस्टम के तौर पर, तो ये सब ये होता है। और इसके अलावा हम लोगों ने एक पूरा चेतावनी तंत्र बनाए हैं, व्यवस्थाएं बनाई हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सचेत ऐप को लागू किया है, उसमें हम ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक क्षेत्र में कौन सी आपदा आने की संभावना है और उसकी क्या परिस्थितियां हैं और उसके लिए क्या तैयार करना है और कैसे एक्ट करना है
0: जी।
1: इसके अलावा एक नंबर भी हमारा 112 जिससे जानकारियां दी जा सकती हैं और आपदा दौरान उसकी सही जानकारी उपलब्ध करवाना हमारा मीडिया का और लाइन डिपार्टमेंट्स का काम रहता है। एक इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है, कंट्रोल रूम हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है, वो सब मिलके एक साथ काम करते हैं। फिर आपदा पश्चात हम लोग उसे उभरने के लिए लोगों को रिहैबिलिटेट करना है, रिस्टोरेशन वर्क्स करने हैं और उससे रिकवरी करके रीडेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो क्या सबक हम सीखते हैं कैसे करना है, ये सारी परिस्थितियां लोगों को जानकारियां देनी होती हैं।
0: जी मैं राजेश जी अब आपसे जानना चाहूंगी, जब आपदा होती है देश में तब हर एजेंसी अपने स्तर पर अलर्ट होती है और जो उससे जुड़ी हुई एजेंसीज होती हैं, विभाग होते हैं, वो निरंतर कार्य कर रहे होते हैं। आकाशवाणी का जुड़ाव लगातार श्रोताओं के साथ रहा है, ऐसे में आपदा के समय क्या विशेष तैयारियां की जाती हैं या क्या भूमिका आकाशवाणी द्वारा निभाई जाती है?
2: आकाशवाणी का इतिहास अगर देखें, अभी हम 90 इयर्स मना रहे हैं पर सफे आया, 90 साल का इतिहास है कि जहां जब भी कोई आपदा हुई, नेचुरल कैलेमिटी, मैन मेड डिजास्टर ऑफ एनी काइंड, आकाशवाणी हमेशा फोरफ्रंट में आता। इसमें अगर आप स्टार्ट से ही करेंगे, वी विल सी 1947 में ही जब फुल स्केल वार थी, वार्नी स्टोर टेस्ट ऑफ द टाइम एक्ट जो हमने किया कि जो हमने उस टाइम करना चाहिए था। फिर आ गया नेचुरल कैलेमिटीज, उसमें आप चलिए ओडिशा सुपर साइक्लोन, इट वॉज अ चैलेंज फॉर अस क्योंकि सब कुछ तहस नहस हुआ था कुछ एरियाज में खासकर, लेकिन उसके बाद कश्मीर फ्लड्स देखे होंगे आपने 2014 में आया। AIR हैज रिपीटेडली प्रूव दैट वी

0: जी तो हम कोई नया नहीं करने जा रहे, हमारे यहाँ सब कुछ एस्टेब्लिश्ड है
1: जी,
0: एसओपीज आर देयर, उसमें बीच बीच में हम परिवर्तन करते रहे। जैसे पॉलिसी डिसीजन हेयर इन एयर, तो उसमें एक डेडिकेटेड डेस्क है डिजास्टर मैनेजमेंट
1: जी,
0: उसमें हम जितने भी बीच बीच में सर्कुलर्स इशू करते हैं तो वेरियस डिजास्टर कम्युनिकेशन इज अ बिग सब्जेक्ट यू नो इट
1: जी बिल्कुल,
0: इसकी हमारी कोर स्ट्रेंथ क्या है। देखिए आकाशवाणी बैकबोन है हमारा डिजास्टर कम्युनिकेशन, इसलिए मिलता जुलता भी कोई नहीं है क्योंकि उसमें क्या है हमारा वास्ट ज्योग्राफिक रीच है
1: जी बिल्कुल,
0: वास्ट ज्योग्राफिक, वी आर कवरिंग 99% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, मोर देन 99% एंड 92% ऑफ जो जितना भी हमारा ये ज्योग्राफिक एरिया है वो हम कवर करते हैं। वी आर रीचिंग टू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द नेचर, वी आर रीचिंग टू इनएक्सेसिबल एरियाज, जहां सूरज की किरण पहुंचे वो और उसके बाद आकाशवाणी, ये हमारा एक है। और दूसरा है कि एक्सेसिबिलिटी फॉर एयर, हमारा जो रेडियो है आकाशवाणी का ये जो, इसमें एक्सेसिबिलिटी है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट या कभी अगर बिजली की समस्या, क्योंकि आपदाओं में तो बिजली की सबसे बड़ा
1: जी
0: ऑल आउट है आपकी बिजली की समस्या, पावर सप्लाई स्नैप्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल, तो उस टाइम क्या है लोगों के पास रीच, दिल्ली बॉम्बे बड़े शहरों में तो हम देखते हैं सेटेलाइट टीवी पे वहां ये हो रहा है यहां हो रहा, लेकिन ऑन ग्राउंड उनके पास एक ही रेडियो सेट है। अगर रेडियो सेट में इंटरनेट ना भी हो, क्योंकि अब एआईआर तो हम बहुत सारे माध्यम से अब लोगों से जुड़े हैं, ऐप पे भी है वहां इंटरनेट, लेकिन आपके पास मोबाइल भी तो है, मोबाइल से आप सीधा सुन सकते हैं नॉर्मल रेडियो एफएम रेडियो तो सुन ही सकते हैं, वो हमारा एक बड़ा प्लस पॉइंट, मतलब उसमें हम कवर कर सकते हैं जहां भी। और थर्ड पॉइंट है मल्टी एंगल ब्रॉडकास्टिंग, हम ऐसा तो कहीं और नहीं है
1: जी,
0: कोई भी नेटवर्क वर्ल्ड का आप देख लीजिए, यार हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं एक तो 23 लैंग्वेजेस में, उसमें 22 शेड्यूल वाली मेजर लैंग्वेजेस इंग्लिश तो आई और 181 डायलैक्ट्स मेजर और माइनर डायलैक्ट्स, उनकी जबान उनके भाषा में उनमें लोगों को वहां जब जानकारी पहुंचती है, ये आपदा तो लोकल स्तर पर ही ज्यादातर होती रहती है, उनकी जबान पे वहां पर वी आर द फर्स्ट टू रीच देयर, वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे आकाशवाणी के लिए। फिर दूसरा जैसे आप कह रहे थे क्रेडिबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट, इट हैज इम्प्रूव टाइम एंड अगेन दैट फॉर डिकेड्स एयर हैज एंजॉयड ये क्रेडिबिलिटी वगैरह, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं। देन फिर दूसरा है कि वन मोर पॉइंट, इंटीग्रेशन विद गवर्नमेंट एजेंसीज, हमारा हमेशा आकाशवाणी केंद्र जहां जहां भी है सब कोऑर्डिनेटेड है, कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है स्थानीय विभाग जो है, अब तो एनडीएमसी है ये एनडीएमए है वगैरह और भी है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज भी है लोकल लेवल पे है, उनके साथ हमेशा बना रहता है, वर्कशॉप्स करते रहते हैं, दे आर द वन हु कम ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हमारे साथ है। देन देयर इज रोल क्या है हमारा नेचुरल डिजास्टर, देखिए इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट लाइन जैसे आपको पता है हाईली वल्नरेबल है टू साइक्लोन्स, बार बार इसकी प्रमाण मिलते हैं इसके। हम आकाशवाणी के जितने भी केंद्र हमारे हैं उड़ीसा में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में है, ये मतलब हिस्टोरिकली इन्होंने ये करते रहते हैं अर्ली साइक्लोन वार्निंग्स
1: जी
0: हमेशा, इस वक्त भी अभी जैसे साइड अभी कोई भी मानसून का आने वाला है समय उसमें भी करते जाएंगे, इवैक्यूएशन एडवाइजरीज, शेल्टर इन्फॉर्मेशन, फिशिंग रेस्ट्रिक्शंस, जो वहां फिशरमैन जाते हैं टू द कोस्टल एरियाज वहां पर फिशिंग के लिए उनके पास भी, ये एक जमाना याद होगा आपके शॉर्टवेव ट्रांसमीटर्स भी होते, बाय शॉर्टवेव ट्रांसमीटर वी वुड रीच टू देम कि भाई आने वाला है तूफान वापस आ जाइए या मत जाइए शिपिंग के लिए। फिर पोस्ट डिजास्टर रिलीफ अनाउंसमेंट की वो बात भी है, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी तो हुई है, वहां पर आकाशवाणी हमेशा करता रहा है करता जहां जहां भी। इसके और भी आपने देखे होंगे कोसी का रिवर फ्लड जब हुआ बिहार, यहां से टीम गई दिल्ली से
1: जी,
0: दिल्ली से गई जहां पर कोई था भी नहीं, क्योंकि अपने आकाशवाणी केंद्र भी तो इफेक्ट होते हैं ना
1: बिल्कुल
0: ऐसा, तो हमारे पास एक एडवांटेज है ट्रांसमीटर्स होते हर जगह मेजर केंद्रास में हमारे ट्रांसमीटर एचपीटीज है, एलपीटीज भी जहां भी है तो वहां से हम ऑपरेट करते हैं, सेकेंड लाइन थर्ड लाइन हमने पहले लिया है
1: पहले प्रोसेस जी ताकि सही जानकारी लोग
0: मोस्ट क्रेडिबल
1: जी। और जैसा कि आपने कहा कि देश के हर कोने तक आकाशवाणी पहुंचता है, हमारे कार्यक्रम पहुंचते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रसारण कर्मी जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं ताकि अगर कोई कठिन समय चल रहा है तो उसमें साथियों का मनोबल भी बढ़ा सके और अपनी सेवाएं जारी रख सके
0: जी।
1: मैं यहां पर आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट

0: पहले से सब जगह के प्लान्स बनाए हैं, नेशनल गाइडलाइंस इशू किए हैं और पॉलिसीज भी हमारी तैयार हैं इस मामले में। और इसके हिसाब से 15th फाइनेंस कमीशन ने एडिक्वेट एलोकेशन भी किया था, अब 16th फाइनेंस कमीशन ने भी इसके बारे में अच्छे से सोचा है। तो हर लिहाज से, चाहे वो संसाधन वित्तीय हो, फिजिकल हो या फिर दूसरे हो, हर तरह से तैयारियां की गई हैं। हमने पहाड़ और कुछ तटीय क्षेत्रों की बात की, इसके अलावा हमारे जो मैदानिक क्षेत्र हैं वहां पर बाढ़ अक्सर हर साल आती है, हर वर्ष होती है, और पर्टिकुलरली हमारे मेट्रोज में जहाँ पर अर्बन फ्लडिंग के बहुत केसेस होते हैं, उनमें भी हमें इस सब व्यवस्थाओं की बहुत जरूरत पड़ती है। हर वर्ष प्रतिवर्ष हम बाढ़ के अलग अलग स्वरूप देते हैं। टिप्पणी ने कोसी नदी की बाढ़ की बात करी जो हमारे क्रॉस बॉर्डर से भी होती है
1: जी।
0: तो इस तरह के कई हमारे सामने इश्यूज आते हैं जहाँ पे हमें क्रॉस बॉर्डर जो आपदाएं जनित होती हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, जिनका दुष्प्रभाव हमारे लोगों पर होता है, हमारे क्षेत्र पर आता है। इसके अलावा भारत की तैयारियों की जब आप बात कर रहे हो और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमारा योगदान जो है वो काफी अच्छा रहा है। भारत की जो हमारी NDRF है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, उन्होंने अलग अलग देशों में आपदाओं में काफी सहयोग किया है। अगर आप 11 मार्च 2011 का जो सुनामी जापान में आया था उसके पश्चात हमारी NDRF वहां गई और उन्होंने काफी जापान में मदद की। तुर्की में जब भूकंप आया 6 फरवरी 2023 में, तो वहां पर भी जाकर हमारी NDRF ने मदद करी। इसके अलावा 25 मार्च 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था उसमें भी हमारी NDRF ने मदद करी। और हमारे जो न सिर्फ आपदा मोचन बल्कि विशेषज्ञ और साथीगण, बट जो हमारे अच्छे विशेषज्ञ हैं वो भी वहां जाकर उनके बाद में रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन और रिसेटलमेंट और रिलोकेशन में मदद करते रहे हैं। तो उन्होंने हर तरह से राहत सामग्री पहुंचाकर और आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए उचित जो मेडिकल व्यवस्थाएं चाहिए, दवाइयां चाहिए, सर्जन चाहिए, ये सब की भी हमने सहायता लोगों को दी है। तो हमारे देश ने इस पूरे क्षेत्र में जो हमारा साउथ एशिया का भाग है या एशियन रीजन है और इवन पैसिफिक रीजन तक में भी अच्छा काम किया है। इसी तरह से हमारे जो और संस्थाएं बनाई है, जैसे इंक्वायर्स है, सुनामी वार्निंग सेंटर नहीं था अब नया बनाया, उसकी भी परफॉर्मेंस काफी इम्प्रूव हुई है। और जहां तक हमारे साइक्लोन की बात हो रही थी, उसे सुपर साइक्लोन का जिक्र किया थी कुछ ने, 29 अक्टूबर 1999 में हुआ था। इसके बाद अब जो रिसेंट में हुए, मैंने खुद बजाय साइक्लोन जो गुजरात में था उसका डॉक्यूमेंटेशन किया, 0 कैजुअल्टी जो हमारा गोल था वो हमने अचीव किया। और इसमें ना सिर्फ जनहानि हमने बचाई बल्कि किसी भी तरह के पशु पक्षी या जानवर इंक्लूडिंग जो वन्य प्राणी है उनको भी सेव किया गया। तो एक अच्छी तरह से हम आपदा पूर्व अपनी तैयारियां कर रहे हैं और उसमें जनहानियों को कम कर पा रहे हैं, परंतु आर्थिक हानियां अभी भी बढ़ रही हैं और चल रही हैं, उसको और कम करने की हमें जरूरत है
1: जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी टिक्कू जी, अक्सर ऐसा होता है कि आकाशवाणी कर्मियों के लिए अलग अलग कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जो कि प्रोग्राम की प्रस्तुति से जुड़ी होती हैं, प्रेजेंटेशन से जुड़ी होती हैं, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कार्यशालाएं भी होती हैं। तो मुझे बताएं कि इस तरह की कार्यशालाओं की क्या भूमिका होती है और ये कैसे हमें मानसिक रूप से तैयार करती हैं आपदा के समय के लिए।
2: एक्चुअली ये भी एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है हमारे पास, जो हमारे NABM है, नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मल्टीमीडिया स्टाइल स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम कहते थे, वहां पर हमेशा से चलता आ रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट। जब भी हम कैलेंडर बना लेते हैं साल का, तो उसमें हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अब तो रीजनल है नहीं, नेशनल दो ही है हमारे पास, भुवनेश्वर एंड दिल्ली में, तो वहां पर मस्ट है एक ही या दो डिजास्टर मैनेजमेंट के कार्यक्रम वर्कशॉप करने ही करने। उसमें सभी, मतलब जितने भी हमारे कार्यक्रम से जुड़े है ऑफिसर्स, उनको बुलाते रहे, वी आर ट्रेनिंग देम, उनको नई नई टेक्निक्स आती है, नए नए ट्रेंड्स है वो, और उसका हमेशा NDMA से हमेशा कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, क्योंकि उनके लोग भी हमारे पास आते हैं, सो दैट एक्सामिनेबल बने रहे, मिलजुल के काम करना, ऐसा हमने किया है और ऐसा ये प्रोसीजर ही हमारे यहाँ, कोई नई बात नहीं है। हाँ, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ये मस्ट है हमारे लिए। और दूसरा कि हमने वी अप्रूव्ड आवर सेल्फ, अगर सुनामी आप देखेंगे वहां पर हमारे एक साथी लोग थे जो नमानी को बात पेयर में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने आप बीती बताई उन्होंने कैसे उस टाइम काम किया।

0: चैलेंजिंग टाइम स्टाफ पे आया ऑल्सो, क्योंकि उनकी भी फैमिलीज वगैरह थी वहां
1: बिल्कुल
0: फंसे थे, वो कैसे मतलब वहां पर उन्होंने इमरजेंसी रेस्क्यू इन्फॉर्मेशन कर दी, हेल्थ बुलेटिन, हेल्थ एडवाइजरीज, मिसिंग पर्सन अनाउंसमेंट भी बहुत बड़ी बात है. आप कहां से कम्युनिकेशन, एवरी कम्युनिकेशन नेटवर्क इज मैप्ड.
1: जी बिल्कुल.
0: फिर क्या है AIR और इंडिया रेडियो में जितने भी हमारे ये हम वी कैन रीच आउट टू देम एंड रिकॉर्ड देयर मैसेजेस एंड ब्रॉडकास्ट देम.
1: मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों का रिस्क रिडक्शन आंकते हैं, ऐसे में क्या विशेष सुविधाएं ऐसी होती हैं जो एक देश दूसरे देश को देता है, और क्या इसकी कोई नियमावली है, क्या उसी के अंतर्गत हम आपदा में किसी दूसरे देश में हम उनकी टेरिटरी में एंटर भी कर रहे हैं, अपने लोगों को भी भेज रहे हैं, सामान भी लेकर जा रहे हैं, राहत सामग्री है और जो ये बचाव कार्य होते हैं, ऐसे में कैसी एजेंसीज आपस में समन्वय करती हैं, क्या इसका नियम है?
2: देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम कार्य करते हैं तो काफी एक पॉलिटिकल जो होता है आपस में जिम्मेदारी के साथ होता है, क्योंकि कभी कभी आपदाओं को अवसर के स्वरूप में कई देश एक दूसरे के प्रति देख सकते हैं, तो अप्रोप्रिएट डिप्लोमेटिक लेवल पे जानकारियां दी जाती हैं, ली जाती हैं और आपस में संबंध स्थापित किए जाते हैं. हमारे यहाँ जैसे भारतवर्ष की तरफ से जब हम करते हैं तो हमारा जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहाँ पे एक रैपिड रिस्पॉन्स सेल है जो इंटरेक्ट करता है और वो आपदाओं के दौरान उनको व्यवस्थाएं भी बताता है, क्या क्या हम संसाधन दे सकते हैं, किस तरह के लोग जा सकते हैं, और वो उनका नियंत्रित तौर पर सही तरीके से वहाँ पे पहुंचाया जाता है और उनके भी सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी देखी जाती है. इसके अलावा जो हम कार्य करते हैं वो होता है क्षमता वर्धन का, जो मानवीय क्षमता वर्धन हम आपदाओं के प्रति कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, हमने अफ्रीकन कंट्रीज के लिए IFS प्रोग्राम के तहत कराए हैं, ऐसी SAR कंट्रीज के लिए SAR डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर चालू किया था, हमारे 8 कंट्रीज के लिए SAR के काफी हमारे देश ने प्रयास किए गए हैं. और इसी तरह से दूसरे कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो जैसे नेपाल में काफी सहयोग हमारे देश ने किया है नेपाल के साथ आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात भी, अभी रिकंस्ट्रक्शन में, रिहेबिलिटेशन में तकनीकी जानकारियां भी देकर. तो इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो इंटर इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो एक संस्था दूसरे के साथ पहले से सहयोग की MOU साइन करके आगे चलती है, और दूसरा इसमें हमारे विदेश मंत्रालय की एक अहम भूमिका रहती है और उनके सहयोग से ही और उनके लीडरशिप में ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं.
0: जी हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशंस के 17 SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें वन ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज में भी है, उसमें इट्स अवर बाउंड एंड ड्यूटी टू हेल्प ईच अदर, कंट्री दूसरी कंट्री को करना ही करना, यूनाइटेड नेशंस का ये भी एक वन ऑफ द गोल्स है, 17 SDGs एक है ये भी है.
1: दिस इज हाउ वी लर्न फ्रॉम ईच अदर,
0: सहयोग करना ही करना है.
1: जी
2: तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे तिकोरी ने बोला, एक हमारा आपदा प्रबंधन का भी संडे फ्रेमवर्क को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है. एक्चुअली 2015 में 14 से 18 मार्च में ये थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जापान में संडई में ही, और वहां पर ये एस्टेब्लिश किया गया था कि हमको कोलैबोरेशन की जरूरत है और आउटरीच की भी जरूरत है, तो ये सब कैपेबिलिटीज टूरिस्ट क्षमता से बाहर होती है आपने तो इंटरनेशनल सहयोग से होती है.
1: जी
2: तो 7 टारगेट्स और 4 प्रायोरिटी एक्शन उसमें डिसाइड किए गए थे, ऐसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है पेरिस में 21st कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज हुआ था, जो उस समय में डिसाइड किया गया था कि तीनों चीजें क्योंकि इंटीग्रेटेड है, मेन स्ट्रीम्ड है, और उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इंटीग्रेट किया था 2016 नवंबर में जो फर्स्ट पोस्ट संडे एशिया मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो 10-point एजेंडा दिया था तो किस तरह से हम कर सकते, तो ये सारे भी एक इंटरनेशनल
1: रोड मैप देते हैं. जी मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, हम एजेंसीज लेवल की बात कर रहे हैं, अब हम आम लोगों की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर हम अपने देश को देखें तो भारतीय लोग आपदा के लिए पहले से कितने तैयार रहते हैं, कितने सतर्क रहते हैं, पब्लिक ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होते हैं वो कितनी मदद कर सकते हैं ऐसे में, क्योंकि बहुत सारा नुकसान कई बार हम इसलिए भी कर बैठते हैं अपना क्योंकि सही जानकारी नहीं होती, सुविधा तो है.
2: आपने बहुत सही बात बोली, सबसे पहला हमारा जो टारगेट है
1: जी
2: वो है जन समुदाय. जब तक हम समुदाय इसमें सहयोग नहीं करेगा और समझेगा नहीं या पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते
1: जी।
2: पहले क्या होता था जब इवैक्यूएशन के लिए जाते थे तो लोग बड़े रेजिस्टेंट होते थे, क्यों खाली कर रहे हैं, मेरे ये घर में चोरी हो जाएगी या ये है या मेरे पशु रह गए हैं उनको लेकर जाना है। परंतु अब जन जागरूकता बढ़ी है
1: जी,
2: प्रशिक्षण और अवेयरनेस के अलग अलग प्रयासों से आउटरीच के जरिए मीडिया के मदद के साथ जन समुदाय में ये जागरूकता और तैयारी का एक संबंध बैठा है और अब लोग आपदा पूर्व जब चेतावनी मिलती है
1: जी
2: तो खुद से भी कुछ लोग अपने जगह को इवैक्यूएट करते हैं और प्रयास करते हैं कि दूसरे भी जो उसमें जोखिम में है वो भी अपनी जगहों को खाली करके वो खतरे की जगह है सुरक्षित स्थानों पर चले जाए या सुरक्षित
1: जी
2: निवासों में रहे। तो इस तरह के प्रयास अभी काफी ज्यादा स्तर पर हुए हैं, जैसा मैंने बोला अलग अलग जब चक्रवात आते हैं बड़े बड़े आए हैं तो इवैक्यूएशन किए गए हैं और कई लाखों की संख्या में ये इवैक्यूएशन हुए और लोगों ने ये काम बड़े सहयोग के साथ पूरा किया। तो ये एक बड़ी बात है कि हम लोगों को समझा पा रहे हैं और लोग भी हमारा सहयोग कर पा रहे हैं और उससे हम आपदा को नियमित करने में और नियंत्रित करने में और न्यूनीकरण करने में सक्षम और सफल हो पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने कोविड में देखा होगा, जब हमने लॉकडाउन किया और लोगों को कहा कि आप घरों में रहें
1: जी,
2: तो उस समय लोगों ने उसका पूर्ण साथ दिया हमारा सरकार का, हमारा जो सिस्टम और जो हमारी सोसाइटी है सबने एक साथ मिलके इस पर नियंत्रण पाया। तो बिना इसके ये संभव नहीं है, समुदाय जन जागरूकता तैयारी और सहयोग समाज पूर्ण और सबके साथ मिलकर जुड़ के करना बहुत जरूरी है, तभी हम आपदाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं या उनका न्यूनीकरण कर सकते हैं
1: जी। राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी, आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भी और अगर हम समाचार बुलेटिन की बात करें तो उनमें भी मौसम की जानकारी जो है वो एक अभिन्न हिस्सा होती है। ये छोटा सा सेगमेंट जो है बताएं कि कैसे कुछ समुदायों के लिए बहुत बड़ी उनको कहेंगे कि मदद होती है उनकी इसके माध्यम से, कैसे ये जोखिम को कम करता है।
0: ये बहुत ट्रेडिशनल रहा है कि हमारे पास किसी भी बुलेटिन में मौसम की जानकारी होती ही निरंतर चलती है हमेशा, क्योंकि एक मौसम की जानकारी मिले लोगों को क्योंकि एक ही माध्यम था, तो इंटरनेट वगैरह है लोगों के पास ऐसा, लेकिन तब भी दोस्त हमारे श्रोता जो मतलब और इसी पे डिपेंड करते हैं उनके पास हमारे के बहुत ही आसान तरीका था जुड़ने का। और एक हमारे आकाशवाणी केंद्र और आकाशवाणी के महानिदेशालय के जितने भी हमारे विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आर्मड फोर्सेज, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक के साथ हमारा हमेशा जुड़ाव रहा है
1: जी।
0: और वो लोग भी हमारे यहाँ प्रेस नोट्स अपने जितने भी कम्युनिकेशंस वगैरह है सबसे पहले आकाशवाणी जो भी नियरेस्ट आकाशवाणी केंद्र है उनको भेजते हैं फॉर डिसिमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक। ये भी एक पार्ट
1: ऑफ कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग या वहाँ काम करने वाले लोगों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
0: बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ पर एक जो संदेश पहले ही जाता है वार्निंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो तो आकाशवाणी से ही जाता था
1: जी,
0: वो तो अभी भी जा रहा है। असल में एक मैं एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर हमारे पास इस वक्त ये जो है सेंट्रल वाटर कमीशन ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है इट हैज बीन सस्पेंडेड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, हम जम्मू केंद्र से देते थे इन्फॉर्मेशन सेंट्रल वाटर कमीशन के फ्लो ऑफ रिवर चनाब अक्रॉस द बॉर्डर
1: जी, यानी कब उसमें ज्यादा पानी रहेगा,
0: कब कितना है, बढ़ने की आशंका है या कम होने की, वो पूरा हम देते थे इन्फॉर्मेशन,
1: जनहानि ना
0: जी जी किसी की भी जनहानि ना, ये हमारा पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी
1: जी।
0: दैट्स व्हाई आकाशवाणी की क्रेडिबिलिटी तो अनमैच्ड है
1: जी,
0: सिंस 90 साल हमारा है और बराबर 90 साल ही चलता आ रहा है
1: जी,
0: अभी भी ऐसे ही चलता है।
1: यानी जब से हम आकाशवाणी की परिकल्पना करें कि हमने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की या कुछ मॉडल्स ऑपरेंडी बनाया, तब से जनहित के जो कार्य है, जन सूचना है, वो इसका अभिन्न हिस्सा रही है और हम ये ध्यान रखते रहे हैं कि किस प्रकार के कार्यक्रमों से हम अलग अलग समुदायों तक सही जानकारी पहुंचाएं।
0: पैनिक मेजर्स भी हमारे यहाँ यहाँ, और फिर आपका ये जो पैनिक रिएक्शंस होते हैं या फिर रूमर, उसमें भी ड्यूरिंग दैट एनी नेशनल इमरजेंसी हमारा दायित्व है और हम करते रहते हैं लोगों तक सही और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे
1: जी। यानी जब कहीं भी कोई आपदा आती है और सब कुछ रुक जाता है। आपके संचार के साधन नहीं मिल पाते, आपस में हम लोग आपस में नहीं मिल पाते हैं, जब आपके करीबी लोग नहीं पहुंच पाते, उस समय जो सबसे जरूरी चीज होती है सही सूचना और मदद के लिए जो आवश्यक नंबर है, जो

0: वेबसाइट्स हैं, जो अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियां हैं या उनके द्वारा जारी जो सूचनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाना, ये भी अपने आप में आपदा को बहुत स्तर तक नियंत्रित करता है, आपदा से होने वाले नुकसान को रोक सकता है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से निभाई है आकाशवाणी ने। अदृश्य तरंगे जो हमें दिखाई नहीं देती उनका प्रभाव बहुत गहरे तक होता है हमारे जीवन में और कठिन समय में तो ये प्रभाव बढ़ जाता है। आपदा में आकाशवाणी का महत्व हमेशा था, है और आगे भी रहेगा। हम ये कामना करते हैं कि आपदाएं ना आए, उनका सामना लोगों को ना करना पड़े, लेकिन साथ ही ये तैयारी भी कि हमारे श्रोता हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। तो एक बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है हमारा बना हमारे दो गेस्ट की वजह से, आपने हमें जरूरी जानकारी दी। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से हमें मिली।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सुअवसर मुझे देने के लिए और लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए।
0: जी राजेश तिक्कू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी की कार्यप्रणाली समझते हैं हमारे श्रोता, लेकिन आज आपके माध्यम से और अच्छे से पता चला कि कैसे हम आपदा से भी एक कदम आगे रहते हैं और अपने श्रोताओं के बारे में सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: अभी आप आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारा विशेष कार्यक्रम अदृश्य तरंगे दृश्य प्रभाव आपदा में आकाशवाणी का महत्व सुन रहे थे, जो केंद्रित था आपदाओं के समय आकाशवाणी द्वारा दी गई जानकारी, चेतावनी और मार्गदर्शन पर। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ थे डॉक्टर सूर्य प्रकाश, फाउंडर चेयरपर्सन कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट सोसाइटी, आर के तिक्कू वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग विशाल कुमार का था, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान और तुषार पाराशर, संयोजक प्रमोद कुमार।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अब फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है दिल्ली का ठग और गायक कलाकार हैं आशा भोसले और किशोर कुमार। संगीत से सवारा है रवि ने, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं गीत मालिका फिल्म संगीत चेतन कुमार शर्मा के साथ। कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण को, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं गीतमाल का फिल्म संगीत चेतन कुमार शर्मा के साथ, और कार्यक्रम के अंतिम गीत के रूप में आइए सुनते हैं फिल्म मोहब्बतें का यह गीत, बहुत ही खूबसूरत, जिसके बोल हैं हमको हमी से छुड़ा लो। ये जो गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण, गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत से संवारा है जतिन ललित ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत मालिका फिल्म संगीत चेतन के साथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा।

0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
1: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

लोन है, बंदूक कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीटॉक के टॉप नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-draw.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है।

0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जन से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं, इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
4: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
2: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
5: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घंघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज

0: बारिश हुई, लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Keralam, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Gangas and Vishwanath Suresh enter into top 3. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
2: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining, animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector and pharmaceuticals, to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
1: During the conversation, the leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. Both sides reaffirmed their commitment to deepening the bilateral partnership and advancing the interests of the Global South. Union Home Minister Amit Shah today said the Narendra Modi government entered the era of violence in the Northeast and transformed the region from a hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council or NEC, Mr. Shah in a social media post said today that NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture. In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as

आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:17 हो चुके हैं और अब उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। आप हमारी नशरियात समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए और DD फ्री डिश पर। पेश है आज की इस तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे 9:20 पर गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार, जिसके तहत आज आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज में गैर फिल्मी गजलें। रात 9:45 पर खबरें नशर होंगी और रात 9:55 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स के तहत लू से बचने के तरीकों के हवाले से कुछ जरूरी बातें। रात 10 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम हरफे सुखन और 10:30 पर नशर होगा फरमाइशी फिल्मी नखमों का प्रोग्राम तामील इरशाद। रात 11:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम बज़्मे मौसिकी से पहले रात 11 बजे खबरें बर्रे सगीर से प्रोग्राम तामील इरशाद के दौरान ही नशर होंगी और उसके बाद आप सुनेंगे बज़्मे मौसिकी के तहत पंडित वसन देश पांडे की आवाज में राग जन सम्मोहिनी में ख्याल, यानी 11:45 पर। रात 12 बजे आलमी खबरें नशर होंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे इंस्ट्रूमेंटल मौसिकी के प्रोग्राम के तहत पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया हुआ रागनाथ भैरवी और पहाड़ी धुन। रात 12:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आखिर शब के तहत फिल्मी नगमे और 12:50 पर खबरें नशर होंगी।

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि योगा भारत की जानिब से इंसानियत को एक ऐसा तोहफा है जिस पर वक्त की गर्द नहीं जमी। अहमदाबाद के एका अरीना में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड योग आसन स्पोर्ट चैंपियनशिप के इफ्तिताही इजलास में वर्चुअल तौर पर शिरकत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि योगा जहन, जिस्म और रूह को मुत्तहिद करता है और एक ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा यकजहती पर मबनी दुनिया की तरकीब देता है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस एतमाद का इजहार किया कि अव्वलीन आलमी योगा चैंपियनशिप योग आसन को एक आलमी खेल कूद की शनाख्त अदा करेगी और नौजवानों के लिए एक वसी तर मौके फराहम करेगी। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि हर बड़ा खेल अपने साथ अपना जामे निजाम लेकर आता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कार्रवाई जाति कारकर्दगी को मुस्तहकम करने की गरज से फील्ड कमोडोर्स के लिए मालियाती हद में दोगुना इजाफे को आज मंजूरी दे दी। उन्होंने तिब्बी और दिगर प्रोजेक्टों समेत दिफाई सर्विसेज के लिए मालियाती इख्तियारात की नजरसानीशुदा तफवीज भी जारी की। भारत दिफा ने कहा कि मालियाती इख्तियारात की नजरसानीशुदा तफवीज इस साल की बजट जाति मुख्तस रकम के मुताबिक महसूलात के जरिए 1,25,000 करोड़ रूपये से ज्यादा की खरीद की राह हमवार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में मसनू जहानत के इस्तेमाल के मुतालिक जवाबित का एक मसौदा जारी किया है जिसमें उसने वाजे कर दिया है कि कोई भी अदालती फैसला मुकम्मल तौर पर एआई पर मबनी तजजियात या एल्गोरिज्म पर मबनी फैसला साजी पर मबनी नहीं हो सकता। इस सिलसिले में आवाम से इस माह की 20 तारीख तक उनके मशवरे तलब किए गए हैं। यह मसौदा एआई के ताउन से अमल में आने वाले कई मामलों की इजाजत देता है जैसे केस का मैनेजमेंट, समाअत की तारीख, वजूहात की फहरिस्तों की तैयारी, कानूनी तहकीक, दस्तावेजात की खुलासा साजी, तर्जमा और रस्म अल-खत की मुंतकली। अलबत्ता इसमें यह भी कहा गया है कि अदालती निजाम से मुतालिक तमाम मामलात इंसानी अदालती कंट्रोल में ही रहेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और सड़क आमदो रफ्त और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मारुति सुजुकी की जानिब से तैयार भारत की पहली फ्लेक्स ईंधन से चलने वाली मुसाफिर गाड़ी का इफ्तिताह किया। फ्लेक्स ईंधन से चलने वाली गाड़ियां इथेनॉल और पेट्रोल मिलाकर बने ईंधन से E20 से लेकर E100 की रेंज तक चल सकती हैं। इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मुसाफिर गाड़ी के जुमरे में फ्लेक्स ईंधन टेक्नोलॉजी की शमूलियत महज किसी प्रोडक्ट का इफ्तिताह नहीं है बल्कि यह मुल्क में तवानाई की कायापलट के सिलसिले में एक नए बाब का आगाज है। जनाब पुरी ने कहा कि फ्लेक्स ईंधन टेक्नोलॉजी को वसी पैमाने पर इख्तियार करके इथेनॉल पर मबनी नकल व हरकत के असरात को खातिर खा हद तक बढ़ाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने इस फिजा को एक यादगार और पेशबीनी पर मबनी हसूलियाबी करार दिया। वजीर मौसूफ ने इस बात का जिक्र किया कि यह संग मील वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साफ पायदार और खुद कफील नकल व हरकत के तस्वर से कतई मेल खाता है। अमरीका के अबारे नुमाइंदगान ने एक करारदाद पास की है जिसमें सर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई करने से रोकने को कहा गया है। यह करारदाद जंग को मुस्तरद करने के कामयाब मुजाहरे में चार रिपब्लिकन अराकीन के डेमोक्रेट्स के साथ शामिल होने के बाद 208 के मुकाबले 215 वोटों से कामयाब रही। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने चेहरे की शनाख्त के जरिए तस्दीक का एक निजाम वजह किया है ताकि इम्तहान के अमल की सालमियत को बेहतर बनाया जा सके और असल की जगह फर्जी फर्द के जरिए इम्तहान देने की रोकथाम की जा सके। कमीशन ने हाल ही में मुनक़दा सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इब्तदाई इम्तहान 2026 के दौरान कामयाबी के साथ चेहरे की शनाख्त के जरिए तस्दीक के अमल को नाफिज किया। चेहरे की तस्दीक का प्रोटोकॉल इस बात को यकीनी बनाता है कि दरख्वास्त फॉर्म पूर्ण करने के वक्त उम्मीदवार का जो फोटो अपलोड किया गया था वो उम्मीदवार वही है जो इम्तहान देने के लिए एडमिट कार्ड के साथ इम्तहान देने पहुंचा है। एक भारतीय नजाद दिल के अमराज के माहिर सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए घाना से भारत में तवील फासले की रोबोटिक टेली सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम देकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। जब मगरबी मानसून आज केरलम पहुंच गया है, भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 7 दिन के दौरान केरलम और कर्नाटक में ज्यादा और बहुत ज्यादा बारिश और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। कल माह पुडुचेरी और कराईकल में बहुत और बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। भारत ने मुक्केबाजी की हालिया आलमी दर्जेबंदी

0: में अपनी मजबूत पोजीशन बरकरार रखी है। खवातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में जैस्मीन लंबोरिया आलमी नंबर 1 पर पहुंच गई हैं, जबकि एशियाई चैंपियंस प्रिया चंघास 60 किलोग्राम और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम के अपने अपने जुमरे में टॉप 3 में पहुंच गए हैं। आखिर में खास खबरें एक बार और। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। निजी तवानाई, तजारत और सेहत की देखभाल के शोबों में ताउन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शिमाल मशरकी रियासतों के उदाय आला को हिदायत दी है को नई नस्लों के लिए AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉक चेन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम हेल्थ टिप्स। आइए हेल्थ टिप्स में सुनते हैं लू से बचने के तरीके डॉक्टर AK वार्ष्णेय से।
2: जो सुबह जब ठंडे का समय होता है, जब सुबह अपना समय जल्दी शुरू कर सकते हैं 5-6 बजे और 10 बजे तक 11 बजे तक जब तक लू नहीं चलती उस समय तक काम कर लें, फिर 11-12 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक जब वो बहुत ज्यादा गर्मी होती है उसमें अवॉइड करेंगे। आउटडोर डायरेक्ट एक्सपोजर जो है सन का एक्सपोजर उससे बचें, कहीं छाया वगैरह में रहें और शाम को काम कर लें। दूसरे हाइड्रेशन जरूरी है, क्योंकि जब हम बाहर धूप में निकलते हैं तो शरीर हमारा देखिए 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फारेनहाइट पे ही सबसे सही तरीके से काम कर सकता है। जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है और उसको घटाने के लिए वो उसके पास मैकेनिज्म होता है पसीना आना, तो वो पसीना लाना शुरू कर देता है जिससे कि टेम्परेचर हमारा शरीर का कम होता है। लेकिन इस पसीने के साथ हमारे पानी और नमक दोनों की हमारी कमी हो जाती है अगर हम उसको लगातार रिप्लेसमेंट ना करते रहे। लगातार पानी या नमक वाली चीजें जैसे छाछ है, दही की लस्सी है, नींबू पानी है और आपका आम पन्ना है, इस तरीके की चीजें जो अगर हम लगातार पीते रहे और पानी की हाइड्रेशन की कमी ना हो तो हम लू के प्रभाव से बच सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या होता है कि वो पानी से या नमक से रिप्लेस नहीं कर सकते तो उससे उनका जो शरीर में पानी की कमी होने से जो ब्रेन का सिस्टम होता है जहां पर टेम्परेचर कंट्रोल वो लॉकडाउन हो जाता है, वो खराब हो जाता है और एक बार वो खराब हो गया तो पसीना आना बंद हो जाता है और फिर टेम्परेचर शरीर का लगातार बढ़ता चला जाता है 105, 106, 107 डिग्री भी पहुंच सकता है। उस समय जो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, नाक से खून बह सकता है, बेहोश हो सकते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, हमारी किडनी फेल हो सकती है और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होते हैं जो कि बहुत ही भयावह स्थिति है। तो ये तो यही होता है कि हम डायरेक्ट उससे बचे, सीधे सनम से बचे। अगर हमें कहीं बाहर जाना भी है तो सिर पे तौलिया वगैरह गमछा वगैरह गांव में होते हैं वो लगे, लगातार थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डालते रहें, पानी पीते रहें, छाते वगैरह का इस्तेमाल कर लें जिससे कि सीधा जो है सनलाइट आपके ना पड़े, जहां तक पॉसिबल हो ठंडी जगह पे बैठें और हमेशा लिक्विड्स का जैसे हमने बताया जलजीरा है कोई भी चीज है इनका लगातार सेवन कर। और कैसे हमें पता लगेगा कि हमारे शरीर में पानी की, एक तो देखिए शरीर हमारे भगवान ने ऐसा बनाया कि हमें सिग्नल अपने आप मिलते हैं। अच्छा, अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगनी शुरू हो जाती है जो अपने आप में एक इंडिकेशन होता है, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरे ये होता है कि किडनी जो है हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो कि वाटर को बचाती है बाहर से, तो हमारे को पेशाब आना बंद हो जाता है, यूरिन आना बंद हो जाता है। अगर आपका यूरिन कंसेंट्रेटेड होने लगा, बहुत डार्क येलो कलर का या बहुत कम आने लगा तो इसके मतलब पानी की बहुत कमी है हाइड्रेशन की, तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। आपको लगातार यूरिन आते रहना चाहिए जो कि हल्का येलो या व्हाइट कलर का होना चाहिए, तो ये हाइड्रेशन का तरीका है। दूसरे एल्कोहल वगैरह ना पिए, कई बार लोग जो है शराब वगैरह का सेवन भी करते हैं या तो वो एक खतरनाक है, जैसे बियर का सेवन करते हैं ये करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो डायबिटिक का काम करते हैं, हमारे शरीर से फालतू पानी को और बाहर निकाल देते हैं तो डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है, तो वो चीज ना करें। उसकी जगह जैसे मैंने बताया कि छाछ है, लस्सी है, नाम पन्ना है, इस तरीके के पेय पदार्थ, नारियल पानी है, इस तरीके के पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। तो अगर हम ये सब कोई अगर मान लीजिए आप दवाइयां ले रहे हैं कोई ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, या तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। कौन उन दवाइयों को समय के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। कई बार हम ब्लड प्रेशर के लिए ऐसी दवाइयां देते हैं जो हमारे शरीर से यूरिन को बाहर निकालते हैं, जिन्हें हम डायरोटिक्स दवाइयां बोलते हैं। अगर जब हम ऐसी जगह जाते हैं गर्मी में तो उनको हमें कम करना पड़ता है, क्योंकि

0: डिहाइड्रेशन और ज्यादा बढ़ने की समस्या हो जाती है। तो अगर ये सब चीजें हम सावधानी रखेंगे तो हमारे के जो लू से हम बच सकेंगे या उसके दुष्प्रभाव कम हो सके। जैसे घर में आप चीनी ज्यादातर लोग उपलब्ध होता है, गुड़ भी उपलब्ध होता है, नमक उपलब्ध होता है, आप सिर्फ साफ पानी लीजिए एक गिलास, उसमें आप अपना एक चम्मच चीनी डालिए और उसमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल लीजिए, वही हाइड्रेशन का बढ़िया काम करता है। एक लीटर पानी अगर हम लें तो एक लीटर पानी में जिसको हम ओआरएस का घोल कर जो कि हम दस्तों में भी देते हैं, तो एक लीटर साफ पानी में अगर हमें घर पे ओआरएस घोल कर तो एक लीटर साफ पानी में अगर ग्लूकोज है तो चार चम्मच ग्लूकोज, नहीं तो चार चम्मच चीनी मिला लें, आधी चम्मच नमक मिला लें, चौथाई चम्मच खाने का सोडा मिला लें और अगर नींबू वगैरह है तो वो निचोड़ लें। ये हमारा ओआरएस का घोल बन गया और इसको बस पीते रहिए तो सारे शरीर के जितने इलेक्ट्रोलाइट वाटर की सारी कमी पूरी हो जाए।
1: सुनिए अभी आप सुन रहे थे लू से कैसे बचाव करें के हवाले से कुछ जरूरी बातें। इसी के साथ प्रोग्राम हेल्थ टिप्स अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम हरफे सुखन, आइए समाप्त करते हैं।
2: गालिब ने अपने ताल्लुक से कहा था, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और। जिससे मुराद ये थी कि वो अपने मुआसरीन और मुतकदमीन से मुख्तलिफ अंदाज में शेर कह रहे हैं। वाकया ये है कि गालिब के सोचने और शेर कहने का अंदाज अपने अहद के मुरवजा शेरी आदाब रसूल से इस कदर मुख्तलिफ था कि इब्तदा में उनके कलाम को मुहम्मल कहा गया और मुतरिजीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अपना कहा हुआ खुद समझे। वजह सिर्फ ये थी कि हम असर शुरा के मुकाबले में गालिब का मुशाहिदा तेज, उनका इदराक हमागीर और उनकी निगाह दूरस थी। जब वो अपने पेंशन के सिलसिले में कलकत्ता पहुंचे और वहां अंग्रेजों की आमद से पैदा होने वाली सनअती तरक्की और तहजीबी जिंदगी का मुशाहिदा किया तो उनके जहन की बहुत सी खिड़कियां खुल गईं। चुनाचे न सिर्फ ये कि उनके कलाम में बल्कि नसर बिलखसूस खतूत में भी उस सनअती जिंदगी और बदलती तहजीबी जिंदगी का अक्स नजर आता है। चुनाचे गालिब ने अपने मुआसिर शोरा से मुख्तलिफ अंदाज में शेर कहे। गालिब फलसफी न थे मगर गौर फिक्र करने वाला जहन रखते थे। इस फलसफियाना जहन के बाईस उन्होंने गजल का मिजाज बदला और गजल में जज्बाए एहसास के साथ एक खास जाविया नजर और नए तर्ज फिक्र शामिल किया। यूं भी गालिब की तबीयत तनवो पसंद थी, आम रविश पर चलना उन्हें पसंद न था। जो शख्स आम बबा में मरना न चाहे और आम डगर से हटकर जीना चाहे तो उसकी तख्लीकात में भी जिद्दत और नुदरत होगी। इसीलिए गालिब ने शायरी को काफिया पैमाई के बजाय माना आफरीनी करार दिया। उनके गजलों में हुस्न इश्क की बातें और तसव्वुफ के मसाइल रवायती गजल की पासदारी की बिना पर नहीं बल्कि उन कैफियात में गालिब का अपना अंदाज बयान है। गालिब की जेर तबसरा गजल के अशार गजल के रवायती अशार नजर आते हैं, लेकिन गौर करने पर मालूम होता है कि इन फरसूदा मजामीन में भी गालिब ने नई रूह फूंकी है। इश्क में आशिक का मर जाना और महबूब का इम्तहान लेना उर्दू फारसी शायरी का अहम मौजू है, लेकिन इस उमूमियत में भी गालिब ने खसूसियत से काम लिया है। वो कहते हैं कि आशिक की जान देने पर भी अगर महबूब मुतमईन न हो तो फिर मरने के बाद मजीद इम्तहान लेकर आशिक को आजमा ले, वो महबूब के हर इम्तहान में पूरा उतरेगा, किसी बात पर ना नहीं कहेगा। दूसरे शेर में गालिब ने महबूब के दीदार न होने और मुलाकात की हसरत के मौजू को मुनफरद अंदाज में बयान किया है। तो कहते हैं कि अगर महबूब के दीदार न हुए और शौक गुलिस्ता तसल्ली का गुलची नहीं बना तो क्या गम है, हसरत दीदार का कांटा तो दिल में खटक रहा है। एक सच्चे आशिक के लिए हसरत दीदार का रंज गम ही काफी है। इश्क की नाकामी और आशिक की आहों और नालों की नरसाई उर्दू शायरी का पामाल मौजू है, मगर गालिब ने इस पामाल मौजू को भी अपने अंदाजे बयान से नया मजमून बना दिया है। वो कहते हैं कि अगर आशिक की आहें लैला के सियाह खाने तक न पहुंच सकी, यानी उन आहों से लैला का घर रोशन हुआ तो फिर क्या मजाल, अगर उसकी आहें सहरा के लिए चश्मो चराग का काम कर रही हैं, यानी सहरा इन आहों की बदौलत मुनव्वर है। यहाँ मजनू की सहरा वर्दी और लैला की अपने घर में असीरी को गालिब ने इस तरह बयान किया है कि शेर कहीं से कहीं पहुंच गया। गालिब इसके बाद दूसरे शेर में कहते हैं कि हमें तो हर घड़ी घर में रौनक चाहिए, ये रौनक नगमाए शादी की बदौलत हो या फिर नोहाए गम से, हमें तो घर की रौनक से मतलब है। अगले शेर में गालिब ने अपने मोतरजीन पर तंज किया है, कहते हैं شعر کہتا ہوں تو اس کی داد اور سلے کی خواہش نہیں. اگر میرے اشعار میں آپ کو معنی نظر نہیں آتے تو نہ آئیں. میں لوگوں کی داد تعریف اور انعام کی آرزو میں شعر نہیں کہتا. مکتب غالب کہہ رہے ہیں کہ عشق کے صدمات سے عمر طبعی تک پہنچنے سے پہلے مر گئے، مگر یہ کیا کم ہے کہ عمر جتنی بھی گزری وہ حسینوں کی صحبت میں گزری. گویا محبوب کے ساتھ گزرا ہوا ایک لمحہ بھی غنیمت ہے، اسی لمحے کو غنیمت جانو. لیجیے سماعت فرمائیے غالب کی غزل ایرانی گم کی آواز میں.

नजर मिला के मेरे पास आके लूट लिया, नजर हटी थी कि फिर मुस्कुरा के लूट लिया। 20वीं सदी में उर्दू गजल की रवायत की तौसी और तजदीद में जिन शोरा ने कोशिश की उनमें एक नाम जिगर मुरादाबादी का भी है। गर जिगर को मस्ती और इंडे का शायर समझा जाता था, मगर जिगर ने अपने कलाम से साबित कर दिया कि वह रिंदे मस्त और उबाली ही नहीं, उनकी नजर हालात हाजरा पर भी है और वो अपने दौर के सियासी और समाजी मसाइल से भी वाकिफ हैं। उनके कलाम में अगर एक तरफ उसने इश्क के रवायती एहसास हैं तो दूसरी तरफ असरी हिस्सियत और अहले हाजिर की सफाकी भी पाई जाती है। वो रवायती अशार के साथ साथ ऐसे शेर कहने पर भी कादिर हैं। मसलन जमहूरियत का नाम है जमहूरियत कहाँ, पस्ताइयत हकीकत उड़ियाँ हैं आजकल, जेले खिरद ने दिन ये दिखाए, घट गए इंसान बढ़ गए साए। जिगर की गजल में इसकी कैफियत हुस्न के सरापे के साथ साथ जिंदगी के दूसरे मसाइल भी हैं। इस तरह उनकी गजल में रवायती शायरी के साथ साथ तरक्की पसंदी भी है, उन्हें महज रंगे लाउबाली नहीं कहा जा सकता। जिगर की शायरी के मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने अंदाज बयान के मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किए हैं और हर जगह उनकी बेसाख्तगी सादगी और वालहानापन से मामूर शेरियत से भरपूर आहंग एक नया आलम पैदा कर देता है। शेरियत और मौसीकी जिगर की शख्सियत बुज मालूम होती है, इसलिए प्रोफेसर मोहम्मद हसन कहते हैं कि जिगर किसी जाती एहतमाम या दरोबस्त के बगैर शेर की अंदरूनी मौसीकी कायम रखते हैं। लफ्जों के इंतखाब, उनके मानों के रब, उनकी झनकार और सौती तासीर, उनकी नजर इस कदर गहरी है कि गोया मौजू तरीन अल्फाज बिला किसी काविश के उनके कलम से निकलते हैं। जिगर की यह गजल जो आप समाज फरमाएंगे गजल मुसलसल है। इस गजल में जिगर ने महबूब के दिल लूटने की अदा को तरह तरह से बयान किया है। गजल के बेशतर अशार इसी कैफियत के हामिल हैं। इसी गजल का एक शेर है जिसमें जिगर ने कहा है कि महबूब ने इस तरह मेरा दिल लूटा कि खुद मुझको भी खबर नहीं हुई, गोया किसी ने मुझसे भी मुझको छुपा के लूट लिया। इस गजल में जिगर ने दाग के रंग में शेर कहा है। वो कहते हैं, बड़े वो आए दिलो जहाँ के लूटने वाले, नजर से छेड़ दिया गुदगुदा के लूट लिया। क्योंकि गजल की रदीफ के लूट लिया है, इसलिए शायर ने महबूब के लूटने के अंदाज के मुख्तलिफ जाविये और अंदाज को शेरी जामा पहनाया है। समाज फरमाइए पीनाज मसानी की आवाज में जिगर की यह गजल।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 10:30 हो चुके हैं। पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामील इरशाद। सामीन की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। आप अपनी फरमाइशी हमें लिखकर भेज सकते हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए उर्दू सर्विस ESD@gmail.com के जरिए। और साथ ही हाजिर है आपके लिए एक जरूरी ऐलान। कल यानी 5 जून को दिन में 11:30 पर नशर होगा आलमी योम माहौलियात के हवाले से। आलमी योम माहौलियात यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के मौके पर एक खसूसी प्रोग्राम जिसके मुतालिक हम आपकी राय के होंगे मुंतजर। अपनी राय आप हमें लिखकर जरूर भेजें उर्दू सर्विस ESD@gmail.com के जरिए। मेरे सामीन हाजिर इस प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सबकी पसंद आप सबकी नजर।

और जिसको सुनना चाहता, संजय चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया ने, और ये नगमा आपने सुना था जिसकी तर्ज बनाई थी योगेश ने, बोल लिखे थे और तर्ज बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। और सुनना चाहा था कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे वेद मेधा, अलका मेधा हनुमानगढ़ राजस्थान से। और सुनना चाहा था मुरादाबाद दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप और सोनू सुरेश ने। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे वेरन येले, नवदीप येले, मधुकर येले, सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से। राशिद हुसैन अंसारी, आसर अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी ने सुनना चाहा था कुरावली से। और रुबीना वसीम, बेशम बेगम, इशरत अकरम और अकरम हुसैन सुनने के ख्वाहिशमंद है नाद मंजोल महसूल सीतामढ़ी से। और धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिपा, पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से सुनने के ख्वाहिशमंद है। और वैशाली, शैलेश गोहानकर, सुमित गोहानकर, कुमारी ध्वनि गोहानकर नागपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। और सुनो चाहे इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसको इम्तियाज इमाम आतिश, अतायरा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा ने। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मोटाला महाराष्ट्र से विजय सोरलकर, रतमा सोरलकर और आराध्या सोरलकर। गिरडी झारखंड से सुनना चाहते हैं मोहम्मद यासिर अंजान, सैवा नवाज, हसन नवाज। और सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाहना हसन, नाजिया सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं गांव नथाना पंजाब से राजेंद्र सिंह छिंदा, जसवीर सिंह जस्सी, सीता और गीता और राधेश्याम शर्मा, इंद्र शर्मा सिरसा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। शिव मंदिर मऊ से बन्नू स्वर्णकर, पिंकी स्वर्णकर, आर्यन सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल और साहिल भारती बघेल छत्तीसगढ़ से। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सादेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेधा कुमार दामोदर महाराष्ट्र से। शोभन डायडे, वसंतराव भोजने, पी एस नोहनकर महाराष्ट्र सुनना चाहते हैं। और अनंत भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत मस्तानपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। गजुंडवारा से शमसुल कबर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान सुनना चाहते हैं। और वैशाली, शीरेश गोहनकर सुनने के ख्वाहिशमंद हैं नागपुर से। और सुनना चाहते हैं संबल से छोटे अंसारी।

खान बलजिंदर कौर रवनीत निशु मुख्तार पंजाब से सुनना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं उस्मान शेख फौज सारवानो शेख और करिश्मा शेख लातूर से। नरेंद्र मिर्गे प्रियदर्शनी मिर्गे और प्रियंका काल पांडे महाराष्ट्र सुनना चाहते हैं और रमेश नचानी भारती नचानी विनीत नचानी उदयपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं शमुदयाल खटक विमला देवी योगेश कुमार खटक राजस्थान से और शाहिद अली इफ्फत फारूकी और हिफ्जा अली चेन्नई से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। पीरजादा मेराजुद्दीन पहलगाम कश्मीर से सुनना चाहते हैं और मुंदी चौक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं भोपाल मध्य प्रदेश से चंपालाल दुबे अनंता और दर्शिका दर्शित।

सारी अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में नगमा जंगली फिल्म से, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने, बोल थे हसरत जयपुरी के। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में, जिसको सुना चाह टैगोर गार्डन ने दिल्ली से, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने, और खंडवा से सुना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस खत्री, सादिक खत्री, अयुब खत्री और सुजाता चौरसिया, नवाबगंज कानपुर से पंकज चौरसिया और पीहुदिया चौरसिया के साथ सुनना चाहते हैं जुबैर अली खान, अंजुमन खान और समिया जुबैर सुनना चाहते हैं कदवाई नगर सिटपुरा टाउन से।

0: सामने अभी आप सुन रहे थे बंदनी फिल्म से नगमा लता मंगेशकर की आवाज में। प्रोग्राम तामिल इरशाद अभी जारी है। शब के 11 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं खबरें बड़े सगीर से।
1: ये आकाशवाणी है बड़े सगीर की खबरों के साथ में महताब आलम। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का

0: खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तामिल इरशाद मोहम्मद शाहरुख के साथ। इस प्रोग्राम की अगली फरमाइश सुनने से पहले पेश है आपके लिए एक जरूरी ऐलान। कल यानी 5 जून को दिन में 11:30 पर यानी पहले मजलिस की नशरियात में आलमी योम माहौलियात के मौके पर माहौलियात के हवाले से आप सुनेंगे एक खसूसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है urdu service esd@gmail.com। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम की अगली पेशकश।

सामने अभी आप सुन रहे थे ये नगमा अमन फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जय किशन ने। और सुनना चाहा था राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार ने। चंडीगढ़ से सुनने के ख्वाहिशमंद थे सतीश अनेजा बिमला अनेजा। और सुनना चाहा था सुरेंद्र संधु, अनिता संधु, प्रतीक्षा संधु ने। कुलम रोड हरगोविंद नगर नवाज शहर से। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन और प्रज्योत कौर मिशन।

मधुबनी बिहार से रुद्र प्रताप गुप्ता, विद्य सिद्ध गुप्ता और कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और ऐशबाग लखनऊ से मुकेश कुमार गुप्ता, रश्मि रानी गुप्ता सुनने के ख्वाहिशमंद थे। सुनना चाहता था किशन सबका, लाश सबका, विशाल सबका ने शास्त्री नगर बीर शहर से, और नाजिना से नासिर शेख नसाजी शाहिद ने श्री रामपुर फातिमा कॉलोनी से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे वलील अंसारी पुरान तालाब डुमराव से, राज अंसारी फातिमा राज फातिमा अंसारी बक्सर से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाहता था हेमा चक्रवर्ती, दुर्गा कुमारी और प्रमोद चक्रवर्ती अहमदाबाद से, जलंधर से मनदीप और संजय सुनने के ख्वाहिशमंद थे। सुनना चाहता था गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी ने, और कांडला बंदरगाह से जगदीश चोरी सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाहता था चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अदीपा ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद अकबरुद्दीन मठाल, और शब्बीर मराठी, आसिफ इकबाल। नर्मदा पार्क मंगलवेदा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाहता था मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक बत्ता ने कनेरा मोहल्ला पटियाला से, और सरोज चौरसिया और सुरेश चौरसिया फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश महेंद्र कपूर की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद है अलिका बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी अलीगढ़ अव्वली से, और सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी जलालाबाद वेस्ट से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं नूर आयशा अहमद बागबान, इकबाल अहमद बागबान और अखलाक अहमद बागबान बलिया से। सुनना चाहते हैं सिद्धार्थ गोंडाने, हिरमन शिंदे अमरावती से, और अब्दुल गफार डावर और अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर सुनना चाहते हैं खंडवा से, और उत्तम कुमार भगत, शोधा भगत, किशुताशु पाकुड़ झारखंड सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और नरेंद्र मोदी ठाकुर साहब सुनना चाहते हैं रामगढ़ कैंट से।

अभी अभी आप सुन रहे थे सोनी माहिवाल फिल्म से नगमा महेंद्र कपूर की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी नौशाद ने और बोल थे शकील बदायूनी के। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और अशरफ खान ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी, खंडवा मध्य प्रदेश से, और सुनना चाहते हैं अंकिता महाराष्ट्र से, विजय चौहान इंदौर का, तेजस्विनी चौहान और शौर्य सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं मोहम्मद फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल बिहार से, और विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे आकोट से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं अजीज मतीन और शेख चांद फारूक तेलंगाना से, राज शर्मा, मीना शर्मा और निवान शर्मा आदर्श नगर मलोर पंजाब से सुनना चाहते हैं, बचकमल मोतीलाल यादव, डॉसंत भ्रीगु भाटापारा छत्तीसगढ़ से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, मनोज जेटवार से जेटवा श्रीरामपुर से सुनना चाहते हैं, और हिना साबरी ऐजल इमाम मोहम्मद झारखंड से सुनना चाहते हैं, और रईसा मजाहिर मगर अली मजाहिर हुसैन अंसारी, बेगम रईसा अंसारी और मुजक्किर मुरादाबाद से सुनना चाहते हैं, श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक कीटे अमरावती से सुनने के ख्वाहिशमंद है, वही भारती देवी उदयपुर से सुनना चाहते हैं, और नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद है, और सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, छत्तीसगढ़ से मिशलाल विश्वकर्मा, मीरादेवी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा सुनने के ख्वाहिशमंद है, और बड़े रैबी वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, डांडा से नील मोहन, उषा मोहन, टिल नायक सुनने चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, विनायक बेंडे, मंगला बेंडे अकोट से, और प्रशांत शिंदे, कृष्णा घोटके सुनने चाहते हैं पंदर सिटी से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं अगले दीवार मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंश।

सुन रहे हैं, अभी आप सुन रहे थे बेटी बेटे एफएम से नगमा मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने, बोल थे असरत जयपुरी के। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश शमशाद बेगम की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा ने नेपाल से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमीदीन सिद्दीकी बेगम, नुशद अहमद सिद्दीकी और दिशा अहमद सिद्दीकी छत्तीसगढ़ सुनना चाहते हैं, और सुनने की ख्वाहिशमंद है पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़, सुरेश शशीष गौड़ कासगंज से, और सुनने की ख्वाहिशमंद है सुशांत प्रिया झा, निवेश कुमार, लड्डू कुमारी, नई दिल्ली कीर्ति नगर से, रियासुद्दीन सिद्दीकी, नाजिम बेगम सिद्दीकी, रियाज फाकत सुनना चाहते हैं उत्तराखंड से, और प्रसाद यादव, सोनल यादव पैठन से सुनने की ख्वाहिशमंद हैं, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमारी बिहार से सुनना चाहते हैं, और सुनने की ख्वाहिशमंद हैं ज्योति केसर, रोजरी केसर, विलिस्ती केसर सहारनपुर से, जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा क्योथल हरियाणा से सुनने की ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसन पवार खंडवा से।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम ताबे इरशाद के तहत फरमाइशी फिल्मी नगमे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। और अब एक जरूरी ऐलान आप सभी के लिए, कल यानी 5 जून को दिन में 11:30 पर आलमी योम माहौलियात के उन्वान से, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के हवाले से एक खसूसी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जो कि कल 11:30 पर नशर होगा।

0: सुनील, अभी आप सुन रहे थे पंडित वसंत देश पांडे की आवाज में राग जन सम्मोहिनी में ख्याल। इसी के साथ प्रोग्राम बस में मौसीकी अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए सुनते हैं आलमी खबरें।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तौहीद हक्कानी से आलमी खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीस तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी।

सामीन अभी आप सुन रहे थे पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया हुआ राग नाथ भैरवी और पहाड़ी धुन। इसी के साथ इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी का यह प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम आखिर शब। आइए इस प्रोग्राम को तय सुनते हैं सदाबहार फिल्मी नगमे। हाजिर इस प्रोग्राम की पहली पेशकश बरसात फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

सुनाए अभी आप सुन रहे थे मन्नाडे की आवाज में ये नगमा मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से, जिसकी तर्ज बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले और तलत महमूद की आवाज में।

ये आकाशवाणी है। अब आप तौहीद हक्कानी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। निज तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि यह योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला को हिदायत दी है कि वह नई नस्लों के लिए एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। अमरीका के ऐवानी नुमाइंदगान ने एक करारदाद पास की है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई करने से रोकने को कहा गया है। और आलमी बॉक्सिंग दर्जाबंदी में भारत की जैस्मीन लंबोरिया आलमी नंबर एक खिलाड़ी बन गई हैं, जबकि प्रिया गांधी

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र

0: में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESAC की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आर्द्र भूमि, वन, नदियों और भू दृश्यों की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भू स्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NER शील्ड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी और झारखंड से प्रणव झा को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। इसके अलावा तमिलनाडु से होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रवीण चक्रवर्ती को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। उपराष्ट्रपति सीबी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ सुभाष सी कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ कश्यप ने अपने शोध, लेखन और जनसेवा के माध्यम से भारत के संविधान और संसदीय लोकतंत्र की समझ में अमूल्य योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ कश्यप देश के अग्रणी संवैधानिक विद्वानों में से एक थे जिनके संसदीय और संवैधानिक विमर्श से जुड़े योगदानों ने समाज को समृद्ध किया। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में MR अर्जुन और हरिहरन हमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइकिन को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Prime Minister Narendra Modi yesterday held talks with acting President of Venezuela Delcy Rodriguez in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. At the same media after the talk, Secretary Mr. Rudendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as the Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.

आप हमें सुन रहे हैं एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर रात्रि के 1:10। मैं आपकी दोस्त कीर्ति हाजिर हूँ फिल्म गीतों का कार्यक्रम लेकर, गीत सुनहरे। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे। जी हाँ, गोल्डन एरा के पुराने नगमे आप सुनते हैं। और इसी तरह सबसे पहला गीत 70 के दशक का आपके लिए लेकर आ रही हूँ, फिल्म अभिनेत्री से। महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर व अन्य आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है।

0: कभी तो हंसाए।
1: अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म अप्रैल फूल। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आपने सुना फिल्म कटी पतंग से ये गीत किशोर कुमार की आवाज थी और ये फिल्म 1970 में आई थी। अगला गीत आ रहा है मुकेश के स्वर में।

फिल्म पूरब और पश्चिम से आप एक गीत सुन रहे थे, इंदीवर के लिखे बोल थे और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था। अगला गीत सुहाना सफर फिल्म से आ रहा है, मोहम्मद रफी के स्वर में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगला गीत आइए सुनते हैं, आशा भोसले, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाजों में, साथ में है हेमलता। ज्वालामुखी फिल्म से ये अगला गीत बोल अनजान की है और संगीत से पिरोया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसमें आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने फिल्म काला पानी से। संगीत से पिरोया है एस डी बर्मन ने।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाग बदल भी चलना तो समझे।
0: हाँ समझे।

0: इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। रात्रि के 2 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: डिस्कशंस आल्सो
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सके।
2: कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
1: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESSC की बैठक में

हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आर्द्र भूमि, वन, नदियों और भू दृश्यों की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भू स्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म एनईआर शील्ड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी और झारखंड से प्रणव झा को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। इसके अलावा तमिलनाडु से होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रवीण चक्रवर्ती को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपये के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 5 से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्य रात्रि के 2:10 हुए हैं और आपका इंतजार खत्म हुआ। जी हाँ, जिस कार्यक्रम का मुझे लगता है आप बेसब्री से इंतजार करते होंगे, वैसे तो सारे कार्यक्रमों का आप इंतजार करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में आपको बहुत ही खूबसूरत और बैक टू बैक गीत सुनने को मिलते हैं। जी हाँ, तो हमेशा की तरह मैंने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गीतों की लिस्ट निकाल ली है और बैक टू बैक आप तक ये गीत पहुंचने वाले हैं, तो आप और हम मिलकर एंजॉय करेंगे, आप अपने घर पर और हम स्टूडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: बातें हैं।
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो डर कर समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है। दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं बोरिंग हो जाए, कुछ ही दिन में नजरे इनकी इधर उधर मंडे। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती।

0: आप ये गीत सुन रहे थे और बहुत सारे गीतों को आपने सुना गीत बहार कार्यक्रम में, जो कि नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम था। और इसी के साथ अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए हमें। फिलहाल रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: डिस्कशंस ऑल्सो आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सके।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 5 से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के मुख्य

0: वार्ताकार के नेतृत्व में आया अमरीकी प्रतिनिधिमंडल भारत की चार दिन की यात्रा संपन्न कर कल स्वदेश लौट गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं के व्यापार, गैर शुल्कीय बाधाओं, सीमा शुल्क तथा व्यापार सुगमता, आर्थिक सुरक्षा समन्वय और अन्य साझा हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने यूएनआईएफआईएल के साथ तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। भारतीय मिशन ने सोशल मीडिया पर इस हमले में मारे गए सर्बियाई शांति सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल शांति सैनिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कल केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. Prime Minister Narendra Modi yesterday held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the global south. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talk, Secretary Sudhir Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Nepal's Minister for Foreign Affairs, Shishir Khanal, is visiting India from 5 to 7 June at the invitation of the Minister of External Affairs of India, Dr. S. Jaishankar. During the visit, Minister for Foreign Affairs Khanal will hold a formal meeting with Dr. S. Jaishankar in New Delhi. The two sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. As part of a regular exchange of high-level visits, this visit will further consolidate the enduring and multifaceted bilateral relations between Nepal and India, said the MOFA. The Enforcement Directorate, ED, yesterday conducted searches at 9 premises in Champai, Mizoram, in connection with a case related to Myanmar Arika nut smuggling and money laundering involving proceeds of crime over 970 crore rupees. The agency said investigations revealed that Burmese nationals smuggled dry Arika nuts across the Tiang River into India without customs clearance to Zipthavar and Champai and handed over the consignments to local facilitators at the border. The probe agency had noted that the investigation further revealed that EV bills amounting to 215

रात्रि के 3:10 और आप सुन रहे हैं एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल। अब प्रस्तुत है गीत व गजलों का कार्यक्रम, तो आगाज करते हैं इस गजल के साथ जिसमें आप सुनेंगे हरिहरन का स्वर।

आईआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत। और अब जो गजल आप सुन रहे थे जो अभी, वो थी जगजीत सिंह के स्वर में। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और गजल, कलाकार हैं पंकज उदास।

ये आई एल एम न्यूज 24/7 पर आप बने हुए हैं मेरे साथ और मैं हूं चेतन और सुन रहे हैं गजल गीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं पंकज उदास की एक बहुत ही मशहूर गजल।

इसी के साथ ही गजल गीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए आप सुनते हैं पोन्नुकनम रामचंद्रन का राग मध्यमावती।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आप सुन रहे हैं सुहा रघुरमन का गायन, राग है कांबोजी।

maga pa ma pa ta sa maga pa ta.

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नादवरम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सुधा रघुरमन का गायन, राग था कंबोजी। इसी के साथ कर्नाटक संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। वंदे मातरम।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि तदनुसार।

जून 2026 सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, जिसमें आज का विषय रहेगा उष्टासन और योग से संतुलित जीवन। प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर हिमानी शोकन। पांच बजकर 30 मिनट पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे हरिनाथ झा का द्रुपद राग ललित।

सुबह 7:10 पर संगीतिका कार्यक्रम में आप सुनेंगे वसुधा शास्त्री के भजन। फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत और हरी गुड मॉर्निंग का समय रहेगा 7:30। 8:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे मिलन उपाध्याय का द्विपद गायन। सुबह 9:15 पर गांधी चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता का विषय रहेगा स्वच्छता और पर्यावरण पर गांधी जी के विचार। वार्ताकार होंगे संजय दुबे। 9:30 पर पंजाबी कार्यक्रम होगा मिट्टी दी महक और 10:10 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत आपकी पसंद।

0: सारण की प्रतिध्वनिया शोध आलेखम प्रस्तुति होगी पार्थ सारथी थापलियाल और अशोक अग्रोही की, संपादन और प्रस्तुति होगी सरोग आकांक्षा सिंह का, वाचक स्वर होगा निशा भारद्वाज और देवेंद्र त्रिपाठी का, परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार का होगा। सदस्य कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 11:10। दिन में 11:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर मंजरी के अंतर्गत सुनेंगे मैत्रेयी मजूमदार का गायन। दोपहर 12:10 पर महिला कार्यक्रम घर आंगन एक कदम बुजुर्गों की ओर होगा और दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से, फिल्म का नाम होगा बॉबी। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। 5 बजने को है, कुछ ही पलों में अब पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के, खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया, सिखी केसां सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धर के, खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के, बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत

आवण का सबका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षिया रियायत। देग तेग फते दर्द की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय हाल से जी के बोल बल्ले। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान। विवेक दान विसाह दान पुरुषा दान। दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल। परम का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची। मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे माण। नेताणिया दे ताण नेउटिया दी ओट। धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान।

खजाना बहुत निधाना सानथ मेरी आप खड़ा सानथ मेरी आप खड़ा।

कोई गवैरागी नदी बेदी भात कर नहीं हर हर पीछे राम राजे।

जय महाता कर्म है, कर्म है पितरी दे अध्याय वस्तियाणी पितरी चोर करे वड्डी है हाथ लाल के मुस्पिए।